0: सरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज नौटियाल की आवाज में राग अहीर भैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में

0: तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत के विचार।

बात सुमित्रा नंदन पंत के बचपन की है। एक बार वे घर से दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक सहपाठी अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। सहपाठी को देख वो रुका और अपनी माँ से कहा, अम्मा ये गुसाई है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, बहुत होशियार है, मुझे इसके साथ बैठना खेलना खाना बहुत अच्छा लगता है, और गुसाई ये मेरी अम्मा है, अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए सहपाठी ने कहा। यहाँ क्यों बैठे हो बेटा, इस सुनसान और एकांत जगह में, सहपाठी की माँ ने पूछा। अम्मा ये इसकी आदत है, स्कूल में भी खेल घंटी के समय ये पेड़ों के नीचे बैठा रहता है, सहपाठी ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी माँ से कहा। तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती बेटा, सहपाठी की माँ फिर बोली। सहपाठी फिर बात काटते हुए बोला, इसकी माँ नहीं है अम्मा। सहपाठी की माँ को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी, उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर तक छोड़ कर आई। उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी गांव में 20 मई 1900 के जन्मे पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया था। शिशु का लालन पालन दादी ने किया, लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त रखा गया। नाम प्रिय न लगने के कारण बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। 1918 में वे काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में अध्ययन करने लगे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर रहकर हिंदी संस्कृत बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। सन 1926-27 में उनकी पहली पुस्तक पल्लव नाम से प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात पंत अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए और इसी दौरान वे मार्क्स और फ्रॉयड तथा उनकी विचारधारा के प्रभाव में आए। सदा अकेले शांत एकांत में रहने वाले पंत को ये प्रकृति इतनी प्रिय लगी कि उसे ही पंत ने अपनी माँ और पूरा जीवन समझ लिया। आजीवन इसी के बीच जीते रहे और जुड़े रहे। सुख दुख भी आजीवन उनके जीवन से जुड़े, पर उनके बीच से वे सदा एक नई राह बनाते रहे। अपनी एक कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौली खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जाए सुख दुख से ओ सुख दुख से, अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन, ये सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चीरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है रामचरितमानस।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: अष्टत्रिंशत् कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधा

उत्खनन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: by 7 wickets in the Ekanar Stadium last night. Chasing a target of 188 runs, Lucknow Super Giants overhauled the winning mark in 16.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विनोद कुमार तिवारी के गाए भजन। आइए सबसे पहले सुनते हैं गाइए गणपति जगवंदन।

आइए अब सुनते हैं गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का लिखा ये भजन। गायक हैं विनोद कुमार तिवारी।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मीराबाई का लिखा ये भजन। आवाज है विनोद कुमार तिवारी की।

श्रोताओं, संगीत का कार्यक्रम के अंत में सुनिए विनोद कुमार तिवारी का गाया, गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना विनोद कुमार तिवारी के गाए भजन। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 होने को हैं और ये समय है गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। हर सुबह आती है एक नई उम्मीद के कारण। सुबह का सूरज हमें संदेश देता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो आइए गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कहते हैं वर्तमान और भविष्य को सही करने के लिए आपको अपने इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी होता है। अगर आज के दिन के इतिहास पर नजर डालें तो आज यानी 16 मई का दिन कई मायनों में खास है। जैसे 1975 में आज ही के दिन सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था। और जो दूसरी खास घटना आज के दिन से जुड़ी हुई है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है? अंग्रेजों ने अपने एक तात्कालीन सर्वे अधिकारी के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा था। तो आज ही के दिन 1975 में जापान की पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। और वहीं 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिस कृत्रिम पैरों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। क्या करें, पहाड़ों की खूबसूरती ही कुछ ऐसी होती है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं।

0: श्रोताओं, 16 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित ये दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा पहले सफल लेजर ऑपरेशन की याद दिलाता है, जिसने पूरे विश्व में एक बड़ी क्रांति लाई थी। और इस बार इस दिवस की थीम है लाइट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जी हां, हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें इस चीज की महत्ता की याद दिलाता है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

0: यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें कुछ बोलना नहीं होता, बल्कि हमारी निगाहें बात करती हैं और हम इस पल को हमेशा के लिए समेट लेना चाहते हैं। और ये गीत भी कुछ यही कह रहा है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज सुबह 10:10 पर आप सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपके पसंदीदा गीत सुन पाएंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ipradiodelhi@gmail.com। ध्यान रखिएगा, सुबह 10:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:00 को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
4: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
5: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए

0: पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3

0: जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी सुरक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के आम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की

0: वसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती एलपीजी सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन वायदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़ाराई के दौरान अबूजबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल यूएई पहुंचे थे। माहदों में अहम शराकतदारी का माहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबूजबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस एलपीजी को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में यूएई की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और एआई के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल्स से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मौजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN काओ यादगारी लेक्चर देते हुए

0: वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म व जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरत्तब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का ये कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क्याम के दौरान चंद अहम मकामात का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयान देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि उसने बाज बयान जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाकये में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अजम का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीज के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीज से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नजरसानी के निजाम से फायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जांच की गई जवाबी कॉपियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जाँच के लिए दरखास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस ₹700 फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरखास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनाकदा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30,00,000 मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जामात के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। یہ فیصلہ

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में कुछ बीमारियां मेनली बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया

0: वायरल फीवर, पीलिया वे डेंगी ज्यादा मात्रा में देखने में आते हैं। हर वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस दिन कोई विशेष संदेश या कोई थीम दिया जाता है और इस वर्ष का थीम या संदेश है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, डेंगू से लड़ें और जिंदगी बचाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्टडी के अनुसार 2024 से 26 के बीच में विश्व में 14.6 मिलियन यानी 146 लाख डेंगू के केसेस देखने में आए। आज डेंगू 100 से ज्यादा देशों में देखने में एंडेमिक है। एक परिचर्चा के लिए आज के विशेषज्ञ से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। डॉक्टर तनु जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचिता कृपलानी अस्पताल में।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनु जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि हम हर वर्ष ये 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस मनाते हैं और एक थीम देते हैं, जैसे इस वर्ष का थीम है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, तो इस पर्टिकुलर डे पर एक थीम देने से क्या कुछ पर्पस हल होता है?
2: तो ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा। और आप देखते हैं कि किसी भी मेजर डिजीज को लेके कोई ना कोई विश्व में या देश में एक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे डेंगू का अगर हम 16 मई का कहें तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि डेंगू का सीजन अधिकतर प्री मानसून से लेके और पोस्ट मानसून तक रहता है, तो इसके बाद केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। तो जब हमारे केसेस लगभग जुलाई के बाद से जब बारिश आती है और बारिश का पानी ठहरना शुरू होता है, केसेस में बढ़ोतरी आती है। लेकिन स्टेट्स को या हॉस्पिटल्स को या जनरल पब्लिक को उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो जो हमारे सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में हम रन करते हैं, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, तो हमारे प्रयास तो पूरा 12 महीने ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई लीन पीरियड होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कि 16 मई एक इम्पॉर्टेंट डे है और यहां से आपकी तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो ये तो शुरुआत है, तो ये तैयारियां यहां से ऑब्जर्व करते हैं और की कंप्लायंस होती है, क्योंकि ये हम सारे जो राज्य हैं हमारे उनके साथ मिलके करते हैं। तो 16 मई को आप देखेंगे तो हर राज्य में अपना एक कार्यक्रम होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं या बाकी संस्थान हैं, वो भी इस दिन को जरूर ऑब्जर्व करते हैं और एक अपने लिए तय करते हैं नियमानुसार कि हम इस दिन लेके आगे तक कैसे काम करेंगे और कैसे डेंगू की रोकथाम करेंगे।
0: प्रोफेसर घनश्याम, जब हम बात कर रहे हैं डेंगू की, तो सबसे पहले तो यही जान लेना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल डेंगू है क्या, किस किस लोगों को रिस्क ज्यादा है और कितनी समस्या है, कितने विकराल समस्या है।
1: ये एक तरह का वायरस है, तो इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो जैसे कई लोग एंटीबायोटिक हमारे यहाँ ले लेते हैं कि बुखार आ गया, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। एक तरह का ये वायरस है और ये वायरस वैसे चार तरह के होते हैं, डेंगू 1 से, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। हम उतने डीपली नहीं जाते कि डेंगू 1 से हुआ है, 4 से हुआ, बट हमें पता होना चाहिए कि चार तरह के वायरस होते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये एक तरह से मच्छर के थ्रू हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो कहते हैं, जो कि हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का मच्छर होता है जो दिन में ज्यादा काटता है और ये साफ पानी में ज्यादा रहता है, जैसे गमले वमले इस तरह के पानी में। और इसके पैरों में कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, सफेद सफेद धारियां सी होती है, इसलिए टाइगर जैसा दिखता है एक तरह से। तो ये टाइगर मॉस्किटो जो दिन में काटते हैं और ये शहर में ज्यादा निवास करता है, तो ये टाइगर मॉस्किटो और या एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू वायरस इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि हमारे देश में तो इतना कॉमन है डेंगू कि हम एक तरह से एंडेमिक हो गए हैं इसके लिए। तो हमारे यहां तो अगर मानसून के टाइम में किसी को बुखार होता है और बुखार में बॉडी पेन स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, एक तरह का लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर में बहुत कॉमन होता है, बहुत सिवियर कभी आंखों के पीछे दर्द होता है और इसमें बहुत मलेज और बहुत थकान और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं डेंगू के। और लाल रैश होना और कहीं से ब्लीडिंग हो जाना, जो कि सिवियर डेंगू के एक सिम्टम्स है। तो जब भी मानसून में हमें, जहां पर मॉस्किटो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी जगह है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसको स्किन में रैश या चकत्ते पड़ रहे हैं, वो खाने पीने नहीं खा पा रहा है बिकॉज ऑफ फीवर या वॉमिटिंग या बहुत उल्टी जैसा मन कर रहा है और बॉडी में पेन और हेडेक है, तो वो डेंगू के सिम्टम्स हैं। और आपने बताया कि एक तरह का वायरस वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से होता है। तो हमें मच्छर से बचाव करना है। बुखार में हमें जब भी बुखार हो और इस तरह के वार्निंग सिम्टम आए कि ब्लीडिंग आए, बेहोशी आए, उसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है और बिना सलाह के ना तो एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर बुखार भी आए तो पैरासिटामोल

0: मॉल को छोड़ के कोई भी पेन किलर नहीं लेना है, बिकॉज उन लोगों को ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, कई बार किडनी खराब हो जाती
1: जी,
0: है।
1: तो ये जो डेंगी है इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कोई पता लगा एडिस इजिप्टी है या एडिस एल्बोट वो भी आ रहा है, तो क्या आप हमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि नहीं? और दूसरा ये कि फीवर तो मलेरिया में भी ठंड लग के होता है, डेंगी वाला भी कहता है जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो क्या ये मलेरिया या चिकनगुनिया बुखार करीब करीब सिमिलर सी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, तो इन तीनों में बेसिकली मोटे तौर पर क्या डिफरेंस होता
2: जी,
1: है?
2: तो एक्चुअली जैसा कि डॉक्टर घनश्याम ने अभी बताया हमें कि जो मॉनसून का सीजन आता है उसमें हर तरह की बीमारियां चल रही होती
1: जी
2: हैं, खांसी जुकाम से लेके जो भी एक वायरल डिजीज है,
1: जी जी
2: डेंगी है, चिकनगुनिया है और मलेरिया है, ठीक है,
1: जी
2: इसके साथ साथ बहुत सी और भी बीमारियां हैं जो बुखार से शुरू होती हैं।
1: जी
2: तो हम लोग जो हैं वो फीवर को एक सिंड्रोम मानते हैं, मतलब एक फीवर आपको ये बता रहा है कि इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे सेंटर पे जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, तो हम 6 डिजीजेस देखते हैं जिनका सबका इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है वो बुखार ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो जैसे इसमें जैपनीज इनकेफ्लाइटिस भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें बुखार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वेक्टर में भी डिफरेंशिएशन है। जैसे मलेरिया के लिए एनोफिलीज वेक्टर है और डेंगी के लिए और चिकनगुनिया के लिए एडीज वेक्टर है, जेई के लिए क्यूलेक्स वेक्टर है। तो वेक्टर डिफरेंट है, उन मच्छरों की ब्रीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट है कि वो कहाँ ब्रीड करते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर गंदे रुके हुए पानी में ब्रीड करता है, तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक इशू है। जबकि डेंगी का जो वेक्टर है, जो एडीज इजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस है, वो पेरिडोमेस्टिक ब्रीडिंग होती है, तो वो एक छोटा सा 10 ml 15 ml पानी भी कहीं इकट्ठा हो जाएगा और एक हफ्ते तक इकट्ठा रहेगा तो उसके अंदर ब्रीडिंग हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही एफिशिएंट वेक्टर है ये। तो डेंगी का वेक्टर जो है इस तरह ब्रीड करता है और क्यूलेक्स का वेक्टर यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में जैसे पैडी फील्ड्स वगैरह हैं वो उन जगहों पे ब्रीड करता है। तो एक तो इनकी वेक्टर की ब्रीडिंग डिफरेंट होती है, फिर इनके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप मलेरिया का लें तो मलेरिया का क्लासिक सिम्टम तो फीवर विद चिल्स कहा जाता था, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, हालांकि वो क्लासिक सिम्टम अब बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार देखने को मिले। और मलेरिया में भी दो तरीके का मलेरिया होता है, वाइवैक्स भी होता है और फैल्सीपेरम भी होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स तो है जो डॉक्टर अपने हिसाब से सोच के लिखता है, लेकिन इस सीजन में अधिकतर हम टेस्ट लिख देते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपी होती है और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट एक तरह से होता है, तो उससे पता आसान से लग जाता है कि ये मलेरिया है या ये नहीं है। कई बार हमने देखा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां तीनों भी एक साथ हो सकती हैं और कभी कभी दो बीमारी भी एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि वेक्टर तो है और ह्यूमन बींग है। डेंगू में यूजुअली बुखार सिर दर्द के साथ आता है, स्पेशली जो आपके रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, आईज के पीछे जो पेन होता है, हेड एक, बॉडी एक, उसके साथ यूजुअली फीवर आता है। और ये फीवर के साथ कभी कभी हमें रैशेज भी देखने को मिलते हैं। डेंगू के लिए भी सरकार ने लगभग 870 सेंटिनल सर्वेलेंस हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है और कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक से ज्यादा भी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और एम्स लाइक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके पास टेस्ट है। तो ये NS1 टेस्ट है एलाइजा और IgM एलाइजा टेस्ट है, इससे डेंगू पता लग जाता है। तो पहले 5 दिन में और 5 दिन के बाद ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा रिसेंट इन्फेक्शन है या थोड़ा पुराना इन्फेक्शन है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत जल्दी और इजी डायग्नोस्टिक्स हमारे पास हैं जो हमको इमीडिएटली बता सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। जी
1: प्रोफेसर घनश्याम, जैसा डॉक्टर तनु जी कह रही हैं डायग्नोसिस जरूरी है, निश्चित रूप से मलेरिया के लिए आप पेरिफेरल स्मियर कर लेते हैं, टाइफाइड हो तो टाइफाइड डॉट कर लिया या तो, लेकिन क्या है कि डेंगू के लिए क्या हमें पहले बेसिक टेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें हम NS1 पे जाएं, CBC, ASR वगैरह करें, क्या उससे कोई पिक्चर में प्रेजेंट होगी कि शायद प्लेटलेट गिर रहे हो? और अगर नॉर्मल प्लेटलेट क्या वैल्यू रहती है, कितना इसमें कितना गिर जाए, किसे हम माने कि भैया हाँ ये डेंगू हो सकता है?
0: जी हाँ जवाहर जी, जैसे कि आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैनिक हो जाता है डेंगू जब आता है, पूरे शहर में पूरे देश में एक तरह का परेशान हो जाते हैं लोग कि अरे डेंगू आ गया, और प्लेटलेट के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अगर डेंगू में है तो प्लेटलेट नहीं है, हिमेटोक्रिट है या PCV या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि आपने बोला हमें CBC कराना चाहिए कोई और, बिल्कुल हमें CBC कराना चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए हिमेटोक्रिट कितना है या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं PCV। ये एक तरह का बताता है कि जैसे हीमोग्लोबिन अगर 15 है तो पैक सेल इसका 3 गुना होता है, 45 के अराउंड नॉर्मल होता है, 40 से 45। तो इस बीमारी में क्या होता है कि कैपिलरी लीक होती है, तो जब कैपिलरी लीक होती है तो आपका जो आरबीसी पार्ट है या जो थोड़ा सा जो हार्ड पार्ट है ब्लड में वो वहीं रहता है और कैपिलरी लीक से वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है खून, तो आपका हिमेटोक्रिट 40 से 50 या 60 हो सकता है। इसका मतलब आपके कैपिलरी से ब्लड

0: हो रहा है जिसकी वजह से आपको शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि प्लेटलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिमेटोक्रिट है। नॉर्मल प्लेटलेट हमारे यूजली 1.5 लाख से ज्यादा होता है, तो नॉर्मल अराउंड 1.5 to 3 लाख तक हम नॉर्मल कहते हैं। और अगर 1.5 लाख से कम है पर एम एल प्लेटलेट तो हम वो कहते हैं प्लेटलेट कम है। बट अगर ये प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, जैसे कि हम कहेंगे 10,000 से कम हो जाए, तो हमें चिंता का विषय बनता है डॉक्टर्स के लिए। अदरवाइज 40-50 प्लेटलेट में ऐसा नहीं है कि उनको ब्लीडिंग हो जाएगी, मॉनिटर करने की जरूरत है, बट उसमें प्लेटलेट देने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस अंडर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हो रही है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू के यूजली जो फीवर आ रहा है, मैडम डॉक्टर तनु ने बताया अभी कि डेंगू जब आता है तो बहुत सारे AFI एक्यूट फीबल इलनेस के एक
1: जी
0: एपिसोड में आप मलेरिया, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया हो सकता है, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड हो सकता है। तो हम सिम्टम्स तो देखते हैं कि बॉडी एक है, उनको रैश हो रहा है, इरिटेबल पेन हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा डेंगू का एक क्लासिकल सिम्टम्स है कि 3 से 5 दिन तक ही फीवर रहता है शुरू में। ये सारे सिम्टम्स आएंगे, 3 से 5 दिन बुखार आता है, उसके बाद 6ठे 7वें दिन बुखार उतर जाता है और वही क्रिटिकल पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। उसमें कैपिलरी लीक जो हम कह रहे हैं, हेमाटोक्रिट बढ़ने लग जाता है, प्लेटलेट नीचे गिरने लग जाता है और उसके साथ पेशेंट को थोड़ा सा बेटर फील होता है। और वहीं चूक हो जाती है कि पेशेंट पानी अगर ठीक से ना ले, हाइड्रेशन ठीक से ना रहे, तो उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर और शॉक हो सकता है। और 2 दिन के बाद अगर वो हाइड्रेशन ठीक रहता है तो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है विदाउट एनी एंटीबायोटिक। मैं ये स्ट्रेस देना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक नहीं देना है, तो विदाउट एनी एंटीबायोटिक। तो हम अगर किसी को 5 दिन से ज्यादा फीवर हो रहा है तब हम सोचते हैं इसको शायद डेंगी नहीं, क्या पता इसको मलेरिया है, क्या पता टाइफॉइड है, स्क्रब टाइफस है, तो उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए। और उन्हीं पेशेंट को हमें इमरजेंसी या अस्पताल में भेजना चाहिए जब उनका फीवर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फीवर डेंगी में कई बार ब्रेन में जैसे आपको एनकेफलोपैथी हो सकती है, उन लोगों को आना चाहिए, अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं, पहचान नहीं रहा है पेशेंट, या उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसको लैटिंग में या फिर यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर वो ठीक से नहीं खा पा रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा उल्टी होगी तो कुछ भी खाएगा हाइड्रेशन नहीं रख पाएगा। तो हम लोग कुछ वार्निंग साइंस देखेंगे, अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूड नहीं ले पा रहा है, उसको अस्पताल आना चाहिए इमीडिएटली। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है, इतना बुखार है कि वो परेशान है, वो ठीक से अपनी दिनचर्या या एक्टिविटी और डेली लिविंग नहीं कर पा रहा, उसको आना चाहिए। किसी को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है उसको अस्पताल आना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए। और चौथा, अगर वो अल्टर्ड सेंसोरियम है, लोगों को पहचान नहीं रहा है, इसका मतलब उसके कुछ ऑर्गन्स ठीक नहीं चल रहे, तो इनको अस्पताल आना।
1: प्रोफेसर घनश्याम, क्या ये जो परसिस्टेंट वोमिटिंग है ये, क्योंकि इसमें और रैश, क्या ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं डेंगू के उसमें कि भाई हाँ इनको ये हो सकता है? और NSAIDs का क्या रोल है? लेकिन लोग जो है नॉर्मली एस्पिरिन और ये जो IBUPROFEN इस तरह की दवाइयां अपने आप ही खा लेते हैं वो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और परसिस्टेंट वोमिटिंग और रैश अगर है तो रैश कैसा होता है, कहाँ दिखेगा रैश, कितना रैश होगा?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि रैश से आप पता कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है
1: जी,
0: मीजल्स होता है, मम्स होता है, इन सब में भी रैश होता है, बट रैश से आप पता कर सकते हैं कोई किसी तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है। ऑल्दो ड्रग रैश भी एक रीजन है, बट ड्रग रैश होगा आपने दवाई खाने के बाद हुआ है, तो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। बट रैश ऐसा होता है कि इसमें यूजली कैपिलरी लीक हो रही है, तो कई बार छोटे छोटे पेटिके कहते हैं हम, दाने दाने से बन जाते हैं, जो इसमें कि ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा ब्लड लीक हुआ है, इस तरह का महसूस होता है, जो कि महसूस टच करने में महसूस नहीं होता है, या पूरे स्किन में ब्लीडिंग जैसा भी महसूस हो सकता है। दूसरा एक एरिथमेटस रैश कहते हैं, आप अगर हाथ पे आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे 3 उंगली से, आप 4 आर्म में या कहीं पर, तो आपको देखेंगे 3 उंगलियों के निशान छप जाते हैं। तो इस तरह का भी रैश देखा जाता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में, स्पेशली डेंगू में। तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंफर्म नहीं कर सकते इससे। लेकिन जैसा कि आपने बताया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर, क्योंकि हम कह रहे हैं डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है और कोई और पेन किलर भी नहीं है, पैरास्टामोल बुखार के लिए लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, ठीक से आपको फ्लूड लेना है, पानी लेना है, ORS का पानी ले सकते हो। अगर आप ORS या कोई पानी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, आपके डेंगू सिवियर डेंगू में बदल जाएगा। तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, पानी नहीं पी पा रहा है और बुखार आ रहा है, इट्स अ इंडिकेशन कि आपको इमरजेंसी जाना चाहिए अस्पताल में, टेस्ट डेंगी के, जैसे कि डॉक्टर तनु ने बताया कि NS1 एंटीजन बहुत अच्छा टेस्ट, इजीली
1: जी
0: अवेलेबल है, आप उसे टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं। और क्योंकि वो उल्टी कर रहा है और उल्टी जैसा है तो उसको आईवी फ्लूड लेना पड़ेगा, तो उसको एडमिट करके एक इंट्राकैथ लगाते हैं हम लोग, उससे आईवी फ्लूड देंगे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ पानी देने से, आइदर मुंह से या आईवी फ्लूड इंजेक्शन से अगर फ्लूड दे तो डेंगी ठीक हो जाता है। 2 दिन क्रिटिकल पीरियड रहते हैं और लास्ट

0: लास्टली, जैसे कि आपने बताया कि और कोई पेन किलर नहीं लेना चाहिए, पैरासिटामोल की ही गोली लेनी है
1: और नहीं,
0: और 500 एमजी की गोली एडल्ट डोजेज होती है, बच्चों की 25 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग डोजिंग इस तरह से रहती है। तो पैरासिटामोल के अलावा कोई गोली नहीं लेनी है, आप हर 6 घंटे में पैरासिटामोल की गोली रिपीट कर सकते हैं एडल्ट में, तो एक दिन में 4 गोली तक आराम से आप ले सकते हैं बुखार जब तेज हो उसमें। बट जैसे कि आपने बोला एस्पिरिन अवॉइड करनी है आपको, कोई डाइक्लोफिनेक जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है, वो सब अवॉइड करनी है क्योंकि इससे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाता है और किडनी डैमेज भी हो सकता है।
1: जी डॉक्टर जी, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डायग्नोसिस में NS1 एंटीजन कर लेते हैं, प्लेटलेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन क्या कोई नई टेक्निक्स आ गई जैसे हम डिटेक्ट कर सके, कोई जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई रोल है या कोई हम वायरल आइसोलेशन का कैरेक्टराइजेशन का कोई रोल है, कोई रोल है उनका या नहीं है, या हम बहुत एडवांस में बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और क्लिनिकल स्किल्स भी हैं, और जैसा डॉक्टर घनश्याम ने बहुत ही क्लियरली बताया कि 5 डेज के बाद तो वो आपको कुछ भी टेस्ट करेंगे आपको डेंगू का वायरस मिलेगा भी नहीं, मैक्सिमम 5 to 7 डेज तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर रिसर्च सेक, फॉर यू नो इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या कहीं पे कोई नीड है उसमें तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। एंड डेंजर साइंस बहुत अच्छे से बताएं, तो जैसे हम भी प्रोग्राम के अंडर में यही डेंजर साइंस बताते हैं, और आपने एक चीज देखी होगी, देयर हैज बीन अ शिफ्ट, अभी प्लेटलेट्स के पीछे इतना पैनिक नहीं है जो एक टाइम पे शायद 8 से 10 साल पहले होता था, और उसकी वजह यह भी है कि प्रोग्राम में एक क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनी है और उन गाइडलाइंस को लेके बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है। तो जो डॉक्टर घनश्याम भी बोले फ्लूइड मैनेजमेंट, दैट इज वेरी क्रिटिकल, इवन इन सीरियस केसेस द फ्लूइड मैनेजमेंट रिमेन्स अ की। तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स छूट जाता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से उसको मैनेज करना मेजर की होता है, और प्लेटलेट का इतना बड़ा इशू आजकल नहीं आता है। डेंजर साइंस में वॉमिटिंग, स्टमक, हम तो इवन पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा है, बुखार हो गया, बुखार ठीक हो गया, उसके बाद भी इंसान ठीक नहीं फील कर रहा है, उसको पेट में दर्द है, अनइजी फील कर रहा है, दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हमारी आईसी भी बनी हुई है, जैसे पोस्टर्स, चार्ट्स, वीडियोस, ऑडियोस, जो हम जब ये डेंगू का सीजन आता है तो लगातार प्ले करते हैं। तो हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि डेंगू हो, माइल्ड डेंगू हो वो ठीक है, लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए किसी की और कोई सीरियस केस नहीं होना चाहिए। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस है और उसकी वजह से प्रोग्राम के अंडर में बहुत चेंज आया है, हमारा केस फेटेलिटी रेट 0.01 से नीचे चले गया है, सो विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इतना हाई केस फेटेलिटी रेट होता था, बहुत डेथ्स होती थी, बट अभी हमारा केस फेटेलिटी रेट बहुत लो हो गया है और बहुत कम हमारी डेथ्स जो है रिपोर्ट होती है। तो ये सारे एफर्ट्स ही हैं जो कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डॉक्टर घनश्याम तो हमारे एक्सपर्ट हैं उसमें जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस में
1: डॉक्टर तनु ये बताया क्या नारियल पानी का कोई रोल है और सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरफ से आप नेशनल जो सेंटर है वेक्टर डिजीज कंट्रोल का आप उसकी डायरेक्टर है, तो क्या सरकार की तरफ से क्या प्रयास है और नया क्या हो रहा है?
2: सो नारियल पानी तो सरकार नहीं ऐसे रिकमेंड करती है, बट रिकमेंड सरकार कर रही है कि हाइड्रेट करें, तो हाइड्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी सेफ ऑप्शन, अगर आप डायबिटिक नहीं है, हैविली डायबिटिक नहीं है, यू कैन यूज इट, एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम पूरा गवर्नमेंट नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल का रन कर रही है, उसमें प्रिवेंशन से लेके वेक्टर मैनेजमेंट से लेके केस मैनेजमेंट से लेके वो सारी एक्टिविटीज एक ऑक्टालॉग करके स्ट्रेटजी है हमारी, जिसमें 8 स्ट्रेटजीज आती हैं, उसके थ्रू सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है।
1: तो वेक्टर डिजीज कंट्रोल के लिए क्या क्या और नए नए मेथड्स क्या ले रहे हैं सरकार, क्या क्या देखा है, क्या कोई वैक्सीन नई डेवलप हो रही है, ऐसा सुना जा रहा है कि वैक्सीन नई डेवलप हो रही है?
2: मुझे पता था ये सवाल जरूर आता है,
1: क्योंकि आदमी कहता है कि साहब मुझे टीका लगा दो, मुझे कुछ नहीं करना, फ्लू अब मौसम आ रहा है तो एक फ्लू की वैक्सीन लगा लो एडल्ट वाले, है ना, जैसे MMR लगा देते हैं, ऐसे वैक्सीन लगा दो कहता मुझे पीछा छूट जाएगा, तो क्या वैक्सीन इज द आंसर?
2: कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अवेलेबल हैं कंट्री में, लेकिन देश में भी और अपनी कंट्री में भी, लेकिन वो अभी हमारी कंट्री के लिए अप्रूव नहीं है। तो जैसे कि डेनवैक्सिया है जो सबसे पहले लाइसेंस्ड हुआ था 2015 में, बट उसको यूज इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने वैक्सीन नॉर्मल इंसान को दिया तो जब उसको सेकंड किसी और जब उसको डेंगू होगा, नेचुरल डेंगू होगा, तो वो ज्यादा सीरियस होगा, तो इसलिए वो वाली वैक्सीन भी हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। बट अभी ICMR एक वैक्सीन लेके आ रहा है, तो विद इन अ ईयर और टू वो वैक्सीन आएगी, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वी आर वेटिंग कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है। तो जो अभी करंटली अवेलेबल वैक्सीन है, टकेडा की वैक्सीन भी है, क्यूडेंगा भी है, तो ये वैक्सीन अभी हमारी कंट्री में अप्रूव नहीं है फॉर वेरियस।
1: तो डॉक्टर साहब ये जो क्या ये डेंगू ऑल है जैसे ये भी जो वैक्सीन है, तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है, टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, या ये मल्टीपल डोज लगानी पड़ेंगी?
2: डेंगू ऑल जो है ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन ही है, और अभी आई थिंक इसकी
0: क्यूडेंगा
2: आई है, दैट इज मोर दिस थिंग।
1: तो इसको कितनी बार लगानी पड़ेगी वैक्सीन को, कितनी बार लगानी पड़ेगी डॉक्टर?
0: जी हाँ डॉक्टर जवाहर जी, ऐसा आपने पूछा कि जो

0: दिन आते हैं तो सबको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। आपने
1: जी
0: बताया कि शायद हम डेंगू से पीछा छोड़ जाएंगे।
1: जी
0: 100+ कंट्रीज में हो चुकी
1: जी
0: है, 5-10 करोड़ लोगों को एवरी ईयर हो रही है। तो जो क्यू डेंगा वैक्सीन आई है, आई थिंक रिसेंटली DGCI ने इसको अप्रूव कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने भी, बट इसे अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसमें देखा गया कि ये डेंगू सीवियर डेंगू से बचाता है, ये
1: बस
0: तो सीवियर डेंगू से बचाता है। और चारों जो हमने बताए थे, चार तरह के वायरस होते हैं डेंगू के, डेंगू 1, 2, 3, 4।
1: जी जी
0: तो डेंगू 2 कहते हैं सबसे ज्यादा फेटल होता है, अब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें डेंगू 2 को लिया गया है, बाकी 3, 4 और 1 को भी कुछ पार्ट है, बट मेन डेंगू 2 बैकबोन में है। 2 बार लगानी है इस वैक्सीन को, 1 0 और 1 3rd मंथ में लगानी है, 2 बार। और काफी सालों तक प्रोटेक्शन कहते हैं कि जहां पर भी ट्रायल हुए हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रायल नहीं हुए बट इट्स अप्रूव्ड,
1: जी
0: तो काफी सालों तक सीवियर डेंगू से बचाता है। इसको देखा गया, जो स्टडीज की थी वो तो वैसे 4 साल से ऊपर 60 साल तक सब में की गई है, बट मैं बताना चाहूंगा डेंगू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है,
1: बच्चों में।
0: बच्चों में। हमारे एडल्ट में आते हैं तो वो हम उन्हें समझा सकते हैं कि आपको ज्यादा पानी लेना है, वो सिम्टम्स भी बता देते हैं तो हम उनको हाइड्रेट कर देते हैं, उन्होंने सिम्टम। बच्चा जब बीमार होता है वो बताता नहीं है,
1: जी
0: छोटा बच्चा, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको देख के बताना है कि वो बीमार है, वो डिहाइड्रेटेड है, आप उसको फ्लूड देना है, उसको एडमिट करना है। उन लोगों में ये डेंगू वैक्सीन में भी इफेक्टिव अच्छी रहेगी। तो कुछ कंट्रीज में जहां बहुत एंडेमिक है, दे आर सेइंग कि 6 से 16 साल वालों को लगाएंगे ये वैक्सीन, और मे बी नेशनल प्रोग्राम में भी डालें इंडिया में या कहीं पर भी। तो उससे ये रहेगा कि जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जहां मोर्टेलिटी ज्यादा है उसको हम सेव कर पाएंगे। और अभी तक की सेफ्टी डाटा ठीक है, पिछले जो वैक्सीन थे जो मैडम ने बताया उनसे ये
1: बेटर
0: थोड़ा बेटर है, डेंजियोल जो था
1: डेंगी
0: उससे
1: और
0: बेटर है। और क्योंकि अब अप्रूवल हो चुका है, हमारे साइंटिस्ट ने देख लिया है कि इट कैन बी यूज, और अच्छी बात यह है कि ये जिन लोगों को पहले डेंगू हुआ है उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। पहले प्रॉब्लम हो रही थी हमें कि इसको डेंगू हुआ दोबारा होगा तो सुपर डेंगू ना हो जाए या साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो जाए, तो इसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट है। और हमारे कंट्रीज में मुझे लगता है जैसे दिल्ली में इतना एंडेमिक है, हम सबको डेंगू, मुझे भी डेंगू हुआ था एक बार सीवियर डेंगू।
1: और
0: तो
1: जो हमारे केसेस जो है सब क्लिनिकल बहुत सारे हैं,
0: हाँ,
1: तो ऐसा नहीं है कि जो केसेस हो रहे हैं वही डेंगू है, बहुत सारा डेंगू अदरवाइज भी है।
2: डॉक्टर दानू ये बताए कि क्या एक बार जिसको डेंगू हो गया तो पेशेंट ने कहता भाई डॉक्टर साहब एक बार तो हो गया अब दोबारा तो नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी दे सकते?
1: ऐसी कोई गारंटी
2: ऐसी
1: नहीं,
2: कोई गारंटी नहीं रहता कि
1: दूसरे स्ट्रेन से हो सकता है और वो ज्यादा सीवियर होता है।
2: अच्छा,
1: अगर दूसरे
2: दूसरी चीज ये कि
1: है।
2: डाइट, क्योंकि तो सबसे पहले डाइट के अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना,
0: बहुत इंपॉर्टेंट,
1: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर घनश्याम से कहूंगी डेफिनेटली अपनी क्लिनिकल स्किल से बताएंगे, बट मुझे लगता है कि वाई डेंगी इन एनी इलनेस फूड शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिशियस। तो ये बेसिक अगर हम 3 चीजें याद रखेंगे तो हमारे फूड का हाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो जो भी आपकी पसंद हो बट सिंपल टू डाइजेस्ट होना चाहिए, इजी फूड होना चाहिए और मतलब न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर घनश्याम विल टेल अस।
0: मैं क्योंकि हम लोग डेंगू काफी देखते हैं, खासकर अब आने वाला है मॉनसून सेशन, तो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा
1: जी।
0: तो उसमें यह है कि हमने बोला हाइड्रेशन इज अ ट्रीटमेंट, तो जितना फ्लूड वाली चीजें लेंगे वो बेटर रहेगा। दूसरा रहता है डेंगू एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है, इसमें बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें आपकी एपेटाइट चली जाती है, तो कई लोग खाना कम कर देते हैं। तो हम कहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है आप खा सकते हो, बट हाइड्रेशन रखो, 2-2.5 लीटर पानी लेना है, पानी लो, ORS लो या नारियल पानी भी लो, नारियल पानी महंगा है नॉर्मल पानी से, अगर ले सके तो अच्छी बात है, उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है एंड टेस्टी भी होता है। बट देखा गया खाने के उसमें कि हमने लोग पपीते के पत्ते खाने लग जाते हैं, पपीते के पानी का जूस,
2: नीम और लेमन ग्रास।
0: हाँ, तो पपीते का अगर आप देखो तो पका हुआ पपीता भी या थोड़ा कच्चा पपीता बहुत कड़वा होता है
2: जी,
0: उसका पत्ता तो बहुत ही कड़वा होता है। अगर आप कड़वी चीज खाएंगे तो आपको और उल्टियां होगी, आपको और नौजिया होगा, तो आपका जो हाइड्रेशन रखना है वो और बुरा हो जाएगा। और कहते हैं उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं,
1: एलोवेरा भी लोग
0: हाँ एलोवेरा ये सब चीजें और
1: बीट ग्रास होता है, एलोवेरा
2: और लेमन ग्रास,
0: तो ये सारी चीजें जो होती है इससे अगर आपको उल्टियां आ रही है तो आपको हार्म ज्यादा करेगा, आपको डिहाइड्रेशन करेगा, आपका नॉर्मल खाना भी बंद करेगा। तो हमने स्टडीज भी देखी है, प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी कड़वी चीज ना खाएं, नहीं तो लोग ऐसे आते हैं कि हमें बोला कि बकरी का दूध पीना है कच्चा, उससे ठीक हो जाता है प्लेटलेट।
2: जी, जी।
0: और क्या क्या चीजें खा रहे हैं, बट कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है, साफ पानी पीना है, अगर हो सके तो बॉयल करके पानी को ठंडा करके पिए, और हो सके तो थोड़ा एक चुटकी भर नमक और एक मुट्ठी भर चीनी डाल के ORS बना ले घर में, दैट इज द बेस्ट थिंग, और जो एपेटाइट है आप खाएं।
2: डॉक्टर साहब, जो डेंगू का जो वायरस है, ये मेनली कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है?

0: सबसे इम्पोर्टेंट तो कार्डियोवेस्कुलर कहेंगे, तो कार्डियोवेस्कुलर में वेस्कुलर ब्लड वेसल में ही इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो वायरस आता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो बॉडी रिएक्ट करके आपकी कैपिलरी जो ब्लड वेसल धमनियां हैं उसमें लीकेज कर
1: लीकेज
0: रही
1: शुरू हो
0: है।
1: जाती है।
0: तो लीकेज करेगा तो आपके जो एक तरह से ब्लड वेसल ब्लड प्रेशर ना उस ब्लड वेसल के टोन से या उसकी प्रेशर से बनता है। जब कैपिलरी लीक होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर एक बार कम हो गया नॉर्मल, जैसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 120 से, हम लोग 90 से ऊपर लेते हैं, 120 तक कहते हैं। अगर 90 से कम सिस्टोलिक बीपी, ऊपर वाला बीपी कम होता है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है आपको सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे। आपका लीवर में LFT डिरेंज हो जाएगा, KFT डिरेंज हो जाएगा, तो सारे फंक्शन डिरेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड वेसल में एक्ट करता है। बट देखा गया कि कुछ में सिवियर डेंगी में आपके लीवर में डायरेक्ट एक्शन कर देता है, तो आपका लीवर डैमेज होकर आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा उल्टियां या बेहोशी हो सकती है। और दूसरा ब्रेन में भी एनकेफलोपैथी भी कर सकता है, या कई बार डेंगी एनकेफलाइटिस हो सकता है। तो वो रेयर टू रेयर इंस्टेंसेस है, कॉमन नहीं है, और उसको प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल है ब्रेन का टेस्ट करके, इमेजिंग करके या CSF टेस्ट करके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिलरी लीक हो रहा है, आपकी धमनियां लीक कर रही है, तो आपको लीक में जितना फ्लूड जा रहा है आपके लीकेज में, आपको IV फ्लूड से उसको चढ़ाना है या मुंह से लेना है।
1: डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी के, किसी भी रोग के, कि इसका रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है।
2: भारत सरकार की पूरी यही कोशिश रहती है कि डेंगू को प्रिवेंट किया जाए, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी को लेकर चलते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपको मच्छर के काटने से बचना है। तो कैसे बचना है कि पहले तो अपने घर के आसपास और घर के अंदर किसी भी कंटेनर में, चाहे छोटा सा भी कंटेनर हो, स्पेशली फ्लावर पॉट्स, उसके नीचे रखी हुई ट्रे, उनके ऊपर पानी कहीं जमा नहीं होने देना है। ये डेंगू का मच्छर इवन एक साल बाद सर्वाइव कर जाता है, जो आपने पानी जैसे कूलर खाली किया, उसको ड्राई कर दिया, बट एक साल तक अगर आपने उसको स्क्रब नहीं किया, एक साल बाद आप दोबारा फिल करेंगे तो उसका एग फिर से लाइव हो जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी पानी जो है वो रुका हुआ, ठहरा हुआ 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक डे मनाते हैं, ड्राई डे जिसे कहते हैं, कि हफ्ते में एक दिन एक ड्राई डे मनाएं, जिसमें कि एक तो पानी खाली कर दें, दूसरा बहुत समझने की जरूरत है कि डेंगू का मच्छर बहुत एफिशिएंट है, एक सिंगल बाइट से भी वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को। तो यानी कि आप पूरे वहां के और नीचे, क्योंकि वो प्रेफर करता है लेग्स पे, फेस पे, आर्म्स पे, यहाँ पे उसको बाइटिंग प्रेफरेंसेस हैं, तो इन पार्ट्स को अपना कवर रखें। और स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए हम जैसे रिकमेंड करते हैं कि अगर वेक्टरबॉर्न का सीजन है, तो अगर कोई भी डेंगू मलेरिया का पेशेंट या चिकनगुनिया का भर्ती होता है, तो उन हॉस्पिटल्स में बेडनेट्स हमेशा रहने चाहिए, ताकि विद इन हॉस्पिटल भी ट्रांसमिशन ना हो, ये भी देखने में आया है। और घर में आप जो है दिन के टाइम भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी में सो सकते हैं, रात को तो, क्योंकि ये डे बाइटिंग मस्किटो है, तो सबसे ज्यादा इसमें ना जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म इस तरह की रहती है कि उनके पैर में दिन भर वो बैठे हुए हैं क्लास में, और क्योंकि वो मच्छर की हाइडिंग प्लेसेस ही वो हैं कि वो थोड़े से डार्क एरिया में छुप जाता है, तो टेबल के नीचे और इधर उधर छुप गया तो वो बाइट कर सकता है।
1: बस छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि फॉगिंग का कोई रोल है?
2: फॉगिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और फॉगिंग बड़े मैसिव अगर कहीं पे आउटब्रेक्स हो जाए या आपको बहुत हैवी वेक्टर की ब्रीडिंग मिले, क्योंकि फॉगिंग आउटडोर होती है, आउटडोर में ये मच्छर इतना पनपता ही नहीं है, ये मोस्टली अंदर घर के पनपता है। और कई बार लोगों को देखा गया है कि जब फॉगिंग हो रही होती है तो खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो घर के अंदर तो आपका केमिकल गया नहीं है, तो घर के बाहर है, तो जब आप खिड़कियां खोलोगे तो मच्छर बाहर से और अंदर आ जाते हैं। तो फॉगिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हमको पर्सनल प्रोटेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और यही गवर्नमेंट के प्रयास है।
1: डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुजीता कृपलानी अस्पताल में। डॉक्टर तनु जैन और प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम, आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।

0: नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, विज्ञान और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है। जीवन दर्शन और जीवन शैली के समुचे कर्मकांड और उसके परिणाम मनुष्य के साहित्य में परिलक्षित होती हैं। इसीलिए साहित्य को जीवन दर्पण भी कह सकते हैं। इसमें विज्ञान भी शामिल है। वैज्ञानिक समाज के विकास में विज्ञान, साहित्य और पुस्तकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान के प्रसार की सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक युग में तकनीक के साथ साथ गलत सूचनाओं को रोकने और समाज आज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने में ये पुस्तकें, जो कि विज्ञान की पुस्तकें होती हैं, विज्ञान साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं, वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे, पुस्तकों पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक समाज के विकास में इनके महत्व क्या है, किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से ये लोगों के काम आ सकती हैं। इनके महत्व को बताने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त दानिक्स अधिकारी महेश कुमार गुप्ता जी को। और महेश कुमार गुप्ता जी जो अपनी किताबें लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, वो महेश भारती के नाम से रचनाएं करते हैं। महेश कुमार गुप्ता जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: महेश जी, हमने कई अधिकारियों के नाम तो सुने हैं, कई पोस्ट सुने हैं, लेकिन ये जो दानिक्स अधिकारी हैं, ये किस प्रकार के अधिकारी होते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है?
2: ये दानिक सेवा जो है ग्रुप बी सर्विसेज है, और इसमें से ज्यादातर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें से उनका चयन होता है, और कुछ अधिकारी जो है स्थानीय प्रशासन से पदोन्नति पाकर इसमें आते हैं। दानिक्स का मतलब हुआ कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप सिविल सर्विसेज,
1: यानी कि ये इन सभी यूनियन टेरिटरीज हैं लगभग, उनके वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके अधिकारी हैं। आप तो इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी रहे एक प्रकार से, और आपने कई स्थानों का भ्रमण भी किया हुआ है। क्या आपकी विज्ञान में रुचि रही है क्या?
2: हाँ, विज्ञान में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, कॉलेज टाइम से रही है। फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा मंगल ग्रह पर जीवन, तो वो उस समय हिसार एक शहर है, वहाँ से एक नवनाद पत्रिका निकलती थी, मेरा पहला लेख उसमें छपा था। पहली किताब चांद से मंगल तक तब आई जब मंगल पर एक अमेरिका की एक बग्घी वहाँ गई, और तब वो प्रकरण ताजा था, और फिर उसी के कुछ दिन बाद ही ये पुस्तक आई चांद से मंगल तक। उसका फोकस चांद से ज्यादा मंगल पर था।
1: जी महेश जी, आपने अभी एक शब्द कहा बग्घी, ये बग्घी शब्द साइंस में
2: रोवर का हिंदी अनुवाद है। रोवर जो है, जैसे चंद्रमा पर रोवर जाता है, मंगल ग्रह पर जाता है, वो घूमता रहता है। अच्छा, मुझे इस समय कोई उससे उचित कोई शब्द उसका रूपांतरण लगा नहीं। रोवर को हो सकता कि आप मानक शब्द कुछ और हो, परंतु मेरे दिमाग में बग्घी है। रोवर हिंदी के पाठक के लिए इतना प्रचलित नहीं है। जो अंग्रेजी जानने वाला हिंदी का पाठक है उसके लिए सामान्य हो सकता है, परंतु बहुसंख्या ऐसी भी संख्या के लोग हैं हिंदी के पाठक जो अंग्रेजी इतनी नहीं जानते, तो उनके लिए बग्घी शब्द जो है वो उनके मानस में जल्दी स्ट्राइक करता है। जिन विषयों पर मैं लिख रहा हूँ, ये रॉकेट साइंस है, और इसका मतलब ये जटिल विषय है। जटिल विषय को आप जो है कितने सरल तरीके से उसका संप्रेषण आम जन तक कर पाते हैं, परंतु ओवरऑल हमारा प्रयास ही रहता है कि उसमें मेरे अंदर जो कवि और साहित्यकार है वो उसकी भी झलक मिले, और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग ना करके देशज और उर्दू निष्ठ शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में फ्लो भी रहे और बोलचाल की भाषा के निकट, जन भाषा के निकट वो आ सके।
1: महेश जी, पिछले दिनों चांद हमारे लिए बहुत महत्व हो गया, पिछले दिनों चंद्रयान भी गया था, चंद्रयान हमने भेजा था, और आपकी जो तीन किताबें प्रकाशित हुई हैं, और आपके मन में आगे भी लिखने की, आगे भी रचनाएं करने की कुछ आप सोच रहे होंगे, चल भी रहा होगा काम, तो तीनों किताबों में चांद शब्द कॉमन है, या फिर मून शब्द कॉमन कहना चाहिए, तो ये चांद के प्रति आपका लगाव?
2: चांद के प्रति मेरा ही लगाव नहीं है, पूरी मानव प्रजाति का है। उसका कारण एक ही है कि एक तो ये सबसे निकट पृथ्वी के खगोलीय पिंड है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह, और दूसरे जो है कुछ संभावनाएं ऐसी बनती है कि वहां पर कुछ विशेष प्रकार के खनिज पदार्थों की बहुतायत है, और भविष्य में संभावना बनती है कि वहां हम खनिज पदार्थों का दोहन कर पाएंगे। दूसरे क्या है कि आपने देखा होगा कि 6.5 करोड़ साल पहले उल्क शायद यही मानता है कि उल्का गिरने से डायनासोर नष्ट हो गए, और अगर भविष्य में ऐसा उल्कापात हुआ पृथ्वी पर और यहाँ पर जो रहने वाली मानव प्रजाति है वो नष्ट हो गई, और अगर हमने उससे पहले वहाँ बस्तियां बसा ली, तो हमारा कुछ पार्ट जो है वो हो सकता है उससे सुरक्षित रह पाए। चांद का नाता हमेशा से रोमांस से रहा है, और चांद जो है प्रेमी प्रेमिकाओं और आदि मानव के जीवन में, आज हम इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आज जबकि कृत्रिम रोशनी का युग है, आदि मानव के जीवन में चांद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, एक प्राकृतिक रोशनी का काम करता। दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है, अब रात को जो है ना जब चंद्रमा की कलाएं ज्यादा होती है तो उसके काफी खतरों से उसको बचाता था।
1: जी, चांद, जब कभी किसी की तारीफ करनी हो तो चांद की बात होती है,
2: चांद की बात होती है
1: ना, जब किसी को मतलब कुछ कम दिखाना हो तो चांद पे दाग लगा हुआ है, इस प्रकार की बातें होती है।

0: बिल्कुल बिल्कुल, चांद जो है ना मतलब आदिकाल से लेकर मेरी पुस्तक में मैंने कालिदास जी को भी कोट किया है।
1: अच्छा, कालिदास को भी कोट किया।
0: कालिदास को भी कोट
1: किया। तो आप किस प्रकार से रिलेट कर पाते हैं कि साइंस और कहां कालिदास जी और कहां साइंस?
0: गीता को भी उद्धृत किया गया है, गीता के भी संस्कृत के श्लोक है। पहली मेरी पुस्तक आई थी तो उसका जब समीक्षा की गई तो नवभारत टाइम्स ने लिखा था ये विज्ञान में हिंदी की तरह लिखी गई पहली पुस्तक है। मतलब आमतौर पर क्या होता है कि अनुदित पुस्तकें होती है या नहीं भी होती है तो उस पर अनुवाद की छाया होती है, आपको पढ़ने से लगेगा भाई ये अनुवाद किया गया। अब हिंदी के मुहावरे में अगर लिखा जाए तो फिर आपको अटपटा नहीं लगेगा।
1: चलिए, ये तो किताबों की बातें हुई और आपने इस प्रकार से सबको एक रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, किताबों में लिखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपकी जो किताबें हैं पसंद जरूर आएंगी। वैसे देखा जाए तो जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है किताबों में साहित्य को लेकर के और या फिर जो तार्किक होता है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके दृष्टिकोण का इस प्रकार का विकास के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये लिखा गया है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और दूर दराज इलाकों में रहती है जहाँ की आपका रेडियो प्रबल है और उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और रेडियो के साथ साथ फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उन लोगों में विकसित करना है तो हमें जो है उनकी भाषा में यानी हिंदी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में विज्ञान पर लिखना होगा। बहुत लोगों ने लिखा है, भीष्म पितामह जी विज्ञान लेखन के, मुनाकर मोले जी रहे हैं, बहुत लिखा है, आजकल भी लिख रहे हैं लोग, देवेंद्र मेवाड़ी जी लिख रहे हैं, परंतु इतना ज्यादा प्रोत्साहन शायद साहित्य के मुकाबले में विज्ञान को नहीं है अभी।
1: यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं विज्ञान को अगर हम बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बातचीत करें या लोगों को बताएं तो थोड़ी सी रोचकता कम हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कुछ साहित्य की कुछ और विधाओं को यानी कि कुछ हास्य टाइप की, कुछ जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनकी बातों को लेकर के उनको अगर कोट कर दें, उनको अगर रिलेट कर दें तो वो ज्यादा रोचक बन जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप?
0: सही बात है ये, क्योंकि नवीनतम पुस्तक में मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को कोट किया है, इस पार प्रिय तुम हो पार, इस पार न जाने क्या होगा
1: जी,
0: इस पार प्रिय तुम हो मधु है
1: जी,
0: उस पार न जाने क्या होगा
1: जी,
0: और चांद आता है उदास है, ये कविता है
1: जी जी,
0: और द्वितीय पुस्तक में मुक्तिबोध जी की कविता है और उसके बारे में कहते हैं हमारे कंधों पर चंद्रमा मंगल पर जाने वाले ये लोग, तो उन्होंने कटाक्ष किया है
1: जी जी जी।
0: तो मेरे को जहाँ से जो मौका मिलता है मैं ऐसा करता हूँ, हास्य का पुट भी देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बोझिल विषय को अगर आप रुचिकर बना पाएंगे तो वो आपकी उपलब्धि है, अदरवाइज विज्ञान में शाब्दिक अनुवाद कर देना वो कोई विशेष उपलब्धि नहीं।
1: वैसे देखा जाता है कि विज्ञान के जो जटिल सिद्धांत है उनको अगर सरल भाषा में समझा करके सामान्य जनता तक पहुंचाई जाए तो उसमें और ज्यादा रोचकता बनी रहती है और उसकी जो एक उद्देश्य है उसमें हम सफल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
0: ठीक बात है, इसके लिए जरूरी नहीं कि जो लेखक जो है वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक अगर अपनी बात कहेगा तो वो साइंस टर्मिनोलॉजी में कहेगा, और उसका अच्छा संप्रेषणीयता होनी उसके पास जरूरी है, वो संवाद स्थापित कर सके और कम्युनिकेटर अच्छा होना जरूरी है उसके लिए
1: जी। तो जो नई सोच और रचनात्मकता जो होती है इसमें किस प्रकार सामने आती है, जैसे विज्ञान कथा है, विज्ञान की जो कोई कहानी है, साइंस फिक्शन की कहानी है, उनको आप किस प्रकार से इसमें शामिल करने के लिए देखते हैं?
0: विज्ञान कथा जो है ना तो उसका सम्मिश्रण है कल्पना और स्वप्न और फैंटेसी, और मेरी पर्टिकुलरली विशेषता ये जो नवीनतम पुस्तक है ये इस तीनों चीजों को मिलाकर इसको मैजिकल रियलिज्म यानी जादुई यथार्थ की परिधि तक लाकर खड़ी करती है। हमने इसमें बात की 2055 के आसपास चंद्र पर्यटन सामान्य बात हो जाएगी और आम नागरिक भी सामान्य रूप से चंद्रमा का भ्रमण कर पाएंगे और उनमें से कुछ लोग नवविवाहित जोड़े वहाँ हनीमून मनाने की भी सोच पाएंगे।
1: अच्छा, हिंदी साहित्य में जो विज्ञान कथा की जो परंपरा है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या विज्ञान कथा को साइंस फिक्शन के रूप में भी प्रस्तुत करना ये लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर उपाय मानते हैं?
0: मानता हूं, क्योंकि साइंस फिक्शन हो या विज्ञान कथा हो उसका वो आधार जो है ना विज्ञान ही हो, तो और विज्ञान को आधार लेकर उसमें कल्पना की जाती है, प्रोजेक्शन किया जाता है भविष्य। विज्ञान कथा में जो ना ये हमें छूट रहती है कि हम उसको कल्पना भी उसमें शामिल करें और कल्पना ऐसी शामिल करें जिसका तार्किक आधार हो, और प्रोजेक्शन जो है वो रियलिस्टिक हो, उसका भविष्य का जो आकलन है वो पाठकों को जचे। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो विज्ञान कथा से हटकर जो बातें हैं उसके अंदर आपको तथ्य ही देने पड़ेंगे। विज्ञान कथा में आप ये छूट ले सकते हैं, आर्थर सी क्लार्क साहब ने बहुत विज्ञान कथाएं लिखी, सबसे प्रसिद्ध वही हुए हैं। विज्ञान कथा तो फिर आपका फिक्शन है, साइंस फिक्शन है,
1: साइंस फिक्शन है,
0: और जो तथ्य जैसा है वो तथ्य आपको वैसा ही देना पड़ेगा।
1: महेश जी, आप कई जगहों पर कई स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहां की परिस्थितियों को देख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी कि आपने अंडमान निकोबार में भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो वहाँ की जो जैव विविधता है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? वहाँ की जो जैव विविधता कह सकते हैं कि एक बेहतरीन उदाहरण है पूरे देश के लिए।
0: देखिए, ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उन स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है जो अलग थलग हो, जिनके बीच में सीधा संपर्क ना हो, भूमि मार्ग से संपर्क ना हो।

0: अपने मन की बात कार्यक्रम में मैंग्रोव का जिक्र किया था। तो मैंग्रोव के पौधे लगाए जाए, मैंग्रोव के जंगल हो यहाँ पर, तो जिससे कि जैव विविधता बनी रहेगी, जल संरक्षण होगा।
1: इसके अलावा आपदा के समय में वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं मैंग्रोव।
0: जी, ये बहुत बड़ा।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी।
1: जब सुनामी आएगी या तूफान आता है तो उनकी जड़ें बाहर होती है और वो एक तरह के बैरियर का काम करते हैं, हमें बचाते हैं। और कोरल जो है, कोरल रिच है, अंडमान लक्षद्वीप भी कोरल रिच है, परंतु ज्यादा दोहन से, ज्यादा टूरिस्ट आने से तो उसका धीरे धीरे थोड़ा उस पर प्रभाव आता है, परंतु वो नेचुरली ग्रो करते हैं। एक और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अंडमान में कई जगह ऐसी है जहाँ ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से कछुए आकर अंडे देते हैं।
0: अच्छा।
1: और वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति ओलिवर रिडले, तो वो एक सीजन में जनवरी के आसपास आकर वहाँ पे अंडे देते और चले जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: वहाँ का वन विभाग उन अंडों को संरक्षित करता है, फिर हैचिंग होता है, उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं उनको सुरक्षित जो है ना, वो नेचुरली अपने आप पानी में चले जाते हैं।
0: अच्छा, तो नेचुरली फिर वो फिर वापस चले जाते हैं।
1: वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट तो पानी है।
0: जी जी
1: उनको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप चले जाते हैं।
0: तो जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप जो कि टापू है, वहाँ पर लोगों की पहुँच कम है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो संरक्षित है।
1: कह सकते हैं, परंतु संरक्षित होने का यही एक कारण नहीं है कि लोगों की पहुंच कम है। लोगों की पहुंच होने से भी हम ऐसे दिशा निर्धारित कर सकते हैं जिससे उनकी जो नेचुरल स्टेट है उसको खतरा ना हो। जैसे हमारा सीआरजेड रेगुलेशन है, सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके अंदर यह है कि जो हाई टाइड का पॉइंट है उससे 500 मीटर के अंदर आप कोई पक्का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी बचाव होता है। सवाल कानूनों का नहीं है, उनके लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन का। तो अंडमान में एटलीस्ट इनको सख्ती से लागू किया जाता है।
0: तो वहाँ पर जो ऊँगी और ये जो जरवा जनजाति है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके प्रकृति की ये तो खास बिल्कुल करीब रहते हैं और इनको प्रकृति के बारे में बहुत बखूबी मालूम भी रहता है, तो क्या उन्हें भी हम एक प्रकार से संरक्षित करने या फिर उनके द्वारा जो जैव विविधता है वो संरक्षित होती है कह सकते हैं?
1: बिल्कुल होती है, और उसके लिए अंडमान प्रशासन और वहाँ का जनजाति विभाग जो है पूरे प्रयास करता है। जो आपका जरवा जनजाति है या ऊँगी है, उनको मतलब हैंड्स ऑफ, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए परंतु उनको सपोर्ट भी किया जाए। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, तो वहाँ के लोग तो आदिवासी जो है
0: हटबे में चले गए थे, जो
1: नहीं, वो पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर के करीब है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ वो किसी को नहीं आने देते, वो कोई आता है तो फिर वो जब तक पानी में रहता है तो कोई बात नहीं, जैसे वो जमीन पे कदम रखेगा तो वो उसको हत्या कर देते हैं, उनको खतरा लगता है। और एक अमेरिकी नागरिक जो था वहाँ पर गए थे बाइबल लेकर, तो बाद में कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली थी।
0: तो अगर वहाँ से प्रेरणा लेकर के अगर हम वहाँ की तरह, तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है शहरों में खासकर, और गांवों में आजकल पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहां पर भी अब जो मौसम है वो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सब के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, प्रकृति ने हमें कई वरदान दिए और मनुष्य प्रजाति अगर उनका सम्यक रूप से प्रयोग करेगी, दोहन करेगी तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा एमिशन रहेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी, तो उसमें अल्टीमेटली पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिससे अजीब किस्म की मौसमी परिस्थितियां नजर आती है। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो स्थापित जो मौसम होता है उसमें जो प्रकृति की क्रिया है, उनके बारिश में बारिश होनी चाहिए, कई बार बारिश के सीजन के अलावा इतने बारिश और तूफान आते हैं, तो वो इसी का परिणाम है। अंडमान इतने लोग नहीं जाते हैं, अंडमान इसलिए नहीं जाते कि वहाँ का जो वायुयान का किराया है वो बहुत अधिक है, और इससे कम खर्च में तो आमतौर पर नागरिक थाईलैंड चले जाते हैं।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी भी पर्यटन को काफी बढ़ावा देते हैं, देश घूमने की सलाह देते हैं, बाहर जाने की बजाय अपने देश में ही घूमें, अपने देश को देखें, देश को जाने, अपनी संस्कृति को देखें, जाने पहचाने।
1: हमारे देश में बहुत विविधता है, बहुत सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल है, द्वीप है, अनेक चीजें हैं जिनका हम आनंद ले सकते।
0: जी, महेश कुमार गुप्ता जी, क्योंकि हमें वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, वक्त के साथ चलते हैं, और इसीलिए हमें आपसे विदा लेनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी बात।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीला मलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती आकाश। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 10 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और

0: मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट। इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपए से घटाकर 16.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपए कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour, aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. Later, the news organization officially withdrew the report and deleted the post regarding it from social media handles. In a social media post, the leading news outlet acknowledged that the report was inaccurate.

0: जी हाँ, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। इस खूबसूरत गीत के बाद नवीन, बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं और हमारा जो अगला संदेश है ये अंसारी परिवार से हमारे पास आया है, पंजू सराय संभल से छोटू आलम और असद। ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगता है, आप का प्रोग्राम बेहद शानदार होता है, तो आपके आने से ये प्रोग्राम और भी ज़्यादा शानदार हो गया है और पूरा परिवार जब इसे बैठकर सुनता है तो क्या बात है। नवीन, अगला संदेश किसका आया है?
1: अगला संदेश हमें मिला है सीताराम कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, और नमस्कार, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ऐसा लिखते हैं। तुलसी मस्कीन का संदेश हमें मिल चुका है। प्रिय होस्ट सिद्धार्थ जी, नवीन जी, आज हम कुछ हटके कर रखे हैं, जितना पैदल हो सकता है चलेंगे। नाइस सॉन्ग से आगाज 16 बरस की, ब्यूटीफुल। अच्छा सिद्धार्थ, कितनी अच्छी बात कही है, आज
0: जी
1: इन्होंने सोचा है कि खूब पैदल चलेंगे, यानी सेहत का तुलसी मस्किन जी बहुत ख्याल रखते हैं, ये तो आपकी पोस्ट से हमें समझ आ रहा है। और आप हमारे गीतों को कितनी बारीकी से सुनते हैं, ये भी हमें समझ आ रहा
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और नवीन, तुलसी जी के साथ वीणा, आशीष, चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिधान खुराना सारे ही आज पैदल चल रहे हैं और अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। देखिए, अभी इस समय जैसा कि नवीन, हमें पेट्रोल को बचाना है, ईंधन को बचाना है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो इस समय पैदल तो चलना ही। और हम तो अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का आप उपयोग करिए, और दिल्ली में हैं तो मेट्रो से जाइए, बसेस से जाइए। और जब आप एक ग्रुप में आप ट्रैवल करते हैं, जब आप एक भीड़ के साथ जाते हैं, तो आपको सफर का पता नहीं चलता है, क्यों नवीन?
1: बिल्कुल, और याद कीजिए 16 बरस वाले वो दिन, जब आपके दोस्तों का पूरा ग्रुप निकल पड़ता था पैदल, और आपको पता ही नहीं चलता था कि कब आपके 5, 10, 15 या 20 हज़ार कदम हो गए, जिन्हें आप गिनते रहते हैं, है ना सिद्धार्थ।
0: बिल्कुल
1: बातें करते हुए, जोक सुनाते हुए और पेट्रोल बचाते हुए आप निकल पड़ते थे। बहुत खूबसूरत संदेश तुलसी मस्कीन जी का था। ऐसे बहुत सारे संदेशों का हम इंतजार कर रहे हैं। सतीश अनेजा का हमें इस समय संदेश मिल चुका है। सतीश अनेजा हमें लिखते हैं, नमस्कार जी, आप दोनों भाइयों को प्रोग्राम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप भाई, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चंडीगढ़ सिटी से लिखते हैं सतीश अनेजा, और उनके साथ हैं बिमला अनेजा।
0: और अगला जो हमारा संदेश है वो भी मोहाली चंडीगढ़ से आया है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज हमें ये लिखते हैं कि डियर प्रोग्राम एंकर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम अवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन इन द सब्जेक्ट।

0: और यू कैन इंक्लूड दिस मेल इन माई सुटेबल सॉन्ग। तो हमने आपका नाम शामिल कर लिया है, और कैसे हम छोड़ सकते हैं आपका नाम। और रवीन, अगला संदेश किसका आया है?
1: ये संदेश है मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। हम आपसे कह रहे हैं लगातार के खूबसूरत संदेश, एक ऐसा संदेश जो हमारे साथ आप अपने दोस्तों को बांटना चाहते हैं। अपने नाम के साथ आप वो भी लिख दीजिए। आदरणीय सिद्धार्थ और नवीन जी को प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा नमस्कार हम दोनों की तरफ से। आशा सपकाल, किशन सपकाल, साईराज सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। और इन्होंने कहाँ से भेजा है, ये है शास्त्री नगर बीड शहर से।
0: और रवीन, हमारे जो श्रोता बंधु हैं उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब हम जो अगला गाना प्ले करेंगे, तो आप उसमें आप हमें उस फिल्म का नाम बताने की कोशिश करिए, पहचानिए कि किस फिल्म का गीत है और इसके गायक कलाकार कौन है।
1: और अगर ये गीत आपको अच्छा लगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये फिल्म, ये गीत आपको क्यों अच्छा लगा। बहरहाल, सुदर्शन मुखी साथ में अनीता सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से ये लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ और ऑब्लिक एंड भी लिख सकते थे नवीन जी।
0: लेकिन नवीन जी तुम्हारे में ही है, सिद्धार्थ मेरे में है, तो इसमें जी थोड़ा सा नाम लेने में ज्यादा अपनापन ज्यादा है।
1: बिल्कुल, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड मॉर्निंग। ऑन आर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं एंड वी होप कि आप, जो सवाल हमने पूछा है ना कि ये गीत किस फिल्म का है, किसने गाया है, और ये फिल्म आपको क्यों पसंद है।

0: अब याद आया, महात्मा बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, आपने एकदम सही बताया है। और ये हमें बता रहे हैं संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत, भरत, कमल और पूरा जो मक्कड़ परिवार है ये हमको इस समय सुन रहा है। और नवीन, किस श्रोता ने और क्या लिखा है, देखते हैं। बिल्कुल
1: सिद्धार्थ, हमने पूछा था कि ये जो गीत हम सुनवा रहे थे ये किस फिल्म का था, इसे किसने गाया था। और नमस्कार जी आपको आरजे जी, कर्ज फिल्म का ये गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ से सजा हुआ है सर। बहुत सही आपने इसे ढूंढ लिया है। और ये खैल बाजार पानीपत से लिखने वाले नरेश मल्होत्रा और उनका परिवार, और परिवार में इनके हैं नीचू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डग्गू सिक्का ने हमें ये संदेश
0: जी हाँ,
1: भेजा
0: इन्होंने
1: है।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसके अलावा कैथल हरियाणा से हमारे साथ मधु नायक और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नवीन, देखते हैं क्या किसी और श्रोता ने भी हमें सही जवाब दिया है। देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ तो जुड़े ही। और यहाँ पर लिखा है कि दोनों होस्ट जी आदाब और नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आदाब और नमस्कार। आपके आने से प्रोग्राम शानदार हो गया है, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना, मेरा मेल ज़रूर से ज़रूर शामिल करें।
1: और साथ ही उन्होंने हमारे सवाल का जवाब भी लिख के भेजा है। कर्ज फिल्म का ये गीत था और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कीजिए। देखिए, कर्ज के गीत में हमने आपको शामिल कर ही दिया है। भेजने वाले हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, फूलवाले इमरान अहमद, और कापसखेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं लिखने वाले आमना नसरीन, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त परिवार।
0: जी हाँ, फूल वाले परिवार के बाद हमारे जो अगले श्रोता हैं वो उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हमें लिखते हैं कि किसी भी फिल्म से आप गीत सुनवाएं तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के ही प्यार भरे गीत।
1: नमस्कार, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। देखिए, आपका मेल शामिल हो चुका है। सिर्फ नाम ही नहीं, संदेशों के साथ अगर मेल भेजेंगे तो देखिए ना प्रोग्राम में कैसी रौनक आ जाएगी। कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगल, ये हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से लिखने वाले।
0: जी हाँ, देश के कोने कोने से हमारे श्रोताओं का एक संदेश ही हमें मिल रहे हैं। और हमारे अगले जो लिसनर हैं वो लिखते हैं, आप दोनों को हमारा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। जी हाँ, आपने लिखा है कि फिल्म कर्ज से ये गीत था और गायक थे मोहम्मद रफ़ी। बिल्कुल सही जवाब, आपके लिए तालियां बनती हैं। और ये हमें सही जवाब दिया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और इसके अलावा हमारे पास जो अगला संदेश आया है, लिखते हैं कि माय डियर ब्रदर्स, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा मैसेज कहां गायब हो गया है, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर, अंगल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया लिख रहे हैं। तो बिल्कुल हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया, ये कहीं नहीं गायब हुआ है बल्कि हमारे दिल में उतर गया है।
1: आपका मैसेज कहीं गायब नहीं होगा मांगेराम जी, आपका भी मैसेज कहीं गायब नहीं है। मांगेराम सातौड़, हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन, ये सिद्धार्थ जी हैं अर्थात जी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक। और नवीन जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों की प्रस्तुति बहुत अच्छी है, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, गीत सुनवाइए, बिल्कुल आपका प्रोग्राम, आपकी पसंद।
0: देखो नवीन, इतनी सारी बातें कही हैं तो गीत तो सुनवाना बनता ही है। तो हम जो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसमें भी अगर आप चाहें तो हमें इस फिल्म का नाम और जो गायक कलाकार हैं उसका नाम आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने ध्यान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और साथ ही आपने बहुत सारी बातें बताई, किसी ने बोला कि वो आज का दिन पैदल ज़्यादा चलने वाले हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देने वाले हैं, तो आप आज अपना दिन कैसे बिताने वाले हैं?
1: और ये ज़रूर बताइए इस गीत को सुनने के बाद कि लाइफ में दोस्ती कितनी ज़रूरी है।
0: दोस्ती कितनी ज़रूरी है, नवीन हमारी दोस्ती भी देखो कुछ कम नहीं है। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी बताएंगे कि उनकी दोस्ती कैसी चल रही है।
1: बिल्कुल,

0: जी हाँ, आया मौसम दोस्ती का। हमने बात की थी कि दोस्ती आपकी कैसी चल रही है, कौन सी फिल्म है, कौन है हमारे जो इस गीत को किसने गाया। तो बहुत सारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं, कुछ ने सही, कुछ ने कुछ नाम। हमारे बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने हमें मैसेज किया है, उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और
1: चरणदास
0: जी
1: ने हमें मैसेज किया है, राजू बिंदल चरणदार, केशव जी दक्ष चौधरी और वास वासदल, इस तरह से उन्होंने हम लोगों को मैसेज भेजा है। रवि कुमार बहल ने हमें भेजा है, साथ में रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत, राहुल।
0: और नवीन, इन्होंने लिखा है कि उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर, एसपी, फिल्म है मैंने प्यार किया, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से।
1: एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम इन्होंने सिर्फ आधा लिखा है क्योंकि शायद इनको नाम इनका
0: जी
1: पूरा
0: हाँ,
1: नहीं
0: और
1: आ रहा
0: एक्चुअली
1: होगा।
0: उन्हें प्यार से हम एसपी भी बोलते थे, तो बिल्कुल उनकी जो मखमली आवाज़ है वो हमारे दिलों में उतर जाती है। एकदम सही बात कहा नवीन आपने। और अगला संदेश किसका है?
1: अगला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा का अगला संदेश। लगातार हमारे पास संदेश आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारे ये लिखते हैं श्रोता, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत करने

0: वाले दोनों भाइयों को सुप्रीम नमस्कार। तो आपको भी हम दोनों का नवीन नमस्कार। ये कहते हैं कि मेरा मेल शामिल कर लें, कोई भी गीत हमारी पसंद का सुनवा दें, कब होगा हमारा मेल शामिल, प्लीज प्लीज प्लीज जरूर शामिल कीजिएगा। तो बिल्कुल, आप कितने सारे प्लीज के बाद हम आपको कैसे मना कर सकते हैं। सिद्धार्थ और नवीन आज आपके लिए है इस शो में।
1: और इसको भेजने वाले हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया और इनके बहुत सारे साथी। मोहम्मद कुमार का हमें ये खत, ये इनका खत, इनका जो मेल है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और मेल हमें लगातार आ रहा है, ये है चरणदास जी ने, विनोद सुपर, ममता पनिहार, कविता चौधरी हरियाणा से ये हमें लिख रहे हैं।
0: जी हाँ, हमारा अगला जो संदेश है, नमस्कार जी आरजे जी, शुक्रिया कहना तो भूल गए थे आपका, शुक्रिया जी ये मेल नाम शामिल करवाने के, नहीं भेजना सज्जा, सदा खुश रहे, हमें ब्लेसिंग्स भी देने आने, क्या बात है, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हमारे और हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम सभी आरजेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य इनके साथ में कोयल, और आपका संदेश हमें पहले भी मिल चुका है।
1: पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू सिक्का ये लिखने वाले हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, आप दोनों को नमस्कार, बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल, ईशान और पूजा परिहार, इनका संदेश है। तो अब आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म सत्य पे सत्ता का।

0: गायक किशोर कुमार, भूपेंद्र आर डी बर्मन, फिल्म सत्य पे सत्ता, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सलाम है आपको। इसका मतलब है कि आप गीत भी बहुत तरीके से सुनते हैं, फिल्म
1: बहुत ध्यान से सुनते हैं नवीन, और इतनी जानकारी,
0: फिल्मों के बेहद शौकीन हैं।
1: बिल्कुल। और हमारा अगला संदेश हमें लिखते हैं, ये लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता आरजी नवीन और सिद्धार्थ, खुश रहिए, खुशियां मनाते रहिए, और किसी भी गीत में आप मेरा नाम शामिल कर लीजिए। तो कर लिया सुनील पाठक जी आपने, बिल्कुल कार्यक्रम में आप हमारे साथ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस आपने इस कार्यक्रम के दौरान किए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नवीन, हमारे अगले श्रोता कौन है जिन्होंने हमें ईमेल किया है?
0: गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुलाल सिंह, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। एक और हमें खत संदेश मिला है दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हरिमणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखी लाल मणि वर्मा का हमें संदेश आया है। बहुत सारे संदेश
1: आया है हमारे, लिखते हैं प्रस्तुतकर्ता जी को मेरा सादर नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने इसके पहले वाले गाने की बात लिखी है, हम आपके हैं, कौन लिख रहे हैं, ओके, आप इसका गीत सुनना चाहते हैं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और हमारे साथ और भी श्रोता जुड़ रहे हैं, और आपको हमने ये भी बोला था कि आप इसके साथ ये भी बताइए कि आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं। जी हाँ,
0: यहाँ हमने कहा और वहाँ हमें संदेश मिला है बसंत कुमार सिन्हा शॉ का, कहते हैं कि नमस्कार, लाइफ में दोस्ती का महत्व बहुत है, दोस्ती बिना मन सूना सूना सा लगता है। बहुत सही बात कही है श्रोता, रेडियो श्रोतागण तो दोस्ती पर ही निर्भर है। बहुत खूबसूरत दोस्ती की मिसाल 22 अगस्त 2026 को भिलाई में रेडियो श्रोता दिवस पर देखने को मिली। बहुत सुंदर, 3000 से भी अधिक श्रोता भाई इसे एक जगह देख सकेंगे, कितने सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, ये बहुत बढ़िया संदेश है भाई।
1: और नवीन और सिद्धार्थ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी और दमदम एयरपोर्ट
0: कोलकाता से इन्हें संदेश भेजा है। रिजवान रिहान का संदेश हमें मिल चुका है अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से, साथ में है आयशा सभिया और अनस और रेहान, खूबसूरत संदेश हमें लगातार भेज रहे हैं। बाबू भाई का हमें संदेश मिला है उदयपुर, उनके साथ है भारती देवी
1: जी हाँ। और इसके अलावा हमें छत्तीसगढ़ से अंबागढ़ चौकी रिजवान, आयशा, जी हाँ, अनस का इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं नवीन। और इसके अलावा हमें कुछ श्रोता, जी हाँ, ये वाला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखते हैं कि बिल्कुल दोस्ती की बात आपने करी है, दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से नहीं समझ से बनता है, दोस्ती का मतलब जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े, तुम चुप भी रहो तो सामने वाला समझ जाए कि दिमाग में क्या चल रहा है।
0: आगे लिखते हैं कि असली दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में वो तुम्हें सलाह कम देता है, साथ ज्यादा देता है, हंसाने का बहाना ढूंढता है, रोने का कारण नहीं ढूंढता।
1: और ये कहते हैं नवीन की दोस्ती टिकती कैसे है, उम्मीद कम माफी ज्यादा, छोटे छोटे मैसेजेस, पुरानी यादें और बिना मतलब की मजाकबाजी से ही रिश्ता जिंदा रहता है।
0: और कहते हैं कि अगर एक लाइन में कहूं तो दोस्त वो है जो तुम्हारे पागलपन को ठीक कहे, ना कि तुम पागल हो, क्या बात कही है।
1: और इन्होंने ये बाकी श्रोताओं से भी पूछा है कि तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब क्या है, किसी खास दोस्त की याद आ रही है क्या अभी? तो ये हमें लिखने वाले, इतना प्यारा संदेश लिखा है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहल ने, और इसके अलावा इनके साथ इनके परिवार से प्रियंका, मन्नत, मुस्कुरीत और गुरशब्द भी
0: है, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। बहुत खूबसूरत संदेश है।

0: बहुत मज़ा आया पढ़ने में। इतने सुंदर संदेश लिख रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये लिखते हैं मोहम्मद सादिक कटारी, खत्री खत्री खत्री लिखते हैं। और कहाँ से लिखते हैं ये इन्होंने नहीं भेजा, तो आपका मैसेज आधा अधूरा है, लेकिन फिर भी देखिए हमने उसको शामिल कर लिया है।
1: जी हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और भी संदेश आ रहा है। आदर्श नगर, ये पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, सौरव, शायना और शर्मा फैमिली जो है ये पूरी हमारे कार्यक्रम का आनंद उठा रही है। और नवीन, इससे पहले कि हम आगे संदेशों की ओर जाएं, आइए अपने श्रोताओं को एक और गीत सुनवाते हैं।

जी हाँ, और ये जो आप गीत सुन रहे हैं, इसकी फरमाइश हमें भेजी है पंकज शर्मा ने, मॉडल टाउन, ये करनाल से हमें संदेश भेजते हैं।

0: बहुत सारा प्यार लेकर संदेश हमारे पास लगातार आ रही हैं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी का हमें संदेश मिल रहा है। अगला संदेश हमें मिला है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। बहुत सारे संदेशों का तांता लगा पड़ा है। इस बीच रमेश चौहान कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और उनके साथ हैं बेबी करवी चौहान।
1: जी हाँ, और हमारा अगला संदेश आया है अशोक लाला सोनी, मोहन कसारा, शेर सिंह, बाबू भाई, क्लॉक टावर उदयपुर से। लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और एक अभी भी जो मैसेज आया है ये है अशोक जी का, इनका मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। हमारा अगला मैसेज नवीन आया है राजू अग्रवाल, केशव, निर्मला चौधरी ने, पर आपने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है कि आपने कहाँ से हमें संदेश भेजा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा है कि उनको हमारे गानों की पसंद अच्छी लग रही है, तो हमें भी आपके मैसेजेस ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे अच्छे गीत सुनवाएं। और हमने आपसे ये भी पूछा है कि आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं और आप क्या कुछ करने वाले हैं। हमने दोस्ती के बारे में भी बात की थी कि आप अपने दोस्तों से क्या कुछ मायने हैं आपकी जिंदगी में दोस्ती के लिए। और नवीन, हमारा एक और संदेश आया है,
0: ये थोड़ा नाराजगी भरा संदेश है लेकिन हमने इनकी नाराजगी दूर कर दी है। हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं लेकिन आप हमारा नाम मैसेज शामिल नहीं कर रहे। लिखने वाले हैं झज्जर हरियाणा से बिच्चू भाटिया, रीटा भाटिया। अब तो आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी, चेहरे पर मुस्कान।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को मना लेते हैं। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल करें। और मारहरा दरवाजा एटा से लिखते हैं नबी हसन, शाहनास अब्बासी, नावीद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम और यशव। तो आपके संदेश हम कार्यक्रम में लगातार शामिल कर रहे हैं और उठाते हैं इस गीत का आनंद।

0: जॉन डिकेस्ट्रो, साथ में रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, हमें भी शामिल कीजिए। जनकपुरी सहारनपुर से लिख रहे हैं, देखिए हमने आपका नाम शामिल कर लिया। दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू श्रोता, ये हैं सुनने वाले रघुबीर नगर से, आपको भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हैं, कुछ संदेश छूट जाते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं।
1: जी हाँ, क्योंकि होता क्या है कि आपके लगातार संदेश आते रहते हैं और कई बार बहुत सारे हमारे श्रोता जिनके नाम शामिल हम शुरू में नहीं कर पाते, आगे जाके करते हैं तो उनके रिपीटेड मैसेजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि कोई भी श्रोता हमारा छूटने ना पाए। इस बीच हमारे पास इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश और पूरा देवांगन फैमिली इस कार्यक्रम को सुन रही है।
0: और एक और खत, इस खत या यूं कहें कि
1: जी नवीन, देखो खत का दौर जो है वो जा चुका है, खत का स्थान अभी ईमेल ने ले लिया है। लेकिन क्या कर रही है, कुछ पुरानी बातें ऐसी होती हैं, कुछ पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन से जाती नहीं है, तो खत से लेकर ईमेल तक का सफर हमने देखा हुआ है।
0: सहारनपुर से आशा नारंग और सोनाली सुरेश नारंग ने हमें संदेश भेजा है, और इसके अलावा एक और संदेश हमें मिला है, वो मिला है हमें निसार अली का। कहाँ से है लिखने वाले ये?
1: जी ये लिखते हैं धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में निसार जी, नौशाद जी, बेबी, आलिया और आयान जी, आप ये बताएं उत्तराखंड का मौसम कैसा है। यहाँ दिल्ली में तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन उम्मीद है कि उत्तराखंड में थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। और
0: एक नाराजगी वाला संदेश फिर हमारे पास है, और कितनी अच्छी बात है, देखिए हम आपकी नाराजगियां भी शामिल करते हैं, आपकी स्माइल भी शामिल करते हैं। लिखने वाले हैं उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, ये लिखते हैं हमें पंडरिया छत्तीसगढ़ से। इतना अच्छा रोमांटिक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मेरा नाम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, तो नहीं हो सकता। आपने बात की नाराजगी की, तो नाराज भी तो हम अपनों से ही होते हैं, जिनसे उम्मीद लगाते हैं उन्हीं से तो नाराज हो सकते हैं। और ऐसा लिखते हैं गाजियाबाद से हमें प्रवीण कुमार शर्मा, सूर्य शर्मा लेते हैं कि प्लीज मेंशन माय नेम आल्सो। जी हाँ, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड सॉन्ग सेलेक्शंस, बेटर यू यूज माय गॉड। तो ये कहते हैं कि आप कोई ऐसी टेक्निक लगाइए जिससे कि हम सबके नाम शामिल हो जाए, एआई को इस्तेमाल करिए। तो बिल्कुल एआई जो है, एआई से ज़्यादा हम आपके दोस्त हैं, क्योंकि हमारे पास हैं फीलिंग्स जो एआई के पास नहीं है। लेकिन बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल अपने प्रसारण में करते हैं। तो सुनते हैं हमारा अगला गीत।

जी हाँ, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो ये कह रहा है कि हम इस आपके साथ यूं ही जुड़े रहें, लगातार आपके संदेश शामिल करते रहें, लेकिन हर सफ़र एक मुकाम तक पहुंचता है, तो हमारा आज का सफ़र भी अपने मुकाम तक पहुंच रहा है धीरे धीरे।

0: घड़ी की बढ़ती सुइयां हमें कह रही हैं कि यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन हमारे एक श्रोता का नवीन किसका संदेश है?
1: बिल्कुल हम भी मानने वाले नहीं हैं, आपको कैसे छोड़ सकते हैं। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू और राजू मिगलानी और साथ में है बबीता मिगलानी। देखिए चलते चलते आपको भी हम शामिल कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो आज उन तमाम श्रोताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, खूबसूरत गीत आपने पसंद किए।
0: बिल्कुल, और जिन गीतों की आपने फरमाइश की उसे हमने सुनवाने की कोशिश करी, आपने हमें ढेर सारी बातें बताई और ये भी बताया कि हम सिद्धार्थ और नवीन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके साथ कैसे जुड़ जाते हैं और आपके ही परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बेहतरीन होगा। अच्छे से मनाइए, अच्छे से घूमिए, अच्छे से खाइए और ढेर सारी मस्ती कीजिए और आपका दिन खुशियों से भरा हो। इसी कामना के साथ सिद्धार्थ
1: और नवीन का
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स और डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा, स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को

0: आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi reached the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at the Amsterdam airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Prime Minister Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. Later, the news organization officially withdrew the report and deleted the post regarding it from social media handles. In a social media post, the leading news outlet acknowledged that the report was inaccurate and expressed regret over the error. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said students dissatisfied with their results can avail a two-stage review system. In the first stage, students may apply online for scanned copies of their evaluated answer books, which can be downloaded for review. In the second stage, students can seek verification of discrepancies or request re-evaluation of specific answers based on the marking scheme. CBSE said applications for scanned copies can be submitted online from the 19th to the 22nd of this month at a fee of 700 rupees per subject. Applications for verification and re-evaluation can be submitted between the 26th and the 29th of this month. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the statehood day celebrations in Gangtok. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah extended greetings to the people of Sikkim on their statehood day. National Dengue Day is being observed today in the country. The day is marked to promote simple control strategies, including the elimination of stagnant water and proper maintenance of water storage tanks, aimed at preventing mosquito breeding. The theme for this year is Community Participation for Dengue Control. Check, clean and cover. Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today called on citizens to come together to raise awareness about dengue prevention and maintain clean and safe surroundings. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington, said the U.S. State Department. State Department spokesman Tommy Pigott said the ceasefire comes after two productive days of talks and will be followed by more negotiations on the 2nd and 3rd of June. A shaky truce between Israel and the Hezbollah in Lebanon has been due to end on Sunday. U.S. President Donald Trump has said the United States and China concluded major trade deals during the visit to China, describing the outcomes as significant. Speaking to reporters aboard Air Force One while returning from China, Mr. Trump said China has agreed to purchase 200 Boeing aircrafts. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 11:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों गीतों और भक्ति संगीत का कार्यक्रम सबरस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वसुंधरा रतूरी का गाया राग मधुवंती।

0: अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा रतूरी का गाया राग मधुवंती। इसके साथ ही हिंदुस्तानी संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में

कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और आंगन। हर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
1: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: श्रोताओ, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सकारात्मकता हर दिल में बसती हो।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही। और दोस्तों, यही तो है हमारे इस कार्यक्रम की पहचान, एक ऐसा मंच जहाँ परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ खास है, जहाँ हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, पर्यावरण की, सेहत की, जीवन शैली और खुशियों को देंगे एक नया नजरिया। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन, क्योंकि यहाँ हर दिन है प्रेरणादायक और खूबसूरत।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म दो गलियां से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। जी हाँ, वो आवाज जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत की संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं को हर घर तक पहुंचाया। 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं सुनाई बल्कि भारत की आत्मा को आवाज दी। चाहे शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, कवि सम्मेलन हो या नाटक, आकाशवाणी ने हर कला को सम्मान और मंच दिया। भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कलाएं,
2: राजस्थान का मांड, पंजाब का भांगड़ा, बंगाल के बाउल गीत, उत्तराखंड की झोड़ा चांचरी, इन सबको देश भर में पहचान दिलाने का काम आकाशवाणी ने किया। और साहित्य, कितने ही कवियों, लेखकों और शायरों की रचनाएं पहली बार लोगों तक आकाशवाणी के जरिए ही पहुंची। हर भाषा, हर बोली को यहाँ अपनापन मिला।
0: बिल्कुल सही। और एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार रेडियो के आसपास बैठकर हवा महल, विविध भारती और संगीत कार्यक्रम सुना करता था। आकाशवाणी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीय संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और सांस्कृतिक पहचान के साथ लोगों के दिलों में बसी हुई है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष यानी 90 वर्षों की आवाज, विरासत और भारतीय संस्कृति का गौरव सफर। आइए हम सब मिलकर आकाशवाणी के इस अद्भुत सफर को सलाम करें।

0: दिल की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और दोस्तों, अक्सर जिन चीजों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, कभी कभी वही चीज किसी और के सपनों की नींव बन जाती है। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने नारियल के फेंके हुए छिलके, जो शेल होते हैं, कोकोनट शेल, उसमें भी संभावनाओं का भविष्य देखा। ये कहानी है मारिया कोरियाकोस की, केरल में रहने वाली। मारिया रोज देखती थी कि हजारों नारियल के छिलके और शेल इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, और ये छिलके सड़कों, नालों और लैंडफिल में जमा होकर प्रदूषण को बढ़ाते थे और हानिकारक कचरे का हिस्सा बनते जा रहे थे।
3: बिल्कुल। और देखो, लेकिन जहां लोग समस्या देख रहे थे, वहीं मारिया ने एक अवसर देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन बेकार समझे जाने वाले नारियल के शेल में से कुछ सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाए। बस यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। मारिया ने नारियल के शेल से कप, कटोरी, सजावटी सामान और कई पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने शुरू किए। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि केवल इको फ्रेंडली होना ही काफी नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा, लोगों को कुछ नया, आकर्षक और अलग चाहिए। तभी मारिया ने अपने सोच में रचनात्मकता जोड़ी। उन्होंने नारियल के उत्पादों को खास टैंड रंग से और आधुनिक डिजाइन देना शुरू किया। साधारण जो शेल होते थे, अब स्टाइलिश और आकर्षक उत्पाद में बदलने लगे। उनकी मेहनत, समझदारी और शानदार जो मार्केटिंग व्यू है, उसने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया।
3: बिल्कुल। और देखो मंजुला, इसके बाद फिर जन्म हुआ थेंगा नाम के उस ब्रांड का, जो आज पर्यावरण संरक्षण और नवाचार का प्रतीक बन चुका है। और देखो, ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि थेंगा का मतलब होता है नारियल।
2: क्या बात है?
3: आज थेंगा के उत्पाद देश विदेश में पसंद किए जा रहे हैं। मारिया ने ना सिर्फ अपना एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि हजारों नारियल के शेल को लैंडफिल में जाने से भी बचाया।
2: और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच सकारात्मक हो, इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कचरा भी किसी की कामयाबी की पहचान बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई चीज बेकार लगे, तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि शायद उसी में से किसी नए भविष्य की शुरुआत छिपी हो।
4: ए बाबू, ले लो ना नारियल।

0: अपना देश, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: और दोस्तों, आज के दौर में करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक तक सीमित नहीं है। अब लोग ऐसे पेशे चुन रहे हैं जहां रचनात्मकता भी हो, आकर्षण भी हो और अच्छी कमाई भी हो। ऐसा ही एक अनोखा करियर है इमेज कंसल्टेंट की और पर्सनल स्टाइलिश। आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम होता क्या है, तो चलो प्रतिभा बता दो फटाफट।
0: देखो मंजुला, इमेज कंसल्टेंट किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करता है कि कैसे कपड़े पहने, किस तरह बात करें, हाव भाव आपका कैसा हो, साक्षात्कार या बैठक में खुद को कैसे प्रस्तुत करें, यानी कैसे प्रेजेंट करें। इन सब बातों का वही जो इमेज कंसल्टेंट होता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: बहुत सही। और वही पर्सनल स्टाइलिस्ट का काम होता है किसी व्यक्ति के लिए सही पहनावा और रूप रंग चुनना। कौन सा रंग अच्छा लगेगा, किस अवसर पर क्या पहनना चाहिए, कौन सा रूप आपकी पहचान को और निखारेगा, ये वही सब तय करते हैं।
0: आजकल केवल फिल्मी कलाकार ही नहीं, कार्यालयों में काम करने वाले लोग, सामाजिक माध्यमों पर सक्रिय लोग, व्यापार करने वाले और यहाँ तक कि कॉलेज के विद्यार्थी भी इनकी सहायता लेने लगे हैं। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहनावे की समझ, अच्छी बातचीत की कला और लोगों को समझने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। कई फैशन और व्यक्तित्व प्रबंधन संस्थान इसके विशेष पाठ्यक्रम भी कराते हैं।
1: बिल्कुल। तो अगर आपको फैशन पसंद है, लोगों के व्यक्तित्व को निखारना अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है। करियर वही चुनिए जिसमें आपका हुनर भी चमके और मन भी खुश रहे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वीकार किया मैंने।
1: और मंजिला देखो, अब बात करते हैं उस संग्रहालय की जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति से जुड़ा है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक अनूठा तकनीक आधारित और इंटरेक्टिव संग्रहालय है जो 3 मूर्ति परिसर में स्थित है।
0: और यह संग्रहालय 75 वर्षों के भारत के लोकतांत्रिक सफर को 7 घंटे के इमर्सिव कंटेंट में के माध्यम से दिखाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं की बात की जाए तो यहाँ होलोग्राफिक डिस्प्ले है, ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और 360 डिग्री इमर्सिव थिएटर का उपयोग किया गया है।
1: बिल्कुल, और देखो यहाँ एक इंटरेक्टिव जोन भी बनाया गया है, सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सेल्फी, और वॉक विद प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ टहलने का वर्चुअल अनुभव भी आप यहाँ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम से वर्चुअल पत्र, वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड का प्रावधान भी है जिसके जरिए आप देश के विकास को ऊपर से देखने का अनुभव पा सकते हैं। त्रिमूर्ति भवन में स्थित है।
1: बिल्कुल, और देखो यहाँ एक अनुभव केंद्र भी है जहाँ आप 1971 के युद्ध, हरित क्रांति या पोखरण परमाणु परीक्षणों के इमर्सिव तरीके से को आप फिर से जी सकते हैं, देख सकते हैं, और हेड राइटिंग रोबोट के माध्यम से आप प्रेरणादायक उदाहरण घर ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और आगंतुक अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा सकते हैं और 2047 के भारत के लिए अपने संदेश भी छोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। और यहाँ आगंतुकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, संग्रहालय में गाइड्स, ऑडियो गाइड्स, कैफेटेरिया और एक स्मारिका यानी सुविनियर जो हम लेते हैं जहाँ भी जाते हैं, उसकी दुकान भी उपलब्ध है।
1: और देखो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय सोमवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। यहाँ का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, हालांकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होता है।
0: और टिकट ऑफिशियल वेबसाइट या बुक माई शो के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट हैं वो रियायती दरों पर भी उपलब्ध हैं।
1: 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित इस संग्रहालय में लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है जिसका आयोजन शाम 7:30 से 8 बजे तक किया जाता है। और सबसे जरूरी बात ये कि आईडी प्रूफ ले जाना यहाँ पर जरूरी है।
0: तो इस संग्रहालय को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक दिन निकालिए और संग्रहालय को दीजिए एक अनूठा अनुभव प्राप्त कीजिए।

0: के। अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म एक राज से।
1: श्रोताओं, हालांकि हर दिन हम मौसम में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जहां चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं कभी कभी तेज बारिश राहत की मरहम भी लगा रही है।
0: पर ये जो समय है गर्मी का है, मौसम हमारा इम्तिहान ले रहा है। गर्मी और बढ़ेगी, पारा और चढ़ेगा। ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक, डायरिया, चक्कर आना जैसी समस्याएं होने लगती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला, तो क्यों ना आज बात करें इस बढ़ते पारे के साथ खुद को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी को की कमी को बिल्कुल ना होने दें, भरपूर पानी पिए। प्यास ना लगने पर भी दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहे।
0: बिल्कुल, और इलेक्ट्रोलाइट लें, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या ORS का सेवन करें, जो शरीर में नमक की कमी को पूरा करते हैं। कैफीन और बहुत मीठे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो धूप और गर्मी के से जो बचाव है वो भी बेहद जरूरी है। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है। और बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, सिर ढकें। धूप से बचाव के लिए टोपी, गमछा, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल जरूर करें।
0: आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस लगाएं और खान पान में बदलाव भी लाएं। भोजन करें तले भुने, मसालेदार और भारी भोजन से बचें।
1: और पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, वो ज्यादा फायदेमंद है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। और जैसे तुमने अभी बताया कि ताजा पका हुआ खाना ही खाना है।
0: बहुत सही। और अगर बहुत तेज प्यास लगे, चक्कर आए, सर दर्द, उल्टी महसूस हो या पसीना आना बंद हो जाए, तो ये लू के लक्षण हो सकते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर तुरंत किसी ठंडी या छायादार जगह पर जाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, ठंडे पानी से नहाएं और पंखे के नीचे बैठें।
1: लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें, और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बस छोटी छोटी सावधानियां हमें इस गर्मी के मौसम में बीमार होने से बचा सकती हैं और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।

0: गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी है आपने ये गीत सुना फिल्म यहूदी से। और मंजुला देखो बात करते हैं एक ऐसे दर्शन की जो अपूर्णता अनित्यता और सादगी में सुंदरता खोजता है। ये जीवन की खामियों को स्वीकार करने पुरानी वस्तुओं के प्रति सम्मान और प्राकृतिक चीज़ों की सादगी में शांति पाने का एक बेहतरीन तरीका है।
1: बिल्कुल, मैं समझ गई। जापान में विकसित इस पारंपरिक कला किन्सुगी में टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सावधानी से जोड़ा जाता है और जो दरार होते हैं उसको सोने, चांदी या कभी-कभी प्लेटिनम से भर दिया जाता है।
0: और देखो खास बात यह है कि यहाँ टूट फूट को छिपाने की कोशिश नहीं की जाती बल्कि उसे उभारा जाता है। किन्सुगी का शाब्दिक अर्थ है गोल्डन ज्वाइनरी यानी सोने से जोड़ना, लेकिन इसका असली अर्थ ये बताता है कि टूटना किसी चीज का अंत नहीं है बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है।
1: बहुत अच्छी बात कही। और इस कला में जीवन का वास्तविक दर्शन है जो अपूर्णता, अस्थाई और सादगी में सुंदरता खोजता है। यह कला उसी सोच को वास्तविक रूप देती है। जब कोई बर्तन टूट के फिर से जुड़ता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि वह पहले से भी खास, सुंदर और अर्थ

0: पूर्ण बन जाता है।
1: और देखो ये विचार जो है ना वो जीवन पर भी लागू होता है। हम सभी अपने जीवन में अनुभवों से कहीं ना कहीं टूटते हैं, जैसे कि असफलता, दर्द, रिश्तों का टूटना या बदलाव। लेकिन किंसुगी हमें ये याद दिलाता है कि ये संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हीं अनुभवों को सोने में बदल सकते हैं, यानी सीख, समझ और मजबूती से।
0: तो किंसुगी हमें सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, असली खूबसूरती उन निशानों में है जो हमें समय और अनुभव देती है। और शायद हम सभी अपने अपने तरीके से एक चलती फिरती किंसुगी कला है जो हर संघर्ष के बाद और अधिक अर्थपूर्ण और मजबूत बन जाते हैं। तो एक बार मेल आईडी भी बता दो प्रतिभा की, कौन से मेल आईडी से हमें जो सुन रहे हैं श्रोता वो हमें ईमेल भेज सकते हैं।
1: देखो मंजुला, हमारा कार्यक्रम जैसा कि सब सभी जानते हैं कि घर आंगन कार्यक्रम है, और हमें हमारे श्रोता हर रोज अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो हम आज भी अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें मेल करना ना भूल गए, और जिसके लिए हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

0: असली नकली, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने की सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: बिल्कुल, और प्रतिभा अब हम सबको ले चल रहे हैं अपने दोस्तों को एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति, परंपरा और नारी शक्ति मिलकर रचती है एक अनोखी कहानी। ये कहानी है मणिपुर की, जहां बनते हैं अद्भुत लोटस सिल्क। सोचिए, एक फूल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल अब बन रहा है एक शानदार, दुर्लभ और बेहद खूबसूरत रेशम यानी सिल्क। मणिपुर की झीलों में उगने वाले कमल के तनों से निकाला जाता है ये खास धागा। हर एक तने को हाथों से तोड़ना, उसके भीतर से एक बेहद महीन रेशे को निकालना और फिर उसे धागे में बदलना,
0: ये कोई मशीन नहीं बल्कि महिलाओं के धैर्य और हुनर की कहानी है। स्थानीय भाषा में इस कपड़े को कौनी फेई कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी असली चमक पहनने के बाद निखरती है। जैसे जैसे आप इसे ओढ़ते हैं, इसकी खूबसूरती और भी गहरा जाती है।
1: बिल्कुल, एक एक साड़ी को बनाने में हजारों लाखों कमल के फूलों का योगदान होता है और लगते हैं कई कई घंटे, कभी कभी कई दिनों की मेहनत, तब जाकर तैयार होता है एक मास्टरपीस जिसे सिर्फ पहना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। फॉर द वुमन बाय द वुमन, लोटस सिल्क की ये पूरी यात्रा महिलाओं के हाथों से ही गुजरती है।
0: और श्रोताओं देखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी आत्मनिर्भरता है और उनके सपनों की बुनाई है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि इस सिल्क को बनाने में ना किसी कीड़े को नुकसान होता है और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल। ये है प्रकृति के साथ संतुलन की सच्ची मिसाल। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत खजाने छुपे हैं जहां हर धागा, हर रंग, हर बुनाई एक कहानी कहते हैं।

0: हमारी इंडियन टेक्सटाइल सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान है।
1: क्या बात है। तो क्यों ना हम इन हैंडमेड उत्पादों को अपनाएं, इन्हें गर्व से पहनें और दुनिया को दिखाएं कि असली खूबसूरती मशीनों में नहीं, हाथों की मेहनत और दिल की कला में होती है। तो कमल से शुरू हुई ये कहानी जब किसी की जिंदगी का हिस्सा बनती है तो सिर्फ एक साड़ी नहीं, एक एहसास बन जाती है।

0: अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म साजन से।
1: तो दोस्तों वक्त हो चला है इजाजत लेने का। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे गई होगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह

0: देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community.

खास फिल्मी कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हर बार बॉलीवुड की किसी एक यादगार फिल्म को चुनते हैं और उस फिल्म की कहानी, कलाकार, दिलचस्प बातें और सबसे बढ़कर उसके सदाबहार गीत लेकर आते हैं आपके पास। तो आज की हमारी फिल्म है बेटा बेटी, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार एलवी प्रसाद ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, बी सरोजा देवी, जमुना और शानदार हास्य अभिनय के लिए मशहूर महमूद। इसके साथ साथ शुभा खोटे, जयंत और राजेंद्र नाथ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुनहरे सफर का, फिल्म बेटा बेटी के एक मधुर गीत और भक्ति रस के भरे गीत के साथ।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ सुनिधि। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बेटा बेटी की। बेटा बेटी उस दौर की फिल्मों में शामिल थी जिनमें परिवार और रिश्तों की अहमियत को बहुत खूबसूरती से देखा जाता था। फिल्म में सुनील दत्त ने एक ऐसे युवा का किरदार निभाया जो अपने परिवार और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करता है। उनका अभिनय हमेशा की तरह बेहद सहज और प्रभावी।

प्रभावशाली रहा। वहीं जमुना, उन्होंने अपनी मासूम अदाओं और भावुक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में जयंत और शुभा खोटे जैसे कलाकारों ने भी अपने शानदार अभिनय से कहानी को और रोचक बना दिया। तो ये फिल्म की हम बात करते रहेंगे, क्यों ना हम सुन लें एक और मधुर गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में आदमी वो है गीत फिल्म बेटा बेटी से, और इस फिल्म का संगीत दिया था बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, पुराने दौर के गीतों में एक अलग ही मिठास होती थी, धीमी धीमी धुनें, आसान शब्द और दिल को छू लेने वाली गायकी। बेटा बेटी का संगीत भी उसी दौर की खूबसूरत पहचान है। उस समय गीत केवल फिल्म का हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया भी बनते थे। रेडियो पर जब ये गीत आज भी बजते हैं तो लोग अपने सारे काम छोड़कर इन्हें सुन लिया करते हैं। तो आइए इसी बात पर क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। फिल्म की कहानी एक दुर्भाग्यशाली पिता, यानी कि जिनका नाम रघु होता है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो बैठते हैं। गरीबी और लाचारी में वह अपने तीन छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद बच्चे बिछड़ जाते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं, लेकिन सालों बाद उनको नियति फिर से आपस में मिला देती है। तो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसके बारे में बात करते रहेंगे, फिल्म बेटा बेटी के बारे में बात हम करते रहेंगे आपसे। आप हमसे जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए इस फिल्म के मधुर संगीतों का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हम बात कर रहे हैं आज फिल्म 1964 में रिलीज हुई बेटा बेटी की। तो अगर हम इस फिल्म की सफलता की बात करें तो ये सिल्वर जुबली रही थी फिल्म। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। इसने सिनेमाघरों में 25 हफ्ते पूरे करके सिल्वर जुबली का खिताब पाया ही था, और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसे 1970 के दशक में पुणे जैसे शहरों में मैटनी शो के रूप में दोबारा रिलीज किया गया, जहां इसने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म अपने आप में कितनी ज़्यादा सफल रही और इसके कलाकारों का इसमें कितना योगदान रहा। तो इसी बात पर हम सुन लेते हैं इस फिल्म से एक और गीत।

गए, प्यार में निखर गए, नैन वाली तेरे नैन जादू कर गए।

दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण उस दौर में हुआ था जब पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों का स्वर्णिम समय माना जाता था। फिल्म ने संयुक्त परिवार, भाई बहन के रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया था। फिल्म के निर्देशक एलवी प्रसाद भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में यादगार फिल्में बनाई। बेटा बेटी उन्हीं पारिवारिक फिल्मों की शैली का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में महमूद की कॉमेडी की अगर हम बात करें तो दर्शकों को इनकी कॉमेडी इतनी पसंद आई थी कि कई सिनेमा घरों में उनके दृश्यों पर खूब तालियां बजती थीं। उस समय महमूद किसी भी फिल्म की लोकप्रियता का बड़ा कारण माने जाते थे। अगर हम फिल्म की संगीत की बात करें तो शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। फिल्म के गीतों में शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों की झलक भी सुनाई देती है, जिसका आनंद आप अभी इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। राधिके तूने बंसुरी चुराई गीत में कृष्ण राधा की छवि और पारंपरिक भारतीय संगीत का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जिसने इसे लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा। और ये गीत आज भी कई लोगों की जुबान पर है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस गीत को शामिल भी किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की, तब तक सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत जो कि मोहम्मद रफी की ही आवाज में है।

तो श्रोताओं, ये था फिल्म बेटा बेटी के गीतों और यादों से सजा हमारा ये कार्यक्रम। एक ही फिल्म से यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पुराने दौर की संगीतमय यात्रा ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि, और इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स दे प्रधानमंत्री रॉब चैटन नाल दुवल्ली गल्लबात करनगे। भारतीय प्रवासियां नूं वी करनगे संबोधन। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान नूं दहशतगर्दां नूं पनाह देण अते भारत खिलाफ गतिविधियां बंद करन बारे सख्त चेतावनी दित्ती। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके ते केंद्रीय सेहत मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकां नूं डेंगू दी रोकथाम बारे जागरूकता वधाउण ते सुरक्षित वातावरण बनाई रखने लई एकजुट होण दा सद्दा दित्ता। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में अज सवेरे एक तेज रफ्तार टिप्पर लारी की टक्कर नाल 6 महिला मजदूरों की मौत। आईपीएल क्रिकेट में अज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन च शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब चैटन नाल दुवल्ली गल्लबात करनगे। प्रधानमंत्री महाराजा विलियम अलैक्जेंडर और महाराणी मैक्सिमा नूं वी मिलनगे। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते तो बाद भारत यूरोपियन संबंधा नूं आकार देने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री अपने इस गेड़ दौरान भारतीय भाईचारे नूं वी संबोधन करनगे अते प्रमुख कारोबारी आगुआं नाल गल्लबात भी करनगे। हजारां भारतीय भाईचारे दे मैंबरां दे इस विच शामिल होण दी उम्मीद है। इस समागम प्रधानमंत्री दी नीदरलैंड फेरी दा एक मुख विशा होवेगा। यह भाईचारक समागम भारत नीदरलैंड संबंधा भारतीय प्रवासी भाईचारे की भूमिका अते भारत की आलमी पहुंच उते केंद्रित होण दी उम्मीद है। इस तों पहलां प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड पहुंचे अते उथों दे विदेश मंत्री ने उन्हां दा निघा स्वागत कीता। ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਥਾਨ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान नूं सख्त चेतावनी दिंदिया कहा कि उस नूं दहशतगर्दां नूं पनाह देना अते भारत खिलाफ गतिविधियां करना बंद करना चाहिए। नवी दिल्ली च फौज संवाद च बोलदिया श्री द्विवेदी ने कहा कि जेकर पाकिस्तान भारत खिलाफ दहशतगर्दी गतिविधियां जारी रखता है तां उस नूं खुद फैसला करना होगा कि ओ भारत दे भूगोल ते इतिहास दा हिस्सा बने रहना चाहुंदा है जां नहीं।
1: I think if you heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
0: राजस्थान विच मर्दमशुमारी 2027 लई घर घर जाके डेटा एकत्र करना अज शुरू हो गया। यह गेड़ 14 जून तक जारी रहेगा अते इस दौरान सूबे च घरां दी सूची अते रिहायशी गणना शामिल होगी। मर्दमशुमारी वाले कर्मचारी घरां दे निर्माण च वरती जाण वाली समगरी ते उन्हां विच उपलब्ध सहूलतां नाल संबंधित 33 सवाल पुछ के जानकारी एकत्र कर रहे ने। अर्थशास्त्र ते अंकड़ा निर्देशक विनेश सिंघवी ने कहा कि 1 मई नूं सूबे च शुरू हुई स्वै गणना प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। राजस्थान च लगभग 15 लाख परिवारां ने स्वै गणना सहूलत राही अपनी जानकारी जमा करवाउण दी चोण कीती है। पछमी बंगाल सरकार ने साल 2011 तो बाद सूबे विच जारी किए गए सारे जाति सर्टिफिकेटां दी जांच दे हुक्म दित्ते ने। अधिकारियां ने कहा कि पिछले 14 सालां दौरान इन्हां दस्तावेजां दी प्रमाणिकता ते वैधता बारे सवाल उठाए गए ने। इस समय दौरान अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां ते होरना पछड़े वर्गां लई लगभग 1.69 करोड़ जाति सर्टिफिकेट जारी किए गए सन। इन्हां विचों बहुत सारे सर्टिफिकेट द्वारे

0: रात टाइटन्स नाल होवेगा। बीती रात मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 7 विकटां दे नाल हरा दिता। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री जॉर्ज जैटन नाल दुवल्ली गलबात करनगे। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪਿੰਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमनसब रॉब जैटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की 2 सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोबन जैटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। यह दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ादी तजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नीदरलैंड्स पहुंचने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों और मजाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वजीर आजम मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फजा गूंज उठी। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के जरिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वजीर आजम भारतीय बरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे का एक अहम हिस्सा होगी। इस तकरीब में भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय बिरादरी और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर, चिप्स और एआई जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तिजारती नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती व सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरई टेक्नोलॉजीज और सेहत के शोबों में मजबूत शराकत दारी रही है। सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल जैदी को इराक के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत।

देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपए मालियत की कैप्टागन मनुष्यात को कब्जे में लिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ये जानकारी दी और यह भी कहा कि सरकार ने भारत को मनुष्यात से पाक मुल्क बनाने का तहैया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनुष्यात को कब्जे में लेने और इस सिलसिले में एक गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शा मिसाल है कि हम मुल्क में मनुष्यात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशावर अशिया ना तो आने देगी और ना अपने इलाके से गुजरने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश और आंधी में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने मुतासरा कुनबों को ताजियत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खराब मौसम से मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद दे रही है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाज और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फहरिस्तों कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों को जातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिविजनल अफसर और जिला सतह के एहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर यह साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मंसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हजफ कर दिए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है जिसमें इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीकों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतज से मुतमिन नहीं है वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जाँच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार लारी मजदूरों के एक ग्रुप में जा घुसी जिसके सबब 6 खवातीन मजदूरों की मौत हो गई। काकीनाडा रूरल मंडल के कवूरू पुल के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काम की जगह जाने के लिए मजदूर सड़क पार कर रहे थे। 4 खवातीन के जाए हादसे पर ही मौत हो गई जबकि 2 दीगर ने काकीनाडा के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे यह फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। वजारत दाखिला ने त्रिपुरा में नज्म व जब्त के फ्रेमवर्क को मजबूत करने की गरज से एक अहम कदम उठाते हुए एक इजाफी भारतीय रिजर्व बटालियन को सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। मरकज ने इसके क्याम के लिए 50 करोड़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए तक की माली इमदाद को मंजूरी दी है। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो से फेई और नूरजीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का यह इस सीजन का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो हजार 25 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक

0: और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्रपत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। ये भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
5: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री K.पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को

0: राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। तो नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराइए क्योंकि अगले एक घंटे तक आपका साथ देने आ रही हैं वो अदाकारा जिनकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा हो जाता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम बात करेंगे आज एक ऐसी अदाकारा की जिनके डांस स्टेप्स आज भी हर शादी, हर स्टेज और हर दिल की धड़कन बने हुए हैं और जिनकी अदाकारी ने रोमांस, इमोशन और खूबसूरती को एक नया नाम दिया। जी हाँ, आज की ये शानदार शाम समर्पित है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के नाम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुनिधि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ का एक कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित जी के एक सबसे फेमस सॉन्ग के साथ।

तो दोस्तों, जब भी बात आती है हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत मुस्कान और मदहोश कर देने वाले डांस की, तो एक ही नाम दिलो दिमाग पर छा जाता है। जी हाँ, हमारी और आपकी प्यारी धक धक गर्ल का, माधुरी दीक्षित का। आज हम इस शो में उन्हीं की सुनहरी यादों और सदाबहार गानों का सफर तय करेंगे। क्या अदाएं, क्या एक्सप्रेशंस! जब भी माधुरी पर्दे पर आती हैं तो स्क्रीन पर जैसे रोशनी सी बिखर जाती है। तेजाब के उस आइकॉनिक गाने से लेकर हम आपके हैं कौन की नटखट निशा तक, उन्होंने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म खलनायक का उनका गाना चोली के पीछे अपने समय में इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तो बात हम करते रहेंगे माधुरी जी की, और साथ साथ सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माए हुए कुछ गाने।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। सन 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही बेहद प्रभावशाली थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ उन्हें नृत्य का भी विशेष शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। माधुरी का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। सन 1984 में फिल्म अबोध से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने जब कदम रखा तो ये शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर आया वो दौर जिसने माधुरी दीक्षित को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। फिल्म तेजाब और उसका एक गीत 1 2 3 लोगों की जुबान पर छा गया, और उसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट गीत और सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित केवल एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और प्रभावशाली अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांटिक, भावुक, हास्य और गंभीर। फिल्म दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया। उनकी खासियत थी कि वे हर किरदार में सहजता और सच्चाई लेकर आती थीं। स्क्रीन पर उनकी मुस्कान और आंखों की मासूमियत दर्शकों को तुरंत जोड़ देती थी। तो यही खास बात थी हमारी माधुरी दीक्षित की धक धक गर्ल की। तो हम इनकी बातें करते रहेंगे, तब तक के लिए सुन लेते हैं इनसे जुड़ा एक और गीत।

तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं हमारी कलाकारा माधुरी दीक्षित के बारे में। दोस्तों, माधुरी दीक्षित को उनके उत्कृष्ट अभिनय और नृत्य के लिए अनेक पुरस्कार मिले। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो उन्हें मिला वो है दर्शकों का प्यार। आज भी जब माधुरी स्क्रीन पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

माधुरी दीक्षित केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक भावना है। उनकी कला, मेहनत और सादगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए आपकी दोस्त सुनिधि को इजाजत। नमस्कार।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे सब प्यारे श्रोता भैया बहनान को और आपको बहुत बहुत मंगल बधाई, झोरी भर भर के शुभकामना, अधिक मास की, लौंद के महीना की और पुरुषोत्तम मास की।
1: जी हाँ चंपा, आपको बहुत बहुत बधाई, ब्रजमादरी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोतान को बधाई। जा मास को पुरुषोत्तम मास कहो गयो है, वाको आरंभ कल यानी 17 मई ते है जाएगो, और आपको बता दें कि 15 जून तक ये महीना चलेगो। या में पूरे भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार के जो मनोरथ हैं, आयोजन हैं, उनकी छवि हो आपको देखने को मिलेगी।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और बहुत बढ़िया बात, ये भी हम अपने श्रोता भैया बहनान को बता में कि जो ये अधिक मास को पावन शुभारंभ कल से शुरू हो रहे है, तो यह अधिक मास के महीना में पावन पुनीत अवसर पे ब्रज वसुंधरा में देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो भक्तगण हैं, वे आएंगे प्यारे भैया बहनाओं, और हम तो आपको भी निहवरोन्यो तो दे रहे हैं कि आप जरूर आइयो।
1: जी हाँ चंपा, ब्रज की ताई तो यह पुरुषोत्तम मास को सच में बहुत महत्व है, और हमारे श्रोता आएंगे देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ परंपरा है। पर आपको एक बात बता मैं चंपा, कि ये पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक अंचल में यह पुरुषोत्तम मास मनाएवे की इतनी मंगलमय अलग अलग परंपरा है।
0: हाँ।
1: कि हम सब वाकु अपने अपने ढंग से मना में है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ना यही पुरुषोत्तम मास में नरसिंह अवतार धारण करो हो, और पुरुषोत्तम मास के महीना में ही विनय भक्त प्रहलाद के प्राणन की रक्षा करी हती। तो अपने आप में देखो कितना पुनीत पावन महीना है ये।
1: तनिक देखो तो सही चंपा, क्योंकि प्रहलाद के पिता ने कही कि मैं ना तो 12 महीनान में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, तो कैसी विलक्षण वहाँ पे एक संरचना भई कि या अधिक मास में नरसिंह अवतार भयो।
0: हाँ, क्योंकि ना तो नर मोय मार सके, ना कोई पशु मोय मार सके, ना कोई जमीन पे ही होए, ना कहीं हवा में ही होए, बहुत सारी तरह तरह की मनोहारी लीला करनी पड़ी, और नरसिंह रूप उन्हें धारण करो, और बाकी का जब पुरुषोत्तम मास को ही चुनो।
1: और चंपा यही सो कहो जाए है कि यहाँ प्रत्येक अवतार में कोई ना कोई जो वर्णन है वो अन्याय के विरुद्ध खड़े है, वे को संदर्भ है।
0: तो नृत्य गोपाल जी देखो, हम तो अपने प्यारे भैया बहनान ते कह रहे हैं कि प्यारे भैया बहनाओं, पूरे साल भर के जो उत्सव हैं, चाहे होली है, दिवाली है, बसंत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, रथ यात्रा है ना, शरद की पूनो है, ये जो साल भर के पर्व हैं, ये या पुरुषोत्तम मास में बड़े ही हर्षोल्लास के संग ब्रज के देवालय और मंदिरन में मनाए जाएंगे। तो प्यारे भैया बहनाओं आप जरूर पधारियो।
1: जी हाँ चंपा, और ब्रज भाषा काव्य में तो या के ताई बड़ी सुंदर सुंदर छंद लिखे गए हैं, बड़ी सुंदर रचना करी गई है। नीको लागत पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखानत, करत भक्त सब जाकी आस, आप ही सूरज, आप ही चंदा, आप ही को सब होत प्रकाश, आप ही भोग जोग सब अर्पत, आप ही प्रभु मम मन उल्लास, ज्यो ज्यो दान करत प्रभु हित, त्यों त्यों बढ़त प्रेम की आस, सूरदास प्रभु सबके स्वामी, दास को राखो चरण के पास।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो पुरुषोत्तम मास को परम पावन महीना कल ते लग ही रहे होए, तो या वक्त है ना जो ब्रज की लोक विधाएं रासलीला हुई या नौटंकी हुई, भक्त चरित्र हुए, स्वांग हुए, उनके ना जगह जगह मंचन शुरू है जाएंगे। मंगल पुरुषोत्तम मास में इतने आयोजन भव्यता और दिव्यता के साथ होंगे कि लाखों श्रद्धालु और पर्यटकन की भीड़ अब महीना भर के काजे ब्रज में जो रहेगी, नी लोक विधा ब्रज की है, चाहे वो रासलीला है, स्वांग है, भगत है, नौटंकी है या रसिया दंगल है, सबके मंचन होंगे।
1: जी हाँ चंपा, अब कल ते ही आरंभ है जाएंगे।
0: तो फिर कछु ऐसा ही सुनवावे की और अपने प्यारे भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा, ले चलो ना।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये नौटंकी श्याम सगाई।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये नौटंकी सुन रहे हते श्याम सगाई। तो प्यारे भैया बहनाओं, हमें तो पूरी आशा है कि यह नौटंकी को सुन के आपको मन जरूर ब्रज माऊ आवे को करे वो, क्योंकि पूरे महीना भर तक आपको ना ब्रज में जो भक्ति भाव ते परिपूर्ण रास लीला है नौटंकी है उनको ऐसे ही मंचन होएगो, और कहीं खुले पांडाल में भी आपको बड़ी बड़ी रास लीला देखने को मिलेंगी। तो हम तो प्यारे भैया बहनाओं आपते कह रहे हैं कि जैसे भी हो, अब तो आपके पास कोई बहानो भी ना है कि बच्चान की पढ़ाई लिखाई चल रही है कि पेपर परीक्षा चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी शुरू हो ही गई है। तो आप अपने परिजनन के संग और इष्ट मित्रन के संग ब्रज धरा में या पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पे पधारो, आपको स्नेह भरो न्योतो है और प्रेम भरो आमंत्रण है।
1: जी हाँ श्रोताओ, भक्ति और लोक संस्कृति को अनूठो समागम आप यहाँ ब्रज में देख सके हैं। आप आवे और देखें। और चंपा, अब देखो तो सही, तने घड़ी की ओर हो देख लो कि अब आज के ब्रजमाधुरी कार्यक्रम को समय अब यहीं संपन्न है गयो है।
0: हाँ प्यारे भैया बहनाओ, मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवे की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।

0: और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: तो फिर तुम्हारी माँ क्या बोली इंदु? मैंने पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या कहा?
2: वो मैं सुन नहीं सकी रंजीत, माँ मुझे देखकर बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी।
1: और ये ड्रेस, तुम तो ये पश्चिमी ड्रेस कभी पहनती नहीं हो।
2: वही लाया था।
1: पर तुमने क्यों पहन ली?
2: माँ ने जबरदस्ती पहनवा दी उसके सामने। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, फिर जब तक बैठा रहा ललचाई निगाहों से मुझे घूरता रहा।
1: ये बताओ, तुम्हें मेरी निगाहें कैसी लगती हैं?
2: क्यों बताऊं?
1: फिर भी अच्छा, फिर इंदु, तुम्हें ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। हालांकि बहुत जच रही है, हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी अगर
2: सच रंजीत, पहले तो मैंने भी सोचा कि इनकार कर दूं, फिर ध्यान आया कि आज शाम को तुम मिलोगे ना यहाँ पर, इसलिए तुम्हारी खातिर पहन ली। उस बुड्ढे ने तो यही सोचा कि मैं उसकी खातिर पहन रही हूँ। पता है, वो बुड्ढा कह रहा था कि उसे ये पश्चिमी लिबास बहुत अच्छे लगते हैं। उसने अपने दफ्तर में काम करने वाली सभी लड़कियों को कह रखा है कि सब पश्चिमी ड्रेस पहनकर ही आया करें। फिर मेरी माँ से बोला कि इंदु को भी इसी तरह की ड्रेस पहनाया करो।
1: खूसट बुड्ढा।
2: माँ बोली, सेठ हम तो इतने गरीब हैं, इतनी महंगी ड्रेस रोज रोज कहाँ से लाएंगे। इस पर जानते हो बुड्ढा क्या बोला? बोला, तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है अगर
1: अगर अगर क्या
2: रंजीत? वो बुड्ढा मेरे लिए 10,000 देने को तैयार है।
1: तुम्हारी माँ को?
2: हाँ, और क्या।
1: तुमसे शादी करेगा?
2: नहीं, बस रखेगा। उसके तो बड़े बड़े बच्चे हैं, उसकी दो लड़कियाँ तो मुझसे भी बड़ी हैं।
1: मतलब वो बुड्ढा तुम्हें अपनी अपनी रखेल।
2: उसके चाहने से क्या होता है। अच्छा ये बताओ, तुम क्या चाहते हो? 2 साल से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, कैसे कैसे जतन करके मैंने माँ को रोका है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के लालच में माँ मुझे इस बुड्ढे के हाथ।
1: मैं क्या करूं इंदु, कहने को तो मैं एक गैराज के मालिक का बेटा हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए मेरा बाप मुझे भी गैराज के बाकी नौकरों की तरह तनख्वाह देता है, सिर्फ 70 रुपए महीना।
2: तो फिर
1: तू चिंता मत कर। अरे वो मेरा बाप है, मालिक नहीं है। देखना, एक ना एक दिन उसका पत्थर जैसा दिल जरूर पिघलेगा, बस उसी दिन मैं अपनी शादी की बात कर लूंगा।
2: वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी। वो बुड्ढा सेठ मगन भाई किसी दूसरी लड़की को, अरे एक और लड़की है, बुड्ढा उसमें भी दिलचस्पी।
1: जानता हूँ, वो दूसरी लड़की है रानी बाला।
2: हा? तुम्हें कैसे मालूम?
1: तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे बाद अगर कोई सुंदर खूबसूरत लड़की है तो वो रानी बाला ही है।
2: अच्छा जी, मगर तुमने मुझे आज तक नहीं बताया।
1: क्या नहीं बताया?
2: यही कि तुम्हारी नजर वहाँ भी है।
1: हिंदू, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
2: तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है। देखो, हर बार हमारी बात इसी मोड़ पर आकर अटक जाती है। रंजीत, कह देती हूँ मेरी माँ ज्यादा इंतजार नहीं करेगी।
1: तुम तो करोगी ना मेरा इंतजार।
2: 2 साल से और क्या कर रही हूँ, लेकिन कब तक?
1: तो तुम उस बुड्ढे के पास जाना चाहती हो?
2: मेरी जूती जाना चाहती है।
1: फिर?
2: तुम नहीं समझोगे, मर्द हो ना, औरत की कोमल भावनाओं को समझना इतना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कैसे समझाऊं रंजीत, भगवान ने ये मुझे किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ पैसा है और उस पैसे से खरीदी जा सकने वाली सारी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ सच्चा प्यार है, लेकिन जीवन की डगर उतनी ही कांटों भरी है। एक तरफ मेरी खुशियां हैं और दूसरी तरफ मां किसकी बलि चढ़ाऊं?
1: इंदु, क्या सोच रही हो, कहां खो गई? सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ।
2: क्यों, सपने देखने का हक भी नहीं है मुझे?

0: झूठे सपने, आधे अधूरे सपने देखने से मन को बहुत तकलीफ होती है।
1: रंजीत, रंजीत, वो देखो, वो क्या है?
0: कहाँ?
1: अरे वो देखो ना, सामने सामने देखो, सामने।
0: हाँ,
1: सागर की लहरों के बीच एक बोतल लुढ़कती तैरती लपकती धीरे धीरे इधर आ रही है हमारी तरफ, देखो तो।
0: मुमकिन है इस बोतल में तुम्हारे सपनों के राजकुमार का कोई खत हो।
1: छी, मेरे सपनों के राजकुमार तो तुम हो।
0: फिर क्या हो सकता है इसके अंदर?
1: तुम्हारे लिए शादी की खुशखबरी है।
0: किसकी तरफ से?
1: तुम्हारी रानी बाला ने भेजी होगी, मैं क्या जानू।
0: मुझे तो ये पानी की बोतल मालूम होती है।
1: नहीं नहीं नहीं, इसमें मोहरे है, पक्का मोहरे है, सोने की मोहरे।
0: इंदू, सोने की मोहरे होती तो बोतल अब तक डूब गई होती।
1: अच्छा तो फिर हीरे होंगे।
0: हीरे?
1: हाँ।
0: हीरे, काश सचमुच अगर हीरे मिल जाएं तो पलक झपकते ही सारी कठिनाइयां सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। मगर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ।
1: अब क्या सोचने लगे, देखो ना, देखो वो बोतल फिर हमसे दूर जा रही है, जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो ना।
0: अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ।
1: जल्दी। और सुनो, मैं कह देती हूँ, इस बोतल में जो भी होगा वो मेरा होगा।
0: हाँ हाँ, तुम्हारा ही होगा।
1: जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ।
0: मिल गई तुम्हारी बोतल।
1: हाँ, हाँ।
0: ये लो।
1: क्या है इसमें?
0: सॉरी हो गई।
1: मतलब?
0: अरे ना मोहरे हैं ना हीरे, एक कागज का टुकड़ा है।
1: होगा किसी पगले का पत्र या किसी आत्महत्या करने वाले की अंतिम इच्छा। फिर भी मैं कहती हूँ खोल कर तो देखिए।
0: हाँ एक मिनट, खोलता हूँ। लीजिए प्रेम पत्र, हाजिर है।
1: पढ़ो ना।
0: ना ना ना ना, ये आपकी अमानत है, आप ही से पढ़े तो अच्छा है।
1: ठीक है, लाओ लाओ पढ़ती हूँ। जिन साहब को ये दस्तावेज मिले वो इसे लेकर मैसर्स करसठ जी एंड कंपनी सॉलिसिटर्स 137 कैम्बल हाउस कंबाला हिल बॉम्बे से मिलें। इस दस्तावेज को लाने वाले को मेरी 1 करोड़ की जायदाद का मालिक करार दिया जाएगा। सर बोमन जी, बैराम जी।
0: इंदु, इंदु, इंदु,
1: 1 करोड़ रुपया
0: दिखा दो। दस्तावेज को लाने वाले को मेरी 1 करोड़ की जायदाद का मालिक कर। इंदु, इंदु, 1 करोड़ रुपया। चलो इंदु, देखो ये लो, ये रहा तुम्हारे सपनों का महल, कैम्बल हाउस।
1: रंजीत चलो लौट चले, इतना बड़ा घर, सच्ची मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं वापस।
0: हिंदू, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लौट चलने की क्या तुक है?
1: रंजीत मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सब मजाक सा लग रहा है।
0: मजाक होगा तो भी मालूम हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ तक आकर लौट जाना नहीं, मुनासिब नहीं होगा। अच्छा रुको, मैं घंटी बजाता हूँ।
1: नहीं नहीं, मैं कहती हूँ वापस चलो, चलो चलो।
0: अरे रुको ना।
2: ए, कौन मांगता है?
0: मैसर्स करसठ जी एंड कंपनी।
2: बराबर है, किसको मिलना मांगता है?
0: बड़े सेठ से।
2: बड़े सेठ को मरे हुए तो 9 साल गुजर गया।
0: तो छोटे सेठ से मिल लेंगे।
2: क्या काम है?
0: उनसे बोल दो कि सेठ बोमन जी के उत्तराधिकारी, हाँ उत्तराधिकारी आए हैं।
2: सेठ बोमन के?
0: हाँ और क्या।
2: अच्छा ठीक है, आ जाओ।
0: हाँ चलो चलो चलो इंदु, चलो
1: चलो।
2: बैठो बैठो, मैं साहब को बुलाता हूँ।
1: रंजीत सुनो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चलो ना, चलते हैं, चलो।
0: इंदु, इंदु, इंदु, मैं हूं ना, घबराओ मत, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और फिर हमने कोई गलत काम थोड़े ही किया है।
2: ये छोटा सेठ है, तुम इनसे बात कर सकता है।
0: ठीक है
3: जी, बोलिए। मेरा नाम कवर सिंह करसठ जी है, बताइए क्या काम है।
0: अब ये लीजिए,

0: ये दस्तावेज आपको कब मिला? कल।
1: कल।
0: आप दोनों में से ये दस्तावेज किसको मिला है? मतलब इसका मालिक कौन है? किसको मिला?
1: इनको
0: नहीं, इनको इनको इनको।
1: बोतल तो तुम ही समंदर से निकाल कर लाए थे ना।
0: लेकिन उस पर नजर तो तुम्हारी पहले पड़ी थी ना।
1: लेकिन रंजीत तुम समझ,
0: अच्छा होगा मुझसे बात करने से पहले आप दोनों फैसला कर लें। मैं अभी आता हूं।
1: रंजीत सुनो ना।
0: तुम चुप रहो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं, समझे?
1: रंजीत ये आदमी
0: खा नहीं जाएगा तुम्हें, और थोड़ी देर खामोश रहना तुम।
1: मैं
0: हाँ, तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने?
2: अब श्रीमान, उस बोतल, मेरा मतलब जिस बोतल में दस्तावेज मिला, उसकी मालकिन केवल ये लड़की है।
0: क्या ये ठीक कह रहा है?
1: हाँ
2: अच्छा, क्या ये दस्तावेज ठीक हैं?
0: ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है?
1: इंदु
0: पूरा नाम?
1: जी, इंदुमती।
0: शादी हो चुकी?
1: नहीं,
0: उम्र?
1: 19 साल।
0: कहां रहती हो?
1: वो महालक्ष्मी पुल के पास झोपड़ियों में।
2: साहब, साहब, क्या ये स्टैम्प पेपर जो जो जो लिखा है वो ठीक लिखा है?
0: जिसको कागज मिला है उसको सवाल करने दो।
1: अच्छा तो बताइए ना आप, ठीक है क्या ये, बताइए ना।
0: हाँ, लिखा तो ठीक है, मगर
2: मगर क्या?
1: क्या?
0: मगर ये वसीयत आज से 18 साल पहले लिखी गई थी, जब सर बोमन जी एक भयानक बीमारी का शिकार हो गए थे। तब उनके अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि उन दिनों उनके आगे पीछे कोई बली वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने इस अजीबोगरीब वसीयत को लिखकर एक बोतल में बंद करके समंदर में डलवा दिया था। लेकिन इस वसीयत के लिखने के कुछ महीने बाद ही सेठ अच्छे हो गए और अभी तक जिंदा हैं और अपनी जायदाद के मालिक हैं।
2: तो ये वसीयत गोया
0: चुप। 16 वर्ष तक सर बोमन जी ने अपनी बोतल वाले वारिस का इंतजार किया। जब कोई ना आया तो उदास हो गए और उन्होंने अपनी पुरानी वसीयत कैंसिल करा के नई वसीयत लिख दी, क्योंकि जब तक जायदाद का असली वारिस जिंदा है उसे अपनी वसीयत हर बार बदलने का हक है।
2: तो फिर
0: मैंने अभी सर बोमन जी को फोन किया था, वो बोतल वाली वसीयत मिल जाने से बहुत खुश हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं इंदु।
1: लेकिन जब वसीयत कैंसिल हो चुकी है तो फिर मिलने से क्या फायदा?
0: सर बोमन जी की गिनती बंबई के कुछ गिने चुने लोगों में होती है, वो बहुत कम लोगों को मिलने का समय देते हैं। यह आपका सौभाग्य है।
2: इंदु, मुलाकात करने में क्या हर्ज है?
1: रंजीत क्या?
2: मिल सकते हैं ना?
0: हो सकता है वो तुम्हें कुछ इनाम दें या फिर से अपनी इस पुरानी वसीयत पर अमल करने का फैसला सुनाएं।
2: अच्छा,
0: वो बहुत अजीब आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, सोच लो।
1: रंजीत
2: हिंदू,
1: समझ में नहीं आ रहा क्या
2: चलो
1: करें।
2: चलो ना।
3: तुम्हारा नाम रंजीत है?
2: जी सर।
3: अच्छा लगा मिलकर। ओ, तो तुम हो मेरी वारिस। बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, इंदु। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी?
1: मैं
3: मेरी बेटी बनकर।
1: मेरी माँ है।
3: उसे भी यहां बुला लेंगे। और तुम्हारा बाप?
1: वो मर चुका है
3: ये तो और अच्छी बात है।
1: जी?
3: अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बाप मर चुका। मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक बाप का प्यार दूंगा। अच्छा, तो यही वो लड़का है

0: बोतल को समंदर में से निकालने में इंदु की मदद की।
1: जी सर।
0: इसे 1,000 रुपए देकर भेज दो। नहीं नहीं, 2,000 दे दो। इसने इंदु की मदद की है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। क्या करते हो रंजीत?
2: जी, मेरे बाप का गैराज है, भास्कर गैराज।
0: वेरी गुड वेरी गुड। आओ इंदु, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम्हें भी लगी है ना? अरे पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखती हो? वो तुम्हारा साथी, उसको इनाम दे दिया है, उसकी चिंता मत करो। चलो चलो चलो चलो।
3: रंजीत,

0: तुम अपने हाथ से खाना खा सकती हो।
1: जी
0: इंदु, तुम कहां तक पढ़ी हो?
1: जी 7 दर्जे तक।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू करने के लिए ये काफी है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, सब सीख जाओगी। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है?
1: किम्मी बाई।
0: हम उसको भी यहां बुला लेंगे। आज से तुम मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस हो।
1: लेकिन वसीयत में सिर्फ 1 करोड़ लिखा है।
0: 18 साल पहले मेरी वसीयत 1 करोड़ की थी, लेकिन अब वो 2 करोड़ की हो गई है। अरे
1: जी,
0: इंदु मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस है, समझी?

0: ओहो, कितनी बदबू है इधर। तुम यहाँ रहती हो?
1: जी।
0: अच्छा ठीक है। कावा जी।
2: जी सर।
0: तुम जाओ इंदु के साथ और उसकी माँ को लेकर आओ, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर?
3: अरे देखो तो सही, क्या तगड़ा हाथ मारा है,
1: कोई पैसे वाले आसामी का बेटा लगता है।
3: अरे मैं देखकर अभी आई हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ी कार भी खड़ी है।
1: अच्छा?
3: हाँ हाँ, उसी से उतरी है ये बेटी, तो माँ से भी दो कदम आगे निकली।
1: चलो अच्छा है, किसी की जिंदगी तो सुधरी।
3: हाँ हाँ, और क्या ये कौन सा सारी जिंदगी अपने पास रखेगा इसे?
1: जब तक जवानी का रस है बस तब तक ही है।
3: चलो हमें क्या।
1: माँ, इंदु, मेरी लाटो, मेरी रानी, कैसी है तू? आए मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, मारी जाऊं, बलिहारी जाऊं।
2: वे सब बातें बाद में करना, अभी चलो इधर से।
1: लेकिन कहाँ?
2: वो भी बता दिया जाएगा।
4: अरे मुबारक हो किम्मी बाई, मुबारक हो।
1: अरे क्यों परेशान होती है रानी की माँ, सब्र कर, भगवान एक दिन तेरी भी सुनेगा।
4: मैं क्यों परेशान होने लगी? परेशान हो मेरी जूती।
3: छोड़ ना अम्मा, क्यों मुंह लग रही है?
4: तेरी वजह से सुनना पड़ता है सब। देख ले, एक वो है इंदु और एक तू है, जो ड्राइवरों और मैकेनिकों के चक्कर काटती रहती है।
3: हाँ हाँ, जब वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
4: अरे अब कहाँ चली तू? अरे सुन तो।
3: आती हूँ अभी। हाय बेचारा, छोड़कर चली गई।
5: क्या है
3: इंदु? चली गई ना। हाय चिड़िया उड़ गई।
5: तुझसे कौन बात करता है?
3: यही तो अफसोस है, दुनिया में और भी लड़कियां हैं।
5: तो मैं क्या करूं, है तो होने दे।
3: रंजीत,
5: मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी?
3: रंजीत, उसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बन गई है, दौलत के सिवा उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर उसके दिल में तेरे लिए जरा भी प्यार होता तो क्या वो तुझसे मिले बगैर चली जाती? लेकिन अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार नहीं,
5: रानी,
3: पैसा
5: रानी,
3: जरूरी है।
5: रानी, भगवान के लिए तू चली जाए यहाँ से, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तू तो इस तरह की बातें करके मेरी परेशानी और ना बढ़ा।
3: ओहो, मैं तुझे परेशान नहीं कर रही, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। रंजीत, शाम का सूरज डूबने का ये मतलब नहीं कि फिर सुबह नहीं होगी, हो सकता है अगली सुबह ज्यादा खूबसूरत हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
5: वही तो, मुझे भी उम्मीद है कि प्यार और दौलत की जंग में जीत प्यार की होगी।
2: हेलो
6: हेलो, बोमन विला
2: बराबर है, आप कौन?
5: जी मैं रंजीत।
2: रंजीत कौन?
6: जी वो इंदु का दोस्त, वो जो बोतल लेकर आया था।
2: अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए?
6: इंदु से बात करनी है अगर।
2: इंदु से?
6: जी
2: एक मिनट, अभी बात कराता हूँ।
6: जी
2: सर। सर वो छोकरा रंजीत इंदु से बात करना चाहता है।
0: मैं बात करता हूँ, इधर दो। हेलो, अब क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए तुमको? तुम कोई नाम दिया ना?
6: सर वो बात नहीं है सर।
0: फिर क्या बात है
6: सर? एक बार इंदु से बात हो जाती तो।
0: उसको भूल जाओ, क्योंकि वो अब मेरी बेटी है, सेठ बोमन की, और मेरी 2 करोड़ की जायदाद की वारिस भी, समझे? और सुन, अब उसकी शादी हो रही है।
6: शादी? लेकिन सर जी वो तो।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, अब उसकी शादी हो रही है कावस जी के साथ। अब कभी फोन नहीं करना।
5: ऐसा जवाब दूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगी। बहुत घमंड है ना उसको अपनी अपनी खूबसूरती पर। उसका ये घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं।
0: एलिस, एलिस।
4: यस सर।
0: कहाँ हैं सब? और मेरी बेटी कहाँ है?
4: मॉर्निंग वॉक के बाद बैडमिंटन, फिर स्विमिंग, फिर डांस, इतना सब करने के बाद थक जाती है वो, अब थोड़ा आराम कर रही है।
0: ओ, तो ये बात है।
4: सर, ये एक लिफाफा है इंदु के नाम।
0: ठीक है, तुम जाओ और इंदु बिटिया को मेरे पास भेजो, आज मैं अपनी बेटी के साथ ही नाश्ता करूंगा।
4: ओके सर, अभी भेजती हूँ।
0: क्या है इस लिफाफे में, देखूं तो। अरे वाह, शादी का कार्ड, रंजीत वेड रानी बाला। रंजीत, ये नाम तो कुछ सुना सा लगता है।
7: किसका नाम सुना सा लगता है पापा?
0: रंजीत, ये नाम कुछ
7: क्या हुआ उसे?
0: उसे क्या होना है, तुम जानती हो उसे? अरे हाँ, याद आया, वो ये तो वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ बोतल लेकर आया था।
7: हाँ हाँ, लेकिन उसे क्या हुआ है?
0: उसे कुछ नहीं हुआ, वो शादी कर रहा है।
7: क्या शादी? लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता।
0: बेटा, इन सड़क छाप लड़कों के साथ ज्यादा मेलजोल बढ़ाना ठीक नहीं है। अब तुम पहले वाली इंदु नहीं हो, अपनी हैसियत को समझो। इंदु, अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो बेटा, बेटा कहाँ जा रही हो, सुनो तो सही।
7: उसको बधाई देने, उसने कार्ड भेजा है तो बधाई तो बनती है ना पापा।
0: यस बेटा, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो
7: नहीं,
0: तुम्हारे।
7: नहीं नहीं पापा, मैं गाड़ी खुद ले जाऊंगी।
0: ओके बेटा, ओके, लेकिन जरा ध्यान से चलाना।
7: डोंट वरी पापा, गाड़ी को कुछ नहीं होगा।
0: बेटा इंदु, मुझे गाड़ी से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। ऐसी 100 गाड़ियां मैं अपनी बेटी पर कुर्बान कर सकता हूँ।
7: ठीक है पापा, बस मैं बस अभी आई उसको शादी का गिफ्ट देकर। आखिर यहाँ तक पहुँचने में उसने मेरी बहुत मदद की है ना, अभी आती हूँ। रंजीत, क्या ये सच है?
5: क्या सच है?
7: तुम्हारी शादी रानी बाला के साथ?
5: हाँ।
7: कार्ड तुमने भेजा था?
5: मैंने नहीं, रानी बाला ने।
7: घटिया औरत।
5: गाली मत दो उसे, वो अब मेरी होने वाली पत्नी है।
7: वो और तुम्हारी पत्नी? क्यों कीचड़ में मुंह मार रहे हो?
5: भूलो मत, भूलो मत इंदु, कि तुम भी इसी कीचड़ से

0: कर गई हो।
1: तुम मेरी बराबरी उससे कर रहे हो?
0: ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप एक अमीर बाप की औलाद, और
1: लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है।
0: और जो थी वो भी तो अब मेरी नहीं है।
1: मेरी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकती।
0: मैंने कब कहा कि तुम कुछ करो? अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया हो गया, अब हमारे रास्ते अलग हैं।
1: नहीं, मैं इतनी जल्दी हारने वाली नहीं। चलो बैठो गाड़ी में।
0: क्यों?
1: मैंने कहा बैठो, एक अहम फैसला करना है मुझे अपनी जिंदगी का, तुम्हारा साथ जरूरी है।
0: लेकिन अब क्या फायदा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस गाड़ी में बैठो
0: देव,
1: रंजीत, गाड़ी में बैठो।
0: ठीक, ये क्या कर रही हो तुम? गाड़ी की इतनी स्पीड, ये क्या कर रही हो इंदु? गाड़ी रोको, मैं कहता हूं गाड़ी रोको इंदु। अगर तुम चाहती क्या हो
1: अभी पता चल जाएगा।
0: इंदु, संभल के संभल के, क्या हो गया तुम्हें? मरने का इरादा है क्या?
1: यही समझ लो, क्यों डरते हो? आज मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगी। ये लो
0: इंदु, इतनी
1: ये लो।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, इतनी स्पीड! इंदु, इंदु, क्या क्या क्या क्या कर रही तुम?

0: सपना था शायद।
1: आ, सपना ही था लेकिन बड़ा डरावना। ऐसा लगा था जैसे जैसे सब कुछ खत्म हो गया।
0: हाँ, लेकिन शुक्र है भगवान का, हम साथ हैं
1: और हमेशा साथ ही रहेंगे।
0: रंजीत।
1: हाँ?
0: रंजीत बोतल।
1: क्या?
0: वो देखो वो बोतल, उठाकर तो लाओ ना।
1: नहीं चाहिए इंदु, ऐसी बोतल नहीं चाहिए जो हमारी खुशियां छीन ले।
0: रंजीत सुनो ना, मुझे लगता है उसमें उसमें जरूर हीरे मोती होंगे।
1: या फिर तुम्हारे किसी बूढ़े खुसट की अंतिम वसीयत। हाँ?
0: जो भी हो रंजीत, मुझे वो बोतल चाहिए। बस बस,
1: अरे
0: बस
1: लेकिन
0: जाओ ना लेकर आओ।
1: अच्छा ठीक है बाबा, लाता हूँ। ये लो।
0: ये तो खाली है।
1: हाँ इंदु, लेकिन हमारी तकदीर इस बोतल की तरह खाली नहीं है। हम दोनों का ही सोचना बहुत गलत था। खुशियां बंद बोतल में सागर की लहरों में उछलती हुई नहीं मिलती हैं। खुशियों को अपने हाथों से जीतना पड़ता है, इन दोनों हाथों से।
0: नहीं रंजीत, दो हाथों से नहीं, चार हाथों से।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक एक करोड़ की बोतल, मूल कहानी कृष्ण चंदर, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अक्षय वशिष्ठ, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, सुरेंद्र सागर, राजेश बख्शी, राजीव धीमान, नीलाक्षी, सुनीता हुड्डा और शालू सिंह।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक एक करोड़ की बोतल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने ही वाले हैं, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हैग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
1: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर का तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशामुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
1: नेदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नेदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: Last night, when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through a cultural and musical performance by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Indian agencies have achieved the first ever seizure of Captagon drug worth 182 crore rupees through Operation Rage Pill. In a social media post, Home Minister Amit Shah shared this information and said that the government has resolved for a drug-free India. He said that the busting of the drug consignment destined for the West Asia and the arrest of a foreign national stand out as shining examples of our commitment to zero tolerance against drugs. The newly appointed BJP government in West Bengal has moved to withdraw the state's ongoing case in the Supreme Court regarding OBC reservation. On Thursday, government lawyer Kunal Mimani wrote to the Supreme Court registrar requesting an urgent hearing to formally withdraw the matter. On 22nd May 2024, the Calcutta High Court struck down the OBC list prepared by the Trinamool Congress government and ordered a fresh list to be created. The then state government appealed against that verdict in the Supreme Court, where the case is currently being heard by a bench headed by the Chief Justice of India. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandhare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. It said that she had mobilized prospective NEET examination candidates through Manisha Vaghmare of Pune, who was arrested on 14th of this month, and conducted special coaching classes for these students at her Pune residence. So far, nine accused have been arrested in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune and Ahilyanagar. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said students dissatisfied with their results can avail a two-stage review system. In the Thailand Open Badminton, the Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sej Phi and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 21-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Meghalaya and South Interior Karnataka during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। लापता महिला का पूरा नाम सरस्वती वर्मा है। ये सचिन वर्मा की पत्नी है। इन्हें अंतिम बार 26 मार्च 2026 को थाना कासना, ग्राम कासना, गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। इनकी आयु 22 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। सरस्वती वर्मा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम ईशा है। ये सुलेख कुमार की पुत्री है। निवासी कस्बा कासना, थाना कासना, गौतम बुद्ध नगर। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। ईशा की आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। ईशा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना कासना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोई हुई युवती का पूरा नाम सोनम है। ये श्री इंदुपाल के पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार C78 ईटा 1 थाना सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। सोनम की आयु लगभग 19 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है। कद 5 फीट है। इन्होंने अंतिम बार काला सूट और सलवार पहना था। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम रिया कुमारी है। इन्हें अंतिम बार घर के नियर अग्रवाल स्वीट्स के पास, कस्बा सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। रिया की आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम आयशा है। इन्हें अंतिम बार 28 फरवरी 2026 को इनके घर पर देखा गया। आयशा की आयु 18 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है। ये अपने घर से कंपनी के लिए कहकर गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। ईशा के बारे में अधिक जानकारी के लिए नाम एक बार फिर से सुन ले। आयशा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। होई हो युवक का पूरा नाम अनमोल सिंह है। ये ब्रजेश सिंह के पिता हैं। ये ब्रजेश सिंह के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 24 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक नोएडा सेक्टर 24 जनपद, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवक का पूरा नाम

अंश है, ये चरण सिंह के पुत्र हैं, निवासी वेद विहार कॉलोनी कस्बा व थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 18 अप्रैल 2026 को इनके घर वेद विहार कॉलोनी थाना दादरी में देखा गया। इनकी आयु 14 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 4 फीट है। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। एवं मंत में गुमशुदा युवती का पूरा नाम काजल है, ये मुन्ना की पुत्री हैं, निवासी मुखिया का किराए का मकान बारात घर के सामने। इन्हें अंतिम बार 22 मार्च 2026 को इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 17 वर्ष है, पतला शरीर है एवं कद 5 फीट है। इनका रंग गेहुआ है। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को 3000 की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। काजल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना एक्सप्रेसवे नोएडा गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Comptroller and Auditor General of India has issued an important notice for candidates selected for the post of accountant through combined graduate level exam CGLE 2025. Allocations of states and offices will be based on merit and candidates' preferences. Selected candidates must submit their personal details, attestation forms and state preferences online by 18th May 2026. Complete details available on the official website at www.cag.gov.in. Candidates can also fill their preference forms at www.cag.delhi.nic.in/state-choice. Central Pulp and Paper Research Institute has invited retired professionals from government departments, PSUs, universities, autonomous bodies and research organizations for consultant grade 2 and grade 3 posts on contractual basis. The walk-in interview will be held on 18th May 2026 at CPPRI, Saharanpur. Detailed eligibility criteria and terms available on the official website at www.cppri.res.in. I repeat, it is www.cppri.res.in. Several government organizations and institutions have announced fresh recruitment and deputation opportunities. The Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, New Delhi, has extended the last date for applications for the post of Scientist G on deputation basis up to 26th May 2026 for candidates from remote and specified regions. Complete details available on the official website at www.psa.gov.in. CRPF has announced a major recruitment drive for constable, technical and tradesman and constable pioneer posts with more than 9,000 vacancies for male and female candidates across India. The posts carry pay level 3. Online applications are open till 19th May 2026. Candidates must have at least metric qualification, while certain technical trades require additional qualifications. Details, statewide vacancies and online application link is available at www.rect.crpf.gov.in. ICAR NIAP is conducting walk-in interviews for Young Professionals 1 and Young Professionals 2 positioned under different research projects. The posts carry a consolidated salary of 42,000 rupees per month. Interviews are scheduled on 18th and 19th May 2026 at the Institute campus in New Delhi. Candidates should check eligibility, qualifications and other details on the official website. And the website is www.niap.res.in. I repeat, www.niap.res.in. Islamic University of Science and Technology has invited online applications for the post of a professor in architecture under pay level 14. Applicants should have a PhD in architecture, strong academic background and substantial teaching and research or professional experience. The last date for online application is 18th May 2026, while hard copies must be submitted by 25th May 2026. For details, kindly refer to the official website at this www.iust.ac.in. I repeat, www.iust.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY, नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसिलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026 और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सकें। www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सकें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम, अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के 1 पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। TGT गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। TGT हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। TGT सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त हैं, संविदात्मक। TGT मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त हैं, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है, जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा PO बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: It's a beautiful Saturday evening and time for our daily show, Parikrama. Listeners, 30 minutes and it's going to be a complete package of news, discussion segment called Dateline India, reports, capsules, tributes and a flavor of music too. All this and much more over the next 30 minutes and Vaishnavi, let's first begin with the news headlines.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम.
0: सेवरल इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी साइंड इंक्लूडिंग इन द फील्ड्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई एंड बायलैटरल ट्रेड.
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे.
0: वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स रीवेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यूड सिंस 2011.
1: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की.
0: एंड इन बैडमिंटन, इंडियन ड्यूओ सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंटर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन आफ्टर अ थ्रिलिंग victory over Malaysian pair in the semi-finals. And listeners, now time for our discussion segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Sikkim's 51st Statehood Day and Prime Minister's visit to the UAE. Vaishnavi, Sikkim, it's a beautiful land where mountains touch the clouds.
2: Mm-hmm.
0: But beyond its breathtaking beauty lies a story that makes every Indian proud. Today, Sikkim is celebrating its 51st Statehood Day, and across the country, wishes have poured in from the nation's top leaders. President Draupadi Murmu describes Sikkim as a shining example of sustainable development.
1: राष्ट्रपति ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की. वास्तव में सरबजीत, अगर हम देखें तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है. सिक्किम दुनिया का पहला और एकमात्र पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य है, जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं.
0: एब्सोल्युटली वैष्णवी, सिक्किम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी हैव सीन growth, but not at the cost of nature, not at the cost of rivers, forests and clean air.
1: बिल्कुल, यहाँ के किसानों ने जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. प्रकृति को सहेजते हुए पर्यटन का विकास किया गया और आधुनिकता के इस दौर में भी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखा है.
0: वैष्णवी, इट्स बीन अ जर्नी फॉर सिक्किम एंड ऑफिशियली सिक्किम बिकेम इंडियाज 22nd स्टेट ऑन दिस डे इन द ईयर 1975 एंड दैट इज व्हाई स्टेटहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड. बट द गोल्डन जुबली celebrations had continued throughout the year, eventually culminating in a grand ceremony in April this year, where Prime Minister Modi joined the people of the state in Gangtok. Let's share a detailed report on this with our listeners.
3: 16th May is celebrated as Sikkim Day, as on this day in 1975, Sikkim became part of India.
4: Initially, Sikkim was under Chogyal dynasty rule during the 17th century. However, by 1890, it became a protectorate state under British rule, who used it as a buffer state between China and British India. In 1947, as Sikkim became a part of India unofficially, its foreign policy, security and communication came under the realm of India, while maintaining its independence at the same time.
3: In 1973, the people started demanding a responsible government and a civil disobedience movement was established against the monarch. A referendum was held in which 97.5% of voters supported abolishing the monarchy. This led to Sikkim's official merger with India. To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.
4: First, the 35th Amendment laid down a set of conditions that made Sikkim an associate state. A month later, the 36th Amendment repealed the 35th Amendment and made Sikkim a full state, adding its name to the first schedule of the Constitution.
1: इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम में मिले स्नेह और आत्मीयता का भी उल्लेख किया. श्रोताओं, जो भी कभी पूर्वोत्तर गया है वे इस भावना को भली भांति समझ सकता है। कई बार मुस्कान के साथ

0: परोसी गई स्थानीय चाय की एक प्याली भारत की एकता और अपनत्व का एहसास गहराई से करा देती है।
1: Yes, and Vaishnavi, heaven of the East. That's how Prime Minister described this beautiful state. And interestingly, this did not sound like a political line. It sounded personal.
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खेल और युवाओं के लिए अवसर के बारे में बात की, क्योंकि दशकों से हिमालय क्षेत्रों के कई हिस्सों में लोगों को मुश्किल सड़कों, सीमित सुविधाओं और कम अवसरों से जूझना पड़ा रहा है।
1: Union Home Minister Amit Shah also praised Sikkim's achievements, saying the state continues to inspire the nation, whether through organic farming or redefining mountain tourism. The phrase redefining mountain tourism means a lot, Vaishnavi. Tourism in many places often becomes overcrowded and chaotic, but Sikkim offers something different. Clean streets, respect for nature, quiet monasteries and local markets selling handmade products.
0: बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी। तो कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें लेके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि हम अपने वहां से शांति, सुकून और खुशी का एहसास लेकर के भी लौटते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सिक्किम घूमने और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत वहां के स्थानीय उत्पादों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: Absolutely, Vaishnavi, and the Honorable Prime Minister has at various fora, you know, spoken about vocal for local, and he has been encouraging the citizens to go in for products made in the country itself. So because, you know, what is the reason behind this? Well, when someone buys local hand-woven products, especially from Gangtok, or tastes organic produce grown in Sikkim's villages, they are not only shopping, they are helping preserve livelihoods, traditions, and an entire way of life.
0: वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान श्री सिंधिया नामची पर्यटन सर्किट, भालेडुंगा स्थित स्काई वॉक परियोजना और नाथुला के निकट कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
1: Well, for many years, people spoke about the Northeast as if it was distant from the rest of the world, cut off, not a part of the mainstream. But today, the conversation is changing. Roads, railways, tourism, sports, digital connectivity and cultural exchanges are bringing the region closer to the national mainstream while preserving its unique identity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताया। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो अपार शक्ति, सौंदर्य और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, और ये भावना सिक्किम से अधिक कहीं और दिखाई नहीं दे सकती हमें।
1: एंड दिस इंडीड वैष्णवी इज इंट्रीगिंग। व्हाट ट्रूली मेक्स इंडिया सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी? इज इट आवर लैंग्वेजेस, आवर फूड, आवर फेस्टिवल्स, आवर लैंडस्केप्स?
0: मुझे लगता है सरबजीत, इस सब सारे प्रश्नों का जवाब यही है कि मठों, ऑर्किड, बर्फों से ढकी चोटियों और जैविक खेतों से सजा एक छोटा सा हिमालय राज्य भी उतने ही गर्व और आत्मीयता से स्वयं को भारतीय महसूस करता है जितना राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के समुद्र तट या दिल्ली की गलियां। यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता और हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जुड़ा राष्ट्रीय गौरव।
1: Very well said, Vaishnavi. Different stories, different cultures, different identities, yet one heartbeat. And Sikkim's journey beautifully reminds us of that truth.
0: श्रोता, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता अब केवल व्यापारिक संबंधों और तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गई है। आज ये साझेदारी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य को नई दिशा दे रही है।
1: एब्सोल्युटली, वेरी वेल स्टेटेड वैष्णवी। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज टेकन दिस पार्टनरशिप to an entirely new level. But it's very important to look into this question, that what does this really mean for the ordinary Indian? Does it mean cheaper and more secure energy for our homes? Does it mean more jobs for young engineers and skilled workers? Or does it mean India is preparing itself to lead the technologies of tomorrow?
0: इन सभी सवालों का जवाब हाँ है और इसके संकेत अभी से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सदियों से भारत और संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आधुनिक कूटनीति की शुरुआत से बहुत पहले ही दोनों देशों के व्यापारी इसी समुद्री मार्ग के जरिए मसालों, मोतियों, खजूर और कपड़ों का व्यापार किया करते थे।
1: But Vaishnavi, today the relationship has evolved far beyond trade ships and business deals. It has become a partnership built on trust, ambition, shared dreams for the future. And don't miss the scale of this growth. Trade between the two countries has crossed $100 billion for the first time.
0: जी सरबजीत, और एक पल के लिए अगर हम सोचे तो हर दिन हजारों व्यवसाय, कामगार, निर्यातक और परिवार इस मजबूत होती साझेदारी से लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे सूरत का कोई कपड़ा व्यापारी हो, कोची का कोई सी फूड निर्यातक, वहीं बेंगलुरु का कोई स्टार्टअप संस्थापक या दुबई में कार्यरत कोई तकनीशियन, ये सभी भारत के इस वैश्विक मंच पर तेजी से उभरने की इस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं।
1: जी, एंड वैष्णवी, वी कैन नॉट मिस ऑन दिस दैट वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम्स ऑफ दिस विजिट इज एनर्जी सिक्योरिटी। इट्स अ बर्निंग टॉपिक इन टुडेज टाइम्स। एंड ऑफकोर्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न नेशन, फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इन अ मिडिल क्लास किचन टू फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी टचेज एवरीडे लाइफ।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अब कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों के क्षेत्र में अपने सहयोग और मजबूत किया है। इसका मतलब ये है कि भारत खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल या अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान भी वे मजबूत से बना रहे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई परिवार आगे आने वाले मुश्किल समय के लिए बचत करता है। एक जिम्मेदार परिवार जरूरी चीजों का भंडारण करता है और सोच समझ कर योजना बनाता है।
1: Absolutely, and India is now doing the same at a national scale. But the visit was not only about oil and trade, it was about the future. A future driven by artificial intelligence, supercomputing, advanced manufacturing and innovation. India and the UAE are partnering to set up an 8 exaflop supercomputing cluster, and that sounds highly technical, but its impact could touch millions of lives. Faster supercomputers can help India improve weather forecasting, scientific research, healthcare systems, defense technology and artificial intelligence innovation.
0: श्रोताओं, आज किसी छोटे शहर में बैठा एक छात्र भी कल इन्हीं साझेदारियों से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण तैयार कर सकता है। अवसरों का दायरा इतना व्यापक हो चुका है, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है, क्या भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर सकता है?
1: Yes, indeed. The question is equally intriguing, Vaishnavi, and indeed this is also a milestone for the country. The answer, of course, is slowly unfolding along the country's coastlines. A major agreement has been signed for developing ship repair and maritime infrastructure in Gujarat. Alongside this, there will also be skill development programs for India's maritime workforce.
0: श्रोता, इसका अर्थ ये है कि वेल्डर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, लॉजिस्टिक पेशेवरों और शिपिंग व जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं।
1: Yes, Vaishnavi, and so interesting and nice that a young person from a coastal town who once searched for jobs abroad may soon find world-class opportunities within India itself. And that is the real transformation.
0: जी बिल्कुल, और इसी दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी और गहरा हुआ है। भारत अब रक्षा क्षेत्र को केवल बाहर से उपकरण खरीदने तक ही सीमित नहीं मानता, अब इसका जोर मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत सह विकास, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है।
1: And perhaps the most beautiful part of this relationship, Vaishnavi, lies in the people-to-people connection. Millions of Indians living in the UAE are contributing every single day. Doctors, teachers, engineers, shopkeepers, entrepreneurs, construction workers and professionals. Their hard work has built bridges stronger than diplomacy itself.
0: श्रोताओं, घर भेजा गया हर रेमिटेंस भारत में कई सपनों को सहारा देता है। किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी पारिवारिक व्यवसाय की शुरुआत, एक नए घर का निर्माण या बेहतर भविष्य की उम्मीद, यही कारण है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी इतने सारे भारतीयों को गहरे अपनत्व का एहसास कराती है।
1: एंड वैष्णवी, टुडे इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द साइडलाइंस वेटिंग फॉर द फ्यूचर टू अराइव। इनफैक्ट इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग दैट फ्यूचर। एंड परहैप्स द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट इज दैट इंडियाज राइज इज नो लॉन्गर अ प्रिडिक्शन, इट इज बिकमिंग अ रियलिटी दैट द वर्ल्ड इज एक्टिवली पार्टनरिंग विद। एंड दैट इज अ स्टोरी एवरी इंडियन कैन फील proud of.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
1: Yes, a major step towards preserving Nagaland's indigenous heritage has taken shape with the inauguration of

0: Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima this month. The center aims to preserve, document and promote the rich traditions of the state's indigenous communities through art, crafts, music, folklore and storytelling. More details on this from our Kohima correspondent.
1: The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima was inaugurated by Advisor for Art and Culture, Government of Nagaland, K. Kongam Konyak on May 7. Constructed at a cost of over 1,283 lakh rupees, the project was jointly funded by the central and state governments. The three-story building houses a district museum, library, seminar hall, and dedicated tribal spaces representing all 16 tribes of Nagaland. The facility is expected to serve as a hub for exhibitions, research, learning, documentations, and cultural exchange, while also fostering unity and mutual understanding among tribal communities. Advisor for Art and Culture, K. Kongan Konyak, described the center as a living cultural space for future generations.
2: This center not merely as a place to preserve the past, but as a living cultural space where tradition can be actively practiced, shared and carried forward to future generations.
1: The project, first sanctioned in 2011, faced delays after funding was discontinued. The state government later revived the project using its own resources, leading to its completion earlier this year. The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center now stands as a symbol of cultural pride, unity and preservation for generations to come. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
3: श्रोताओं अब रुक करते हैं कोहिमा से पानाजी की ओर। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और शून्य हानि कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देते हुए 42वें खनन सुरक्षा सप्ताह 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल गोवा में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के उप महानिदेशक रामोतार मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने तथा शून्य हानिकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,
5: हमारा जो पिछला सेफ्टी वीक का फंक्शन हुआ था 2016-17 में हुआ था, 2018 से हमारी माइन से काफी बंद हो गई थी और हम सबको ये खुश होना चाहिए कि इस बार हमारा कई माइन चालू हुई है। हम लोग इस बार जो सेफ्टी वीक का ये फंक्शन कर रहे हैं इसमें करीब 50 माइन पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें गोवा राज्य की माइंस है और महाराष्ट्र की कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग का है कुछ माइंस, रत्नागिरी की एक तो माइंस है और रायगढ़ का कुछ माइंस है। तो सुरक्षा के प्रति हमारे जो कामगार हैं उनकी जो जागरूकता है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए इस तरह का ये सेफ्टी का आयोजन किया जाता है।
4: कार्यक्रम में डीजेएमएस के वरिष्ठ अधिकारी, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उद्योग से जुड़े भागीदार उपस्थित थे। गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी से लगभग 50 खदानों ने 15 से 20 दिसंबर 2025 तक चले इस सप्ताह भर के आयोजन में भाग लिया था। इस दौरान सेमिनार, ट्रेड टेस्ट और फर्स्ट एडर प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य खदान सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए गए। अगले खान सुरक्षा सप्ताह की मेजबानी वेदांता लिमिटेड को सौंपी गई है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: Well, as Maharashtra, along with other states, enters the second phase of the house listing and housing census today, let us go to Sindhudurg, district of Maharashtra, where a small village achieved a huge feat. We have a report.
6: Moot, a small village in Sindhudurga, has crossed a major milestone by becoming the first village in the state of Maharashtra to complete the self-enumeration process. It's a small village of just 36 houses, 43 families and a total population of 144. To elaborate further on how Moot village completed the self-enumeration process and how it inspired other villages to follow the same roadmap, we have with us District Collector of Sindhudurga, Trupti Dhodmise.
7: The first village which actually completed its self-numeration 100%, that is the village Moot in Vengurla Taluka, which actually comprises the population of 144. After that, more than 15 villages have completed the self-enumeration process. Seeing our achievement, Honorable Director Census Operations Nirupama Dange Ma'am also has taken the cognizance and appealed our villages and district administration across the state to participate proactively in the self-enumeration process. So many villages in the state also have come forward after that and they have completed their self-enumeration process.

0: Wasn't that beautiful, Vaishnavi?
1: Ji, bilkul.
0: And we are also remembering Maria Gethina Agnes. Today is her birth anniversary. Maria was an Italian mathematician, philosopher, theologian and humanitarian. The interesting part is that she was the first woman to write a mathematics handbook, the first woman appointed as a mathematics professor at a university, and the second woman appointed as a professor on an overall basis. She's credited with writing the first book discussing both differential and integral calculus. The Britannica defines her as to be the first woman in the Western world to have achieved a reputation in mathematics.
2: एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूँ घर से ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूँ, वे एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूँ, वे जान जाता है मैं भीतर से हूँ अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूँ, वे कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा वे कहते हैं अरे आप टीवी पर देखे थे एक दिन। यही खासियत ही मंगलेश डबराल की कविताओं की कि वे बिना किसी भारी शब्दों के सीधे इंसान के भीतर चल रही भावनाओं को सामने ले आते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही मन की बात कह रहा हो। आज ही के दिन वर्ष 1948 में जन्मे मंगलेश डबराल हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख और सम्मानित रचनाकारों में गिने जाते हैं।
0: और वैष्णवी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा दैट शाम का समय है, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग और इट्स अ सैटरडे इवनिंग। सो यू नो, बिफोर वी वाइंड अप दिस प्रोग्राम, व्हाइल वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट फनी मजुमदार, टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी, वी मैनेज्ड टू ब्रिंग two songs for our listeners from some of his classic movies. Fani Majumdar worked in Bengali and Hindi cinema. So our production team has brought in these two beautiful numbers. Let's hear them out.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़दुद्दीन और गोइस केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं रेणु बर्मन से ये लोकगीत।
1: मेरी

रुपए बचे 40, रुपए बचे 40, और 10 के तो मैं जूते लाई, 10 की होगी पालिश, 10 के तो मैं जूते लाई, 10 की होगी पालिश, हिसाब।

रुपए बचे 20, और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी फीस, और 10 की तो राजेंद्र जाटव काफी लाया, 10 की दे दी फीस, हिसाब मेरा।

श्रोताओं सुन रहे थे आप राजेंद्र जाटव से ये लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष और हर बड़े मुकाबले के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ हैं वसीम अहमद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस संस्करण की। आज के इस खास अंक में बात होगी बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन से सात्विक और चिराग की शानदार जीत की और लक्ष्य सेन के मुकाबले की भी हम करेंगे बात। साथ ही आईपीएल 2026 के रोमांच की, जहां लखनऊ और चेन्नई के मुकाबले की बड़ी झलकियां होंगी, वहीं कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाले अहम मुकाबले पर भी रहेंगी हमारी खास नजर।

0: आज का दिन भारतीय बैडमिंटन के लिए काफी खुशगवार रहा। बैंकॉक के निमिबुम स्टेडियम में चल रहे थाईलैंड ओपन 2026 में दो बार के पूर्व चैंपियन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पिछले साल के संस्करण से चूकने के बाद एक बार फिर थाईलैंड ओपन के फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने आज खेले गए सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी गो से फेई और नूरिजुद्दीन को 19-21, 22-20, 21-16 से हराया। मलेशियाई जोड़ी ने पहले गेम की शुरुआत बेहतर करी और 7-7 से बढ़त लेते हुए 15-9 पर 6 अंकों की बढ़त बना ली। हालांकि सात्विक और चिराग ने अंतिम चरण में अंतर कम करने की कोशिश तो की, लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने मजबूती बनाए रखी और गेम 21-19 से अपने नाम किया। दूसरा गेम कड़ी टक्कर वाला रहा, जिसमें दोनों जोड़ियों के बीच अंकों के लिए संघर्ष चला। भारतीय जोड़ी 20-18 पर गेम पॉइंट तक पहुंची। हार न मानते हुए गोह नूर की जोड़ी ने 2 गेम पॉइंट बचाकर स्कोर बराबर कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने 22-20 से गेम जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचा दिया। 2019 और 2024 के चैंपियन सात्विक और चिराग ने फिर तीसरे गेम में दबदबा बनाया, 21-16 से आसान जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ ही उन्होंने इस सीजन का पहला फाइनल भी सुनिश्चित किया। भारतीय जोड़ी का सामना अब खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया के लियो रॉली कर्नांडो और डेनियल मार्टिन से कल होगा। जीत के बाद सात्विक और चिराग ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: Yeah, obviously it feels good. Didn't start of the year that well. We were always in two minds. I think we were also not good mentally. Not a really good start. And as players, we are very, very driven. And for us to losing, it does bother us quite a bit. And we really wanted some answers. And finally, the bronze at the Thomas Cup especially really boosted our confidence. And here we are playing our first final of the year. Hopefully, we can go and win the title.
2: There was a situation we thought like, why it's happening? But later on, I realized like it's a part and parcel of the game. Yeah, and the way we play, it's more of aggression and more of attacking game. There will be a lot of niggles because I had a history of having tears or something like that. I have to manage and play. So it's kind of adjusting, being calm. And even my partner, like if I'm not well, he was kind of supportive at that time. So it has helped us. Even as a camp coach, the way he's handling the players when he's injured, I think that has helped us. And yeah, really, really happy. I mean, I was telling in Thomas Cup to all the players, like one podium finish can change someone's life as well. So that's how it changed in 2022 Thomas Cup, where we won from down. From there's no looking back for us. That mentality then became. We started playing really good after Thomas Cup. I said the same thing. Guys, it's not your personal, it's a team win. I think it can change, hold the momentum, especially for us. If we hit once podium, I think we wanted that. I think we'll get that feeling again and again. So I think that has helped maybe. So I think, as Sirak said, job not done yet. And we wanted to play one more good game tomorrow, whoever comes.
0: पुरुष एकल में ऑल इंग्लैंड ओपन के उपविजेता लक्ष्य सेन थाईलैंड के कुनलावुत विंटेडसान से हारकर बाहर हो गए। कुनलावुत ने शुरुआती गेम में 11-2 की बढ़त बनाई, लेकिन लक्ष्य ने लगातार 5 अंक लेकर अंतर को 4 अंकों तक कम कर दिया। कई टक्कर के बावजूद भारतीय शटलर ओलंपिक रजत पदक विजेता से पार नहीं पा सके और 19-21, 16-21 से मुकाबला हार गए। इसी के साथ पुरुष एकल में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। कल ही पीवी सिंधु की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ महिला एकल में भी भारत की चुनौती समाप्त हो गई थी।

आईपीएल अब अपने आखिरी चरण में है। यहाँ हर मैच हर टीम के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। आज हम बात करेंगे कल खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच की। कल लखनऊ में खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ उम्मीदों को पूरी तरह झटका देते हुए 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज करी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16.4 ओवर में मात्र 3 विकेट खोकर 188 रन बनाकर 7 विकेट से जीत हासिल करी। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही जब लखनऊ के डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने शानदार 26 रन देकर 3 विकेट का स्पेल डालते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को जल्दी पवेलियन भेज दिया। हालांकि कार्तिक शर्मा ने पारी को संभालते हुए 42 गेंद

0: में शानदार 71 रन बनाए। शिवम दुबे ने भी तेज 32 रन जोड़कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर 187 तक पहुंचाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में बढ़त दिलाने के लिए काफी होगा, लेकिन रन चेस की कहानी कुछ और ही थी। और फिर मैदान पर आए लखनऊ सुपर जायंट्स के मिशेल मार्श। इस ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 90 रन बनाए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिसमें अंशुल काम्बोज के एक ओवर में लगातार 4 छक्के भी शामिल थे। जोश इंग्लिस ने 36 रन बनाकर बेहतरीन सहयोग दिया, जबकि निकोलस पूरन ने अपने अंदाज में मैच खत्म किया। उन्होंने नाबाद 32 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार छक्के शामिल थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लक्ष्य को सिर्फ 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच में कुछ खास रिकॉर्ड और अनचाही उपलब्धियां रहीं। अपनी विस्फोटक पारी के दौरान मिशेल मार्श ने आईपीएल करियर में 100 छक्कों का आंकड़ा पार किया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल काम्बोज ने अपने नाम 3 अनचाहे रिकॉर्ड किए। उन्होंने दूसरा सर्वाधिक महंगा स्पेल दिया, 2.3 ओवर में 63 रन देकर कोई विकेट न लिया। आईपीएल इतिहास में वे अब दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने एक ही इनिंग में 8 छक्के खाए। तीसरा अनचाहा रिकॉर्ड अंशुल काम्बोज ने 3 या 3 से कम ओवर देकर 60 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे गेंदबाज बने। कल लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद उनके गेंदबाज आकाश सिंह ने क्या कहा श्रोताओं, आइए सुनते हैं।
1: मैं 2 साल से हूँ टीम के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैकिंग, राइट? सो जिस तरीके से कोचेज ने मेरे को यू नो बैकिंग करते हैं, या जिस तरीके से जब भी मैं नहीं भी खेल रहा होता हूँ तो वो उनका जो सपोर्ट है, लाइक भारत अरुण सर इस साल हमारे साथ आए हैं, लास्ट ईयर जाहिर सर थे, ठीक है, बट जस्टिन और जैसे इस साल टॉम मूडी हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को यू नो, और हम प्लेयर नहीं खेल रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम वो हमें किस तरीके से मेहनत करना है, किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है गेम्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो जब आप जब 25 खिलाड़ी होते हैं सबके पास यू नो उस तरीके से आप जाते हो, जब आप नहीं खेल रहे होते हो तो आपको चाहिए कि यू नो आपको बैकिंग मिले, राइट? जब भी आप मौका मिले तो आप कोशिश करते हो, हर इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो उस मौके को ग्रैब करे, बट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, कैप्टन है, वो आपको कितना बैक कर रहे हैं। तो 100% ऋषभ दिया हो गया, और ये जितना बैकिंग आपको मिलेगा उतना आप फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज मैच भी खेला तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, लाइक जो मेरे को आता है, लाइक न्यू बॉल मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेरे पास स्विंग मेरी कला है, यू नो दोनों तरफ मेरे पास स्विंग है, तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि जो मेरे को आता है उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, और जैसे विकेट में बाउंस भी था तो बाउंसर्स का अच्छा यूज करना, जो विकेट डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग यू नो चीज़ों को रखा जाए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब एक नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। आज रात कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में एक शानदार मुकाबला होने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी में गुजरात टाइटन से होगी टक्कर सीजन के मैच नंबर 60 में। इन दोनों टीमों के लिए दांव बिल्कुल अलग अलग हैं। केकेआर के लिए आज का मैच करो या मरो जैसा है। अजिंक्य रहाणे की टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, 11 मैचों में महज 4 जीत के साथ, हारे तो प्ले ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर। दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स इस वक्त उड़ान पर है, 12 मैचों में 8 जीत, लगातार 5 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। आज जीत हासिल की तो वो पहली टीम बन सकते हैं जो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में आधिकारिक तौर पर जगह पक्की करेंगे। हेड टू हेड आंकड़े भी केकेआर के हक में नहीं है। 6 मुकाबलों में गुजरात ने 4 जीते हैं, केकेआर सिर्फ एक बार ही जीत पाई है। इस सीजन में भी अहमदाबाद में दोनों की भिड़ंत हुई थी, जहां शुभमन गिल ने 86 रनों की तूफानी पारी खेली और गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से जीत दिलाई थी। गुजरात टाइटन की तरफ से साई सुदर्शन इस सीजन की शान है, 12 मैचों में 501 रन और 155 का स्ट्राइक रेट। वह इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और कगिसो रवाडा का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी कम खतरनाक नहीं, 12 मैचों में 21 विकेट। केकेआर की तरफ से अंकुश रघुवंशी इस सीजन में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं और 340 रन बना चुके हैं, और जब बात होती है ईडन गार्डन्स की तो रिंकू सिंह का नाम अपने आप आता है। 2023 में यहीं पर उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर इतिहास रचा था। इस सीजन वो 71.5 के औसत से रन बना रहे हैं। आज टॉस और ओस का फैक्टर दोनों महत्वपूर्ण होगा। कोलकाता में 89% आर्द्रता का अनुमान है, जिससे रात में गेंद फिसलनी शुरू होगी और स्पिनरों का असर कम हो सकता है। इस सीजन ईडन गार्डन्स में खेले गए तीनों मैच

पीछा करने वाली टीम में ही जीते हैं, तो आज टॉस हार जीत तय कर सकता है। एक नजर डालते हैं आईपीएल के इस संस्करण की अंक तालिका पर। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस दोनों ही टीमें 12 मैच खेलकर 8 जीत में 16 अंकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 मैच में 4 जीत और 8 हार के साथ 8 पॉइंट लेकर 10वें स्थान पर है। ऑरेंज कैप की रेस में हेनरिच क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के पहले स्थान पर बने हुए हैं, जिन्होंने 12 मैच में 508 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के बी साई सुदर्शन और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात की जाए पर्पल कैप के लिए, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार 12 मैच में 22 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 12 मैच में 21 विकेट के साथ दूसरे और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल काम्बोज 12 मैच में 19 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 पूरे रोमांच और प्रतिस्पर्धा के साथ जारी है। 11 मई से 17 मई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 28 देशों के 172 एथलीट वेटलिफ्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। एशिया के कई दिग्गज खिलाड़ी यहां अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यह टूर्नामेंट इस साल ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के लिए ये चैंपियनशिप अब तक काफी सकारात्मक रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं की 48 किलो और 53 किलो वर्ग में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कांस्य पदक जीतकर देश को शुरुआती सफलता दिलाई। वहीं पुरुषों के 71 किलो वर्ग में अजीत नारायण ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय वेटलिफ्टिंग इतिहास में एक खास उपलब्धि दर्ज की। चैंपियनशिप के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड भी टूटते नजर आए। महिला 69 किलो वर्ग में ह्यान सोंग कुक ने 151 किलो क्लीन एंड जर्क के साथ नया विश्व और एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा पुरुष 88 किलो वर्ग में रायोलरो क्वांग ने 220 किलो क्लीन एंड जर्क उठाकर नया विश्व और एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कुल 387 किलो वजन उठाकर नया एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। चैंपियनशिप के छठे दिन पुरुष 110 किलो वर्ग ग्रुप बी मुकाबले पर खास नजर टिकी रही, जहां भारत की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन हरचरण सिंह ने हिस्सा लिया। मोदीनगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हरचरण सिंह से भारतीय दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं। स्नैच राउंड में हरचरण सिंह ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। पहले प्रयास में उन्होंने 150 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया और मजबूत स्क्वाट पोजीशन के साथ अपनी लिफ्ट पूरी की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 154 किलो वजन उठाया और इसमें भी सफलता हासिल की। इसके बाद तीसरे प्रयास में हरचरण सिंह ने 158 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाकर शानदार प्रदर्शन किया और स्नैच राउंड में दूसरे स्थान पर पहुंचे। इस मुकाबले में कतर के फारिस गेबर सबसे आगे रहे। उन्होंने पहले प्रयास में 151 किलो, दूसरे प्रयास में 156 किलो और तीसरे प्रयास में 160 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। इसी के साथ उन्होंने स्नैच राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं सऊदी अरब के दाली ने 153 किलो वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि क्लीन एंड जर्क राउंड में हरचरण सिंह ने 180 किलो से शुरुआत की और उसके बाद वो कोई प्रयास करते नजर नहीं आए। इसके बावजूद स्नैच राउंड में उनका प्रदर्शन भारतीय खेमे के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया। और अब बात कर लेते हैं महिलाओं के 77 किलो वर्ग में भारत की ओर से 19 वर्षीय संजना ने चुनौती पेश की। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता संजना ने प्रतियोगिता में शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया। स्नैच राउंड के पहले प्रयास में संजना ने 93 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। दूसरे प्रयास में उन्होंने 96 किलो वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इससे पूरा नहीं कर पाई। हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपनी गलती सुधारी और 96 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। स्नैच राउंड के बाद संजना दूसरे स्थान पर नजर आईं। इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी संजना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले प्रयास में उन्होंने 117 किलो वजन

सफलतापूर्वक उठाया। दूसरे प्रयास में 122 किलो वजन उठाने का प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन तीसरे और अंतिम प्रयास में संजना ने जबरदस्त वापसी करते हुए 124 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ संजना ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और ओवरऑल तीनों वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की। वहीं महिलाओं के 86 किलो वर्ग में भारत की ओर से वंशिता वर्मा ने हिस्सा लिया। स्नैच राउंड में वंशिता ने पहले प्रयास में 90 किलो वजन बेहद सहजता से उठाया। दूसरे प्रयास में वे 95 किलो वजन उठाने से चूक गईं, लेकिन तीसरे प्रयास में शानदार वापसी करते हुए 95 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। स्नैच राउंड के बाद वंशिता तीसरे स्थान पर रहीं। क्लीन एंड जर्क राउंड में वंशिता ने पहले प्रयास में 116 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। दूसरे प्रयास में वे 122 किलो वजन उठाने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने शानदार तकनीक और संतुलन दिखाते हुए 125 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाकर मुकाबले का समापन मजबूत अंदाज में किया। भारतीय युवा वेटलिफ्टर्स का ये प्रदर्शन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की तैयारियों के लिहाज से बेहद सकारात्मक माना जा रहा है।

डायमंड लीग 2026 सीजन का बहुप्रतीक्षित आगाज चीन के शंघाई में हो रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक एंड फील्ड सितारे एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। इस बार दोहा चरण के स्थगित होने के बाद शंघाई सीजन का पहला बड़ा मुकाबला बन गया है, और ऐसे में शुरुआती रेसों से ही खिलाड़ियों की तैयारी, फिटनेस और फॉर्म पर खास नजर रहने वाली है। आज पूरे दिन होने वाले मुकाबलों में पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल, महिला शॉर्ट पुट फाइनल, महिला 400 मीटर, पुरुष 110 मीटर हर्डल्स, महिला लॉन्ग जंप, महिला 3000 मीटर स्टीपल चेस, पुरुष 800 मीटर, पुरुष डिस्कस थ्रो, महिला 200 मीटर, पुरुष 3000 मीटर, पुरुष 100 मीटर और महिला 1500 मीटर जैसे कई बड़े इवेंट शामिल हैं। दुनिया भर के ओलंपिक और विश्व चैंपियन खिलाड़ी इस शुरुआती मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। स्प्रिंट इवेंट्स में शा कैरी रिचर्डसन, शेरिका जैक्सन और लेट्सिले तेबोगो जैसे बड़े नाम चर्चा में हैं। महिला 200 मीटर में तेज रफ्तार और करीबी मुकाबलों की उम्मीद की जा रही है। वहीं 300 मीटर हर्डल्स में कार्स्टेन वॉलहोम और एलिसन डॉस सैंटोस के बीच मुकाबला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फील्ड इवेंट्स में भी रोमांच कम नहीं है। पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल में सभी की निगाहें विश्व रिकॉर्ड धारक अरमैन डुप्लांटिस पर टिकी हैं, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के कारण चर्चा में बने हुए हैं। वहीं लंबी दूरी की रेसों में फेथ जैसे स्टार धाविका भी आकर्षण का केंद्र बने रहने वाली हैं। लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए सबसे अहम मुकाबला महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज रहने वाला है, जहां भारत की स्टार एथलीट पारुल चौधरी अपने 2026 सीजन की शुरुआत कर रही हैं। पारुल की यह वापसी भारतीय एथलेटिक फैंस के लिए खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में नजर आई थी, जहां वो अपनी हीट में 9वें स्थान पर रही थी। हालांकि उस प्रदर्शन के बाद भी पारुल लगातार भारतीय एथलेटिक्स में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। उन्होंने एशियाई स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 सिल्वर मेडल जीते और महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी 2 बार बेहतर किया। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 9:12 है, जो उन्होंने एशिया की प्रमुख स्टीपल चेज धाविकाओं में शामिल करता है। शंघाई की यह रेस पारुल के लिए सिर्फ सीजन की शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे साल की तैयारी का पहला बड़ा टेस्ट भी मानी जा रही है। डायमंड लीग का स्तर बेहद ऊंचा होता है, जहां कीनिया और युगांडा जैसे एथलेटिक्स ताकतों की धाविकाएं लगाकर तेज गति बनाए रखती हैं। ऐसे में पारुल के सामने सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि तकनीक और इंड्योरेंस की भी बड़ी चुनौती रहने वाली है। 3000 मीटर स्टीपल चेस को एथलेटिक्स की सबसे कठिन स्पर्धाओं में गिना जाता है। इस रेस में खिलाड़ियों को लंबी दूरी तय करने के साथ साथ लगातार बैरियर्स और वाटर जंप भी पार करने होते हैं। ऐसे में सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि हर लैप में रिदम और बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर यह तकनीकी संतुलन जीत और हार का अंतर तय करता है। डायमंड लीग सीजन खिलाड़ियों के लिए इसलिए भी अहम होता है।

के पूरे सीजन में मिले अंकों के आधार पर सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन तय होता है। ट्रैक इवेंट्स में शीर्ष खिलाड़ी ही फाइनल तक पहुंच पाते हैं, ऐसे में हर रेस और हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि पारुल चौधरी की 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस अब संपन्न हो चुकी है और उन्होंने 7वें स्थान पर फिनिश किया है। उन्होंने 9:12.84 सेकंड से पूरी की रेस और 7th रैंक, अगर क्वालिफिकेशन स्टैंडिंग की बात करें तो उनका 7वां स्थान है। वहीं क्वालिफिकेशन पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट्स हैं और इसी के साथ 7वें स्थान पर वो रही हैं। और पहले स्थान पर युगांडा की पेरुथ चेमटुआ और दूसरे स्थान पर कीनिया की फेथ हैं, वहीं तीसरे स्थान पर मारुआ हैं और पारुल चौधरी हैं 7वें स्थान पर। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन रहा। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफजल ने जीता गोल्ड मेडल। सऊदी अरब में चल रहे एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय एथलीटों ने कई पदक अपने नाम किए। पहले बात कर लेते हैं 200 मीटर जहां अनिमेश ने जीता है गोल्ड। अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ में 20.77 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 4x100 मीटर रिले में भी भारत को गोल्ड मिला। भारतीय पुरुष टीम ने 4x100 मीटर रिले में 40.49 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस में भी जीता है पदक। 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल ने 1:48.24 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 100 मीटर रेस में भारतीयों का रहा दबदबा। पुरुष की 100 मीटर दौड़ में अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने 10.44 सेकंड का समान समय निकालते हुए क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। प्रणव गुरुव 10.45 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि हर्ष राउत 10.75 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे। 3000 मीटर दौड़ में शिवाजी एम ने 8:10.13 सेकंड के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। हर्डल्स में कृषिक को भी मिला कांस्य पदक। 110 मीटर हर्डल्स में कृषिक मंजुनाथ ने 13.09 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। सऊदी ग्रैंड प्री में भारतीय एथलीटों का ये प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

टेबल पे बिछी शतरंज की बिसात और उनके मोहरे। अब बात करते हैं चेस की। सुपर चेस क्लासिक रोमानिया 2026 ग्रैंड चेस टूर का दूसरा टूर्नामेंट जो 12 मई से 24 मई तक रोमानिया के बुकारेस्ट में आयोजित किया जा रहा है। यह टूर के दो क्लासिकल टूर्नामेंट में पहला है जिनमें 10 खिलाड़ियों के बीच राउंड रॉबिन प्रारूप में मुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल टूर के 9 नियमित खिलाड़ी और एक वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रैपिड इवेंट्स की तुलना में लगभग दुगनी पुरस्कार राशि वाले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी कुल 4,75,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि के लिए मुकाबला कर रहे हैं। कल खेले गए दूसरे राउंड के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। विंसेंट कीमर, प्रज्ञानंदा रमेश बाबू और मैक्सिम वाशिए लाग्रेव ने दूसरे राउंड में जीत दर्ज कर सुपर चेस क्लासिक रोमानिया के पहले संयुक्त बढ़त हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले राउंड में जहां सभी 5 मुकाबले ड्रॉ रहे थे, वहीं शुक्रवार को खेले गए दूसरे राउंड में टूर्नामेंट के पहले 3 निर्णायक परिणाम सामने आए। विंसेंट कीमर, प्रज्ञानानंदा रमेश बाबू और मैक्सिम वाशिए लाग्रेव ने दूसरे राउंड में जीत हासिल कर संयुक्त रूप से बढ़त बना ली। उनकी जीत अलग अलग प्रकार के मुकाबलों में आई। कीमर ने रणनीतिक संघर्ष में जीत दर्ज की। वाशिए लाग्रेव ने तेज और आक्रामक नजडेफ सिसिलियन ओपनिंग में अलीरेजा फिरोजा को मात दी, जबकि प्रज्ञानानंदा ने जोवोक्रिक सिंदारिव के आक्रामक प्रयास को विफल करते हुए अपने अतिरिक्त मोरों के लाभ को जीत में बदल दिया। खास बात यह रही कि प्रज्ञानानंदा ने सिंदारोव की क्लासिकल शतरंज में अजय रहने की लंबी श्रृंखला को समाप्त कर दिया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता सिंदारोव लगातार 53 क्लासिकल मुकाबलों में हार से बचते रहे थे और सितंबर 2025 में ग्रैंड स्विस में इवान चेप्रिनोव के खिलाफ हार के बाद उन्होंने केवल जीत या ड्रॉ ही दर्ज

0: किए थे। दोनों 20 वर्षीय खिलाड़ियों के बीच आमने सामने मुक्के मुकाबलों में सिंदारोव ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के अपने ऐतिहासिक अभियान के दौरान प्रज्ञानानंदा को दो बार हराया था, लेकिन इस बार रोमेनियाई टूर्नामेंट के मौजूदा चैंपियन प्रज्ञानानंदा ने बाजी मार ली। और इसी श्रृंखला में अंक तालिका में विंसेंट कीमर, मैक्सिम वाशिए लाग्रेव और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने 1.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। आज खेले जाने वाले मुकाबलों में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का मुकाबला जावोखिर सिंदारोव से होगा। अब बात करते हैं हॉकी की। 29 मई से 6 जून तक जापान में खेले जाने वाले एशियन अंडर 18 मेन एंड वुमेन हॉकी मुकाबले की तैयारी के मद्देनजर भारत की अंडर 18 पुरुष और महिला टीमों के शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 टीमों के साथ मुकाबले खेले गए। भारत की पुरुष टीम अपने पहले मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ पर रुक गई। मेजबान टीम के लिए आकाशदीप ने 11वें और दीपक प्रकाश टोप्पो ने 45वें मिनट में गोल किए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेट जॉनस्टन ने 2रे मिनट में गोल करके शुरुआती बढ़त दिलाई थी, जबकि फ्रैंकी बेकर ने 60वें मिनट में अंतिम गोल कर मुकाबला बराबरी पर खत्म कराया और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। महिला टीम के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 महिला टीम ने 4-3 से जीत दर्ज की। महिला टीम का दूसरा मुकाबला इस श्रृंखला में रविवार 17 मई को शाम 5 बजे खेला जाएगा। वहीं पुरुष टीम का मुकाबला 17 मई को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पुरुष और महिला दोनों टीमों के शेष मुकाबले 18 और 20 मई को खेले जाएंगे। एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप से पहले प्रत्येक टीम में 24 खिलाड़ियों की पहचान की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव के लिए तैयार दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबले सिर्फ अभ्यास मैच नहीं, बल्कि यह मैच दबाव में खेलने की क्षमता और रणनीतिक अनुशासन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है।
1: और अब जाते जाते आपसे बात कर लेते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की, जो अंबेडकर स्टेडियम में खेली जा रही है। आज खेले गए मुकाबलों में पहला मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ, जहां वाटिका एफसी का सामना फ्रेंच यूनाइटेड एफसी से हुआ। करीब 92:45 तक चले इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच तेज और आक्रामक फुटबॉल देखने को मिला और फ्रेंच यूनाइटेड एफसी ने मुकाबला 4-2 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दिन का दूसरा मुकाबला शाम 4:30 बजे से शुरू हुआ, जहां सुदेवा डेली एफसी और डेली एफसी आमने सामने हैं। और समय अब हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं प्रेरणा शर्मा
0: और मैं वसीम अहमद आपका धन्यवाद करते हैं और अपने प्रोग्राम प्रोडक्शन सुपरवाइजर शाहनवाज खान की ओर से हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफेक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
2: Netherlands ke samaj aur yahan ki economy mein jo contribute kar rahe hain us par हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
1: Last night, when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। इस अंक में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित व्याख्यान एवं पुस्तक लोकार्पण। 13 मई बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की MSP का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, उसी कड़ी में कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। किसानों के लिए खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। अगर हम कंपेयर करें 2014-14 के कंपैरिजन से और 14-26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइन नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है, 2004-14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2014-2026 वाला NDA 1, NDA 2, NDA 3, ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है, 4 गुना ज्यादा किसानों को NDA 1, NDA 2 और NDA 3 के दौरान दिया गया है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक निर्णय लिया गया है, उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। कोल गैसिफिकेशन, भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करके, क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 degree हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं, तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से LPG का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं, जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ा एक एरिया हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को PPP के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से PPP का प्रोसेस रन किया गया है, कैबिनेट में उसका JV बनाने का अप्रूवल मिला, कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस PPP में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है, कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीजें।
0: 9 मई शनिवार को मंडी हाउस स्थित संगीत नाटक अकादमी द्वारा मेघदूत थिएटर में रविन्द्र प्रणति शीर्षक के अंतर्गत सेमिनार प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस संगीत वीक्षण प्रदर्शन और संबद्ध कलाओं पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के चुनिंदा लेखों का द्विभाषी संग्रह पुस्तकों का लोकार्पण एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान हेतु डॉक्टर उदय नारायण सिंह पूर्व प्रति कुलपति विश्व भारती शांति निकेतन को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने व्याख्यान में डॉक्टर उदय नारायण सिंह ने कहा,
2: विश्व भारती के लिए उनको सब कुछ करना मंजूर था। सुलेखा इंक के लिए उन्होंने टू गेट मनी टू स्पेंड मनी ऑन शांति निकेतन, ये अजीब एक जुनून उनके भीतर में था जिसके लिए उन्होंने वो कर पाए। ब्रेनन कंपनी के लिए उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा, ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि उन्होंने फिल्म की स्क्रीन प्ले भी लिखी। और सबसे मजेदार बात, 67 साल की उम्र में उनको लगी कि अब हम पेंटिंग करें, तो 67 साल से 80 साल के भीतर में उन्होंने 2600 पेंटिंग दुनिया के 20 देशों में, भारत सरकार की ओर से हमने तय किया कि उनका पेंटिंग का एग्जीबिशन करेंगे, तो उनके पेंटिंग 80 पेंटिंग हमने चूज किया। नेशनल एक कमेटी बनी है जिसके तहत हमने 80 पेंटिंग केवल मात्र उनका चुना। केवल उनकी इंश्योरेंस के लिए सरकार को 175 करोड़ रुपए देना पड़ा। क्या वैल्यूएशन उसकी हुई होगी उन पेंटिंग्स की, ऐसी ऐसी चीजें टैगोर के बारे में बता सकते हैं जो लोग शांति निकेतन के साथ जिनका संबंध रहा हुआ है। 10 साल में वहां था, हमको बहुत आश्चर्य लगता है। कुछ ऐसा व्यक्ति जो एक किसी आवास में

0: खुश नहीं है। तो छह अलग अलग मकान हैं उनके, छह कारणों से छह मकान अलग अलग बने हैं। एक मकान ऐसा भी जो कि संपूर्ण मिट्टी का मृतिका का बना हुआ है, जिसमें कि गांधी जी आके रहना पसंद करते थे, शामली उसका नाम है। तो हर एक मकान को जब उन्होंने रिस्टोर किया ऑन बिहाफ ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री, तो हमको पता चला कि किस तरह से उन्होंने इसकी डिजाइन की है। जो मेन बिल्डिंग है, उनका जो मेन आवास है, उसके पीछे जापानीज गार्डन है।
1: अब प्रस्तुत है इस आयोजन में सांगीतिक प्रस्तुतिकरण की एक झलक।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाज़िर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद का लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार, जिसका कि आपको आज के दिन विशेष इंतजार रहता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 16 मई है और आज मनाया जाता है सिक्किम दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम दिवस की। बहन भाइयों, सिक्किम 16 मई यानी कि आज ही के दिन 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था।

0: से खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की शांतिपूर्ण सुंदरता और वहाँ के लोगों का आतिथ्य भावना, ये दोनों ही इस राज्य को एक अनूठा स्थान प्रदान करते हैं। सिक्किम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये देश का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है, जो न केवल भारतीय कृषि के क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की तरह सिक्किम त्रिशक्ति के रूप में आकांक्षा, पुनः जागृति और विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला राज्य है। सिक्किम का दृढ़ संकल्प, समर्पण और उसकी प्रगति की राह ने इसे एक सफल राज्य बनाया है। चाहे वो सिक्किम की प्रकृति के लिए प्रतिबद्धता हो, या यहाँ के अतिथि सत्कार की संस्कृति, या फिर प्रतिबद्ध कार्यबल और रचनात्मक उद्यमिता की भावना, सिक्किम ने हर क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है।
0: बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सिक्किम की अभिनव नीतियां प्रशंसनीय हैं, जिसमें प्रत्येक नवजात शिशु के लिए 180 पेड़ लगाने की पहल भी शामिल है। दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा समर्थित इस तरह की नीतियां सिक्किम को अलग पहचान दिलाती हैं, और सिक्किम ने हमेशा राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है, चाहे वो आर्थिक विकास हो या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उसकी पहल। सिक्किम देश का सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाला राज्य है, और ये भारत के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन चुका है।
1: बिल्कुल, सिक्किम हमें बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों की याद दिलाता है, जो न केवल यहाँ के पर्यावरण को अनूठा बनाते हैं, बल्कि ये हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो नीलम बहन, ये तो बात रही सिक्किम दिवस की, और देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है, तो अपने बहन भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये दिन 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। लेजर का पहला सफल संचालन इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने किया था। ये दिन कला, संस्कृति, विज्ञान, सतत विकास और शिक्षा में प्रकाश की भूमिका की याद दिलाता है। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम साहब।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: खुर्जा, उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
1: अरोड़ा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज योगेश कुमार जी को सुनना चाहेंगे।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: जितेंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
1: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज सुनना चाहेंगे जी योगेश कुमार को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: नाम बोलूंगा जी।
1: जी,
3: लकी, संजना, अंशका, टिंकल, कन्नू, प्राची, भूरी, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माता जी श्रीमती निर्मला देवी, गांव करकोरा से जी गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर सिंह बैद जी।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं जगदीश सिंगाड़िया बोल रहा हूँ, डाणा निर्सारण, जिला भिवानी जी।
1: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: योगेश कुमार को सुना देना जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के भी नाम है जी।
1: जी बोल दीजिए।
4: राजवीर सिंगाड़िया, सतीश सिंगाड़िया, ऋतिक सिंगाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, सोजी बाबू नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं डॉक्टर सितारे।
1: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: योगेश कुमार को।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: मेरे दो मित्र हैं
1: जी, नाम बोल दीजिए।
5: पहले बेटा है उभय सनवर, दूसरे बेटा है सादा बनवर, बेटा है अंबर साई। सब लोग आपको प्रणाम बोल रहे हैं।
1: चलिए, हमारा भी नमस्कार बोलिएगा। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं गांव पनियारचक से विनोद बोल रहा हूँ जी।
1: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: योगेश कुमार की सुनाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के नाम जी?
1: जी,
6: साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: मैं सोनू गांव ढोर जिला बंदरगाह बोल रहा हूँ जी।
1: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: योगेश कुमार को सुना देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
7: देख नाम है
1: जी,
7: मन बाबा से फोटो वोटा। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?

0: महेंद्र सिंह बना विकासपुरी गांव बरहाट बुलशहर।
1: महेंद्र भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: योगेश कुमार को सुनवा देना।
1: जरूर सुनवाएंगे।
0: और मेरे साथ ही आरती भारती स्वाति मिसेज करते दी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर योगेश कुमार से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: हवलदार जयप्रकाश ग्राम पाचौता बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: शिवानी गोला को सुनवा दीजिए साहब। नाम नोट कर लो।
0: जी कराएं।
1: करण खुशी नंदिनी राधिका प्रतिज्ञा। राम राम साहब।
0: राम राम जी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सत्यदेव सागर ग्राम सरवन्ना थाना चतारी जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: शिवानी गोला की आवाजों सुनवा दो कोई रागिनी भजन।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: तो एक नाम लेना चाहूंगा अपन पत्नी संतोष देवी बेटा शिवदत्त सागर सुधीर सागर अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: शिवानी गोला को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: तीन चार नाम हो रहा जी,
0: बोल दीजिए।
2: महेंद्र जाखड़, तेजपाल जाखड़, राजवीर जाखड़, ओमवीर जाखड़ जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, मैं नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: पानी गोला की गाई हुई कोई रागनी सुनवा देना, कुछ नाम लेने चाहूँगा
0: जी।
3: सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, प्रत्यक्ष, हमारी बुआ जी है राजवीरी, निष्कर्ष और खुशियालपुर से पंडित रतन लाल शेर सिंह मोदी, मंडोना जाफराबाद से मुंशी जी और राजेंद्र सिंह जी, लावठी से पिंटू सैनी और शेर सिंह हेड़ी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हाँ जी नमस्कार साहब।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं रामचंद्र गांव डोला बागपत से बोल रहा हूँ सर।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: शिवानी है जी, शिवानी। तो एक नाम दूंगा जी,
0: बोल दीजिए।
4: मेरी लड़की है छाया, एवती है प्रिया, उसकी लड़की है बेटा है बड़े वाला प्रदीप, पुत्र वो मंजू, बेटा पुत्र जो है रोहन, पुत्र नंदिता, सम्मान। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौलपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: खजान भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: शिवानी गोला को अच्छी से रागनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: खजान सिंह, रामबती, चंद्रकांत, अजय कुमार, मोहन, शिवानी, आरव।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार। इस राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: शिवानी गोला को सुनना चाहूंगा। बनवारी लाल यादव जी, गामड़ी वाले, शमशेर जी द्वारका से, राहुल इशार से जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं हरि सिंह सैनी, पसुआ नगला, जिला अमरोहा, यूपी से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: शिवानी गोला। और कुछ नाम है जी? देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, पोती पोता, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन और भांजा मेरा गोविंद, मनोज, हरिचंद और संजीव ज्योति और पूरे गांव की फरमाइश। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर शिवानी गोला से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम भाई साहब।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव लोहारा डाकखाना मीनगर सराय जिला बागपतन मिस्त्री राकेश कुमार बोल रहा जी।
0: राकेश जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: उपेंद्र को सुनवा दो जी। दो
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम है जी और
0: बोल दीजिए।
1: छोटी लड़की है अन्नू, बड़ी लड़की है सालू, घरवाली है शामू। मेरे एक दोस्त है जी नरेंद्र यादव सराय से।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सुरेंद्र राणा को सुना देना जी, और आप सभी स्वस्थ रहे, गर्मी से बचे रहे।
0: चलिए, आप भी गर्मी से अपना बचाव करते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जी मंटू शर्मा, गांव सेड़ा, तहसील भादरा, जिला मनगढ़, राजस्थान से बोला हूँ सर।
0: मंटू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: सर उपेंद्र राणा की आवाज में सुनना चाहते हैं।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: अशोक कुमार शर्मा, गिदावली खुर्द बुलंदशहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आश्रम जी उपेंद्र राणा को नाम है। यीशु, नीरज, लव शर्मा, देव शर्मा, गर्म शर्मा, गर्मी शर्मा, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: भाई जी राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: उपेंद्र राणा।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: नाम लालू
0: जी।
5: मेरे भाई ने ज्ञान बुद्धि आनंदी प्रधान जी ज्ञान राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो नमस्कार शशि भाई।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं जी गांव डोंगरा है जिला नंद्रा हरियाणा से यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज हमारे कलाकार को सुनाओ जी उपेंद्र राणा जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम भी है जी।
0: जी
6: कौशल्या देवी है जी, जागृति शर्मा, रेखा शर्मा और सुहानी शर्मा है जी।

0: भवेश शर्मा है और यह शर्मा।
1: हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मोहल्ला दौज वाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
1: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज हमें उपेंद्र सिंह राणा जी की आवाज में अच्छी राग में सुनवा दो।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: और हमारे परिवार के नाम नोट कर लो सर जी। पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला है और अनवर बिहारी जी हैं। राम राम जी।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये उपेंद्र राणा जी को सुनवाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: राजेंद्र जाटव मान की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
1: कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: उपेंद्र राणा।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी, असालत नगर, मुराद नगर से है, नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, प्रशांत जाटव, निशांत जाटव, शिवानी जाटव और आबिदपुर मानकी से है, महेंद्र, शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर उपेंद्र राणा से ये रागनी। किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से

0: तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हम अपने किसान बहन भाइयों से बार बार कहते हैं कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन करें, कोई भी अन्य जो उद्यम है वो कर सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती रहे और जो खेती में उतार चढ़ाव आता है उससे आप बचे रहे। लेकिन आज हम एक और तकनीक के बारे में अपने किसान बहन भाइयों को बताना चाहेंगे और वो तकनीक है, सिस्टम है कृषि वानिकी। अब हमारे किसान बहन भाई सोच रहे होंगे कि कृषि वानिकी क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है जो भूमि है जहाँ पर आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं और साथ साथ अगर आप अपने खेतों पर पेड़ भी लगा देते हैं तो ये सब मिलकर के कृषि वानिकी बन जाता है, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और इस प्रणाली से उत्पादकता, लाभप्रदता और पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा रहता है, जिससे आप किसान भाइयों को कम लागत में अधिक आय और पर्यावरणीय सुरक्षा मिलती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और अब बात करते हैं कृषि वानिकी की विशेषताएं और लाभ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आय में वृद्धि के लाभ की। किसान भाई फसलों के साथ साथ इमारती लकड़ी, फल और ईंधन प्राप्त करके अपनी आय में विविधता लाते हैं और इसके साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जैविक पदार्थ बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा बनाए रखती हैं, जिससे मृदा का संरक्षण होता है और साथ ही ये कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने

0: और जल स्तर सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक हैं और ये प्रणाली लकड़ी की मांग को पूरा करने के साथ साथ चारे की आपूर्ति भी करती है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, तो हमारे किसान बहन भाई और अधिक जानना चाहेंगे कृषि वानिकी के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा विषय है कृषि वानिकी का, जिसका उपयोग करके हमारे किसान भाई लाभ ही लाभ ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक बातचीत, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का योगदान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SD सिंह और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। साथियों, हमारे किसान भाइयों का, राष्ट्र का समग्र विकास हो, हमारी सरकार पूर्णतः प्रयासरत है। हम जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हमें अपनी भूमि को भी स्वस्थ रखना है और वन संपदा को भी बचा कर रखना है। ऐसे में कृषि वानिकी किसान भाइयों के लिए बेहद लाभप्रद है। कम भूमि हो या ज्यादा, कृषि वानिकी में एक ही भूमि पर आप फसल के साथ साथ पेड़ लगाकर कई गुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री आखिर क्या है और कैसे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। और आज का जो हमारा विषय है साथियों, वो है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। हमारे साथ हैं डॉक्टर SD सिंह, पूर्व मुख्य अधिकारी दिल्ली पर्यटन विभाग। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कृषि वानिकी क्या है। जी
3: देखिए, एक खेत है, यदि उसमें हम लोग खेती लगातार रहते रहे और यदि उनमें पेड़ों को उस और जोड़ दें तो वो कृषि वानिकी हो जाती है। बस ये कि खेती में हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि क्या ये केवल फसलें ही हैं? नहीं, फसलों के साथ में जो हमारे पालतू पशु हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। तो ये है, कृषि के साथ में यदि पालतू पशु लेते हैं और साथ में पेड़ जरूर उसमें जोड़ देते हैं, तो ये किसान का अपना एक रूप है उस खेती को, कृषि की भूमि को उपयोग करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतने हमारी भूमि की जो मृदा है वो भी मजबूत बनेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो हमारी भूमि के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसका कितना महत्व होता
3: देखिए,
2: है?
3: सही बात यह है कि जब भी आप खेती लगातार एक खेत से लेते रहते हैं, आप थोड़े से पोषक तत्व डाल देते हैं, तो होता क्या है कि सारे पोषक तत्व जो है वो तो नहीं हम ऐड करते, वो मिट्टी में यदि है तो वो ही हम ले सकते हैं फसलों के लिए। अब यदि हम साथ में पेड़ लगा देते हैं और पेड़ ऐसे जो कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सर हैं, कोई बहुत से शीशम वगैरह के पेड़ हैं या इस प्रकार के पेड़ हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, जिससे पत्ते जो हैं वो नीचे जाते हैं, तो वो जो पत्ते या इसकी जो पेड़ों की जो और चीजें हैं वो जब खेत में जाती हैं तो उससे और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उसमें ऐड होते हैं, जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो भी ऐड होते हैं, तो ओवरऑल इसकी जो उपजाऊपन जो है भूमि का वो बढ़ जाता है। एक तो ये है,
2: एक खाद के रूप में,
3: एक खाद के रूप में हो जाता है। दूसरा, और खाद और वो भी पूरे खाद पूरी, मतलब ये नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम केवल होगा। दूसरा देखिए, सही बात यह है कि जब हम पेड़ लगा देते हैं तो इसकी जड़ें थोड़ी नीचे चली जाती हैं, तो नीचे जाने से क्या होता है, यदि मिट्टी भुरभुरी है या सख्त है तो वो खुल जाती है, और यदि मिट्टी रेतीली है तो वो टाइट हो जाती है, तो जो पानी का जो बहाव है, यदि वो रेतली होगी तो पानी जो है जल्दी जो सूखता है तो वो कम जल्दी सूखेगा, और यदि बिल्कुल गोड़ी मिट्टी या क्ले मिट्टी होगी या सख्त मिट्टी होगी तो उसमें छेद जब हो जाएंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करती हैं। और तीसरा, सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट नीचे की लेयर में है या पानी नीचे की लेयर में है उनको रिसाइकल करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक सस्टेनेबल सिस्टम है इकोलॉजी का, या जिसे पारिस्थिति का बोलते हैं हम लोग, कि उसमें फसल को लाभ हो रहा है और उपजाऊपन भी हो रहा है और पानी जो है वो संरक्षित भी हो रहा है,
2: यानी भूमि की नमी भी पूरी बनी रहेगी।
3: बिल्कुल, नमी भी पूरी बनी रहेगी।
2: तो डॉक्टर साहब, अगर किसान चाहता है कि फसल भी उगाए और पेड़ भी लगाए तो कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए उसे?
3: देखिए, एक चीज मैं आपको सही बताता हूँ, वैसे तो देखिए कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ पेड़ जो हैं वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और कृषि वानिकी में, क्योंकि कृषि जो भूमि है उसके लिए दो पार्ट हैं उसके, एक तो उसको रोजी जो रोटी है वो मिलती रहे और साथ में जो कुछ और लगाए तो उससे उसको इनकम भी हो। हम ऐसे पेड़ लगा दें कभी कई बार कि उनका फल बहुत लेट आए या उनकी लकड़ी है वो बहुत लेट मिले, तो उससे क्या है किसान जो है उसको फायदा नहीं होता है, इसलिए बहुत से ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएं और उसको अपनी जो कमाई है वो 3 से 5 साल या 8 साल या 10 साल से अंदर अंदर में उसको मिलना शुरू हो जाए, एक तो ये। दूसरा ये जरूरी है कि लकड़ी से ही नहीं, जो पेड़ हैं उनमें से और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कि उसको आमदनी हो सकती है। जैसे बहुत से पेड़ों के फूल बहुत अच्छे होते हैं, फल बहुत अच्छे होते हैं, या बीज बहुत अच्छे होते हैं, या पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, या तने बहुत अच्छे, उससे जो उसको इनकम हो सकती है वो भी उन पेड़ों से मिल सकती है। वैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे सहजन, सहजन जिसे मोरिंगा बोलते हैं, उसको आप देखेंगे कि पेड़ का पेड़ तो है ही है, परंतु पेड़ से पत्ते, उसकी टहनी, उसके जो पॉड है, उसकी जो फली है, वो कितने उपयोगी होती है हमारी सेहत के लिए। ऐसे ही नीम, नीम के बारे में ये बोला जाता है कि नीम हकीम खतरा जान, मतलब कभी भी नीम यदि आपके सामने है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसके पत्ते, उसके दातुन, उसके बीज, और नीम के देखिए बीजों से जो तेल निकलता है, एक सरकार ने आजकल यूरिया के लिए बिल्कुल कह दिया गया कि अकेला यूरिया नहीं होगा, नीम कोटेड यूरिया होगा। यदि नीम के बीज से जो तेल निकलता है यदि उससे कोटिंग करेंगे तभी आप बाहर बेच सकते हैं यूरिया को, नहीं तो नहीं बेच सकते और किसान उसको उपयोग भी नहीं करेंगे। तो एक कितना बड़ा फायदा है नीम को लगाने,
2: बहुत फायदा है। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि नीम से छन छन कर जो हवा वायु हमें मिलती है बिल्कुल शुद्ध होती है,
3: शुद्ध हवा हो जाती है। ऐसे ही चंदन, अगर वुड, चंदन देखिए, चंदन का जो तेल या चंदन का जो रस होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, सबसे महंगी चीज है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के हमारे इलाके हैं उत्तर पूर्व के, वहां पर सबसे ज्यादा अगरवुड होता है जो कि कृषि वानिकी के लिए बहुत। और ये देखिए पॉपुलर और यूकलिप्टस, ये तो दो ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने लोगों को आमदनी दी है और आमदनी के साथ साथ में जो हमारे जंगल बचाए हैं। अदरवाइज देखिए ये दो पेड़ नहीं होते तो ये जो हम लोग पल्प और पेपर के लिए जो हम लकड़ी लेते हैं ये हम जंगल काट के लेते और इनसे हमें जो लकड़ी मिल रही है तो अब हम लोगों की जरूरत जो जंगल से पूरी होनी थी वो यहां से पूरी हो जा रही है। और नेचुरल जो फॉरेस्ट है, जो प्राकृतिक वन है, वो हमारे बचे हुए हैं जो कि हमारी धरोहर है जो कि इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैंगो, आम, बहुत सी जगह में बीजू आम जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जानते ही हैं।
2: अगर दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहाँ नारियल की जो लाइनें लगाई जाती हैं
3: बड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। कोकोनट है ये, देखिए एक चीज बताते हैं कोकोनट से कितना फायदा होता है। कोस्टल एरिया में वो हमें फ्लड से बचाता है, नारियल हमें देता है, तेल जो है उसका हमारे कितना हमारे काम आता है, तो ये कितनी चीजें उससे हमें फायदे में मिलती है।
2: तो डॉक्टर साहब अगर कुटीर एवं लघु उद्योगों की हम बात करते हैं, वो किसान जो कुटीर और लघु उद्योगों को अपना रहे हैं या महिलाएं अपना रही हैं, उनके लिए कितना रोजगार का एक अवसर मिलता है?
3: फसल तो हमारी जो लगाते हैं हम फूड ग्रेन्स या हमारी गेहूं वगैरह या दालें या तिलहन, ये तो अलग हैं, परंतु यदि आप पेड़ ऐड कर देते हो तो पेड़ से हमारे एक तो छोटी लकड़ी आपको मिलना शुरू हो जाएगी तो आप छोटी लकड़ी के औजार बहुत बना सकते हैं अपने घर के लिए। दूसरा जो इसके पत्ते हैं, जैसे मैं आपको सही बताता हूँ नीम के पत्तों की अभी बात करें, नीम की खली तो एक है ही है, नीम अमृत, बीज अमृत, ये नीम के पत्तों से बनता है। सहजन, ये नीम के पत्तों से जो है ये आपके पाउडर बनता है, कितना फायदा होता है। चंदन कितना फायदा होता है, इसकी छोटी सी बार कितनी काम आती है हमारी। जो बांस है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बांस जो है आजकल हम लोग कभी भी ये बोलते हैं कि बांस एक ऐसी चीज है आप लगाते रहिए काटते रहिए, लगानी नहीं है जो आप दोबारा, एक बार लगा दिया आप काटना इस प्रकार से रखिए कि वो जहां से काटा है वो चौथे साल में दोबारा फिर तैयार हो जाएगा आपको बांस। आप ऐसे रोटेशन बना सकते हैं कि 4 भागों में उस भाग को पूरे को बांट दीजिए, एक आज काटिए, एक अगले साल काटिए, एक अगले साल काटिए, और 5वें साल में फिर वो जो पहले साल वाला काटा हुआ वहां पर आप दोबारा आ सकते।
2: तो डॉक्टर साहब अगर किसान भाई कोई फसल भी बो रहा है और पेड़ भी लगाना चाहता है तो जलवायु और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखते हुए करना होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग कई बार ये बोलते हैं थोड़ा सा कि भाई आपके पास में लगभग कृषि जो भूमि है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है और 140 मिलियन हेक्टेयर में हम खाद्य पदार्थ उगाएं या पेड़ लगाएं। देखिए कई बहुत सी जगह में हमारी जो मिट्टी है उसको हम लगातार यदि कुछ लेते रहते हैं तो उपज, चाहे जितना मर्जी खाद डालें, उपज उसकी कम होती जाती है।
2: डॉक्टर साहब कई जगह देखा गया है कि मिट्टी अम्लीय होती है,
3: जी जी,
2: तो क्या वहां पर हमारे किसान कर सकते हैं उपयोग?
3: बिल्कुल, क्यों, बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो एसिडिक सॉइल में भी लग सकते हैं और बेसिक सॉइल में भी लग सकते हैं। पेड़ ही एक ऐसी चीज है जिनकी की रेंज थोड़ी सी लंबी होती है, वो एसिडिक सॉइल में भी 4-5 pH से लेकर और 9-10 pH तक जो है हम पेड़ों को लगाते हैं और उससे क्या होता है हमारी जो मिट्टी है उसकी जो एसिडिटी होती है, पीएच होती है, वो लगभग नॉर्मल होने शुरू हो जाती है, तो ये उनको फायदा होता है और पेड़ बिल्कुल लग सकते हैं। और बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जैसे यूकलिप्टस है, कोस्टल एरिया जहाँ की बेसिक सॉइल वहां भी हो रहे हैं और पहाड़ जो है वहां पर एसिडिक सॉइल होती है वहां भी हो रहे हैं, तो देखिए कितनी बड़ी रेंज है। आप अपने आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है उससे एसिडिटी अपने आप बढ़ने लगती है और इसी प्रकार से जो पहाड़ में हम लगाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं तो उसकी भी एसिडिटी है वो कम होने लगती है।
2: तो डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि आपने पेड़ भी लगा दिया और फसल भी बो दी, तो उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे
3: जी,
2: करना है?
3: बहुत जरूरी है। देखिए सही बात है कि फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। फसल तो हमारा देखिए खाद्य पदार्थ है, वो हमें पहले चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। हमें पेड़ ऐसे चुनने हैं जिनका कम से कम यह है कि पतझड़ जो है सर्दियों में हो जाए, ताकि धूप जो है हमारी खेती को मिले। एक तो ये जरूरी है। दूसरा, एवरग्रीन को

0: हम थोड़ा सा इस प्रकार से अवॉइड करते हैं, ऐसे मतलब जो कि परमानेंट हरे रहते हैं ऐसे पेड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो वहां पर लगाए जा सकते हैं जहां पर हम खेती ना लगाकर वहां पर एनिमल हस्बेंड्री लगा रहे हैं या पशुओं को पाल रहे हैं या घास हम लगा रहे हैं। देखिए जो कृषि वानिकी है वो कृषि में सिल्वी कल्चर और सिल्वी पास्चर, सिल्वी पास्चर का मतलब है पेड़ और घास साथ में उगाना, जरूरी नहीं है कि खेती ही हो केवल, बहुत सी जगह में घास उगाते हैं
1: चारे के रूप में,
0: चारे के रूप में। तो यदि वहां पर परमानेंट ग्रीन कवर का भी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई एवरग्रीन हम लगा दें तो कोई मुश्किल नहीं, परंतु ये बहुत जरूरी है कि पतझड़ वाले पेड़ जो है हमेशा पसंद किए जाते हैं। जो आपने दूसरा कहा कि भाई हम पेड़ों को किस प्रकार से उगाएं, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि टहनी यदि बाहर जा रही है बहुत ज्यादा और वो फसल को नुकसान करेगी, तो हमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग जिसे बोलते हैं ना कि छात तराशी इस प्रकार से करनी है,
1: बिल्कुल कटाई छटाई,
0: वो कटाई छटाई जो इस प्रकार से करनी है कि उसकी जो धूप है उसका जो फैलाव है वो हमारी फसल को रोके ना या फसल की बढ़त को ना रोके।
1: तो डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी के जो वृक्ष होते हैं वो तेज हवा को रोकने और सहयोगी फसल को धूप से बचाने के लिए उपयोगी होते हैं, किस तरीके से इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें?
0: पेड़ का हमारे लगाने का तरीका जो होता है एक तो वो, और पेड़ से जो मुख्य हमें फायदा मिलना चाहिए फसलों को, ये बहुत जरूरी है। हम लोग एक्चुअली क्या है जो आपने बताया ये इसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक का मतलब होता है कि जो किनारा है खेत का या काफी दूरी तक थोड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने और एक या दो लाइनों में लगाने, जिससे कि तेज हवा आए तो वहां पर उनसे टकराए, उसमें डस्ट है, उसमें और पॉल्यूटेंट्स है, कुछ भी है उसमें प्रदूषण के कारक हैं, तो वो वहां पर टकरा कर तेज हवा में जो बह जाते हैं वो वहां पर रुकेंगे, और जो हवा आगे जाएगी तो जो वेलोसिटी है उसकी, जो हवा की तेजगी है वो वहां पर कम हो जाएगी, तो जो आगे डेसिकेशन उसका सूखापन है, सूखापन का जो आगे फसल को नुकसान होता है वो कम हो जाएगा, डस्ट जो है वहीं पर रुक जाएगा, जो आगे हवा जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा आपने जो या शेल्टर बेल्ट्स उनको बोलते हैं कि शेड कैसे मिले उन, हम क्या करते हैं कि खेत में इस प्रकार से पेड़ लगाते हैं 5 से 10 मीटर तक पेड़ लगा देते हैं हर जगह, तो थोड़ी थोड़ी दूरी तक जब पेड़ लगाते हैं तो उनको अपने आप में छाया मिलती है और वो जो धूप से उनको नुकसान फसल को होगा वो कम हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, अब एक सवाल मेरा और है, जो किसान भाई कृषि वानिकी करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, क्या उनके लिए सरकारी मदद मिल सकती है?
0: बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारी जिसमें कि फायदा मिलता है, और आजकल कृषि वानिकी की भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय में ही स्कीम शुरू हो गई है वो है हमारी सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, और उसमें हमें बहुत सी नर्सरी लगाने के लिए जो किसानों के लिए भी, और यदि कोई विभाग किसानों के लिए नर्सरी कोई पौधशाला कोई तैयार करता है उसके लिए बिल्कुल पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उससे जो किसानों को पौध चाहिए उसी प्रकार की पौध जो है वो उनके पौधशालाओं में तैयार की जा सकती है, और उसके लिए बड़ा एक अच्छा साधन है कि जिला कृषि अधिकारी के साथ में, जिला वन अधिकारी के साथ में, जिला उद्यान अधिकारी के साथ में कहीं पर भी यदि कोई कांटेक्ट करता है तो इसका पूरा फायदा उसको जो है मिल सकता है, और वो सरकार के पास में उसका पैसा जो है वो भारत सरकार से राज्य सरकार में जाता है, राज्य सरकार अपना भी सहयोग देती है, और वो बहुत जगह में आधा आधा 50-50% भारत सरकार देती है, 50% जो राज्य सरकार देती है, ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में ही सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री है। और एक इसका जो मेन पार्ट है कि यदि सारे यूनियन टेरिटरी हैं तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी में 100% भारत सरकार से मिलता है, जो पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पर 90 और 10 का मिलता है सहयोग, और जो बाकी है वहां 60-40 का जो सहयोग मिलता है बाकी राज्य में, तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए पौध उगाने का साधन है। और खेत घरों के आसपास पौधे नर्सरी हम पौध तैयार करवा सकते हैं क्लस्टर बेस पर गांव के साथ में या ब्लॉक में, और वो पौधे जो है लोगों को मिल सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे युवा साथी हैं क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान है?
0: बिल्कुल, आजकल बहुत सी कृषि विद्यालय जो हैं वो या कृषि विकास केंद्र जो है KVK जिनको बोलते हैं वहां पर रेगुलर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के लिए भी भारत सरकार से जो है उसमें भी फंड मिलता है, और उसमें बिल्कुल वो सहयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है, इवन प्रोत्साहन जरूर है इसमें।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न ये रहेगा कि जो किसान भाई कृषि वानिकी को अपना रहे हैं, फसल भी उगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, तो क्या उनको आप टिप्पणी देना चाहेंगे?
0: देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि हम दो का सतत विकास यदि शब्द बोलेंगे, और एक जिसे बोलते हैं कि पर्यावरण संतुलन जो इक्विलिब्रियम है पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण संतुलन हम बिठाते, तो पेड़ों को जरूर अपने आसपास में रखें। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है किसी ने कि 3, 30 और 300 अपने नजदीक में 3 पेड़ देखूं, और 30% यदि ग्रीनरी हो, और मेरे नजदीक में 300 मीटर दूरी पर एक छोटा सा फॉरेस्ट हो, छोटा सा वन हो, तो आप इकोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप बिल्कुल नेचर के पास,
1: संतुलित
0: संतुलित आपकी जिंदगी लगेगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने आज, पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व और विस्तार से बताया, और मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत को सुनकर हमारे सभी किसान भाई बहनों को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान बहन

0: भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SD सिंह और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा।
1: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं राजेश कुमार अट्टा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश और कलाकार थे राजेश कुमार अट्टा।
1: नीलम बहन, आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने हर किसी की जो जिंदगी है बड़ी आसान बना दी है, अगर वो इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। हर क्षेत्र में आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के ऐप आ गए हैं, चाहे हमें बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, या गैस लानी हो, अपने किसी तरह के अन्य काम हो, बैंक का काम हो, पैसे निकालने हो, जमा करने हो, सारा का सारा काम आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो हमारे जो किसान बहन भाई हैं, हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो कैसे पीछे रह सकता है? तो इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी योजना हमारे किसान बहन भाइयों के लिए चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है ई नाम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि फोन के जरिए हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो इसी तरह से हमारे किसान बहन भाई भी अपनी जो फसल है उसको इस पोर्टल के माध्यम से कहीं पर भी बेच सकते हैं। अब ये उनके सामने समस्या नहीं रहेगी कि हमारे जो आसपास बाजार है वहां पर भाव कम मिल रहा है तो हमें कम में ही बेचना है। अब आपको ई नाम पोर्टल पर जाना है और देखना है कि कहां पर आपकी फसल का अधिक दाम है, तो वहां पर आप इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से बेच सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं।
0: बिल्कुल शशि भाई, ई नाम योजना भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल योजना है जो 2016 में शुरू की गई थी। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसान भाइयों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश भर की मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर सीधे खरीदारों से जुड़ने में मदद करता है। और किसान भाई ई नाम पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की ऑनलाइन बोली देख सकते हैं और मंडियों के भाव की जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं।
1: तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो ई नाम पोर्टल है, वहां पर आपने आपको पंजीकृत करना होगा और फिर आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने फसल उत्पाद को बड़ी आसानी के साथ जहां पर भी आपको भाव अच्छा लगे वहां बेच सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आपको पंजीकरण कैसे करना है, आपके नजदीक जो भी जनसुविधा केंद्र है वहां जाइए, आप जो भी वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो आपका पंजीकरण ई नाम पोर्टल पर बड़ी आसानी से कर देंगे। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही ई नाम योजना की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर, और साथ ही खेलो इंडिया योजना पर भी बहन भाइयों को जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे किसान बहन भाई चर्चा सुन सकेंगे जिसका विषय रहेगा किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, और इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रूपये की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% कर दिया है। ये रियायती दर प्रारंभिक दर पर 6 महीने की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम यात्रियों को भी सस्ती हवाई यात्रा का फायदा मिल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार से जल संचय अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य 30 अगस्त तक राजधानी में 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस पहल के पहले चरण में लगभग 383 एकड़ के क्षेत्र में फैले 101 चिन्हित जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें द्वारका जोन के 22, दक्षिण जोन के 13, रोहिणी जोन के 17 और नरेला जोन के 6 जल निकाय शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में केंद्रित प्रयास है। साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और सभी जीर्णोद्धार स्थलों पर कार्य निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। श्री संधू ने लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान में शामिल होने और अधिक हरित तथा जल सुरक्षित विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लगभग 500 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बेटियां अपने परिवार, पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, जिससे उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी से ईंधन बचाने की अपील की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी।
1: राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
4: रेलवे ने बताया है कि इस स्वचालित प्रणाली से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो गई है, जिससे भविष्य में रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनमें आधुनिक सिग्नल तकनीक, स्वचालित असफल सुरक्षित सुविधाएं और AI आधारित उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल है, जो दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करती है। ये पहल दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षित तथा अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा के सेक्टर 9 स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट्स में आरएमसी सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विश्वा अपार्टमेंट और स्टार अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री गुप्ता ने अपने आवास में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नरेला भवाना मार्ग पर 9.5 किलोमीटर की सड़क पर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले प्री कास्ट आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक प्री कास्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन और क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक कार्य जल्द शुरू कर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त आयुक्त रवि कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर जीएसटी रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 128 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी लेनदेन किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 51 लाख करोड़ रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 कारें, फर्जी बिल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग,

0: OSM प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 11 कुलपतियों और लगभग 96 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक संवाद कर मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को लेकर चर्चा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल नियुक्तियों पर चर्चा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस जन अभियान का सहभागी बनाना है, जिससे छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़े बदलाव का माध्यम बन सके। उन्होंने इस दौरान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक कक्षाएं, छात्र सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग सुनिश्चित करने और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद आया है। राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने निजी काफिले से पायलट वाहन को हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क शाखा से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है।
2: यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मई के महीने को मॉनसून से पहले जागरूकता गतिविधियों का मुख्य महीना घोषित किया गया है। मंत्रालय जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाता है, जिसके दौरान देशव्यापी स्तर पर निरंतर जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमें इस बीमारी को हराने के अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के आसपास पानी जमा न होने पाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों को कहा कि डेंगू के लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक बने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सचेत करें। साथ ही अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार कल घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का लोकार्पण करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेज साहिब सिंह ने कहा कि ये आयोजन गांव के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में सोमवार को 11 बजे से 1 दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिधोड़ी ने कहा कि इस डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है, जिससे मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके।
3: मेट्रो में सफर करने वाले यात्री DMRC की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया

0: पर समय बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग और JLN मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। इसके साथ ही दरियागंज से दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक और ITO से दिल्ली गेट चौक पर किसी भी भारी तथा व्यावसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेज दिया। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर VAT दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने GST धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और IPL क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, उर्दू शायरी हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की हसीन और दिलनशीं सिंफ है। इसमें हमारे मुल्क की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पाई जाती है। यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के कुदरती मनाजिर, पहाड़, दरिया और खेत खलियानों की मंजरकशी उर्दू शायरी की खूबसूरती और दिलनशीनी में इजाफा करती है। समीन, शायरी हयात इंसानी के एहसासात और जज्बों के बेसाख्ता बयान कर देने का नाम है। शायरी के मौजूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसीलिए ये नफ्सियाती और पेचीदा मसाइल को हल करने में भी कारामद साबित होती है। और शेर के दो मिसरों में वो बात कह दी जाती है जो इंसान को वाह कहने पर मजबूर कर देती है। मुशायरों की ये तहजीब रही है कि अगर कोई शेर पसंद आता है तो वाह वाह की सदाएं बुलंद होती हैं और शायर को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आइए सामीन मुशायरा सुनते हैं। निजामत कर रहे हैं जनाब अमीर अमरोही।
2: आकाशवाणी के मुशायरे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शोरा मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। जनाब असलम बेताब साहब, जनाब खालिद अखलाक साहब, जनाब हामिद अली अख्तर साहब, सलाहकार उर्दू मैगजीन के एडिटर, और ये खाकसार अमीर अमरोही भी। आइए हम इस मुशायरे का आगाज जनाब असलम बेताब साहब के कलाम से करते हैं। आइए हम उन्हें समाप्त करते हैं। जनाब असलम बेताब साहब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे याद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे।
2: क्या कहने, वाह वाह वाह।
3: वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, इश्क के नामुराद पिंजरे से, इश्क के नामुराद पिंजरे से खुद को आजाद कर रहे होंगे।
2: अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
3: इश्क के नामुराद पिंजरे से
4: खुद को आजाद कर रहे
3: खुद को आजाद कर रहे होंगे, देख कर

0: हाथ की लकीरों को,
1: देखकर
0: हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे हो।
1: वाह
0: बहुत शुक्रिया। देखकर हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे होंगे, सोचकर फिर पुरानी बातों को, सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे, सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे। ये तेरा वहम ही तो है असलम, ये तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
1: क्या कहने,
0: ये तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
1: क्या कहने,
0: वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे।
1: कुछ और सुनाइए असलम साहब।
0: जी एक गजल और हाजिर करता हूँ। दिले नादा की आरजू क्या है,
1: दिले नादा की आरजू क्या है,
0: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है।
1: वाह वाह वाह।
0: दिले नादा की आरजू क्या है,
1: वाह वाह,
0: क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है। शोर बरपा है तेरी यादों का, शोर बरपा है तेरी यादों का, और इस दिल के रूबरू क्या है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: शोर बरपा है तेरी यादों का,
1: वाह वाह,
0: और इस दिल के रूबरू क्या है। है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, ये ना पूछो कि चार सू क्या है।
1: क्या कहने हैं, वाह वाह।
0: है धुआं कुछ बुझे चिरागों का,
1: वाह वाह,
0: ये ना पूछो कि चार सू क्या है। मेरे चारों तरफ है वो शायद, मेरे चारों तरफ है वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है। मेरे चारों तरफ है वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है। मात खाई है इश्क में सबने, मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है।
1: क्या कहने,
0: मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है। मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है। मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है। कोई हसरत नहीं अगर असलम, कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हू क्या है। कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हू क्या है।
1: क्या कहें,
0: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है। एक गजल और हाजिर करता हूँ।
1: जी जी, शादी ग्रामी।
0: आज नहीं तो कल लिखेंगे,
1: आज नहीं तो कल लिखेंगे,
0: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे।
1: क्या कहने,
0: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे, गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे।
1: क्या कहने,
0: गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे। बेचैनी और नींद ना आना, बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे।
1: क्या कहने, वाह वाह।
0: बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे। सब तुमको जो चाहे लिखें, सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे।
1: क्या बात,
0: सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे। असलम क्या है हम लिखें तो, असलम क्या है हम लिखें तो, आवारा बादल लिखेंगे। आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे।
1: वाह वाह वाह।
0: गजल का मतलब हाजिर करता हूँ दोस्तों। तेरी रहमत से निकल आया हूँ,
1: तेरी रहमत से निकल आया,
0: तेरी रहमत से निकल आया हूँ, मैं मुसीबत से निकल आया हूँ।
1: वाह,
0: तेरी रहमत से निकल आया हूँ, मैं मुसीबत से निकल आया हूँ, अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों,
1: अब बहुत खुश,
0: अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों, झूठी शोहरत से निकल आया हूँ।
1: वाह वाह,
0: अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों, झूठी शोहरत से निकल आया हूँ। जो रिवायत अजीब थी यारो, जो रिवायत अजीब थी यारो, उस रिवायत से निकल आया हूँ।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने,
0: जो रिवायत अजीब थी यारो, उस रिवायत से निकल आया हूँ। नेकियाँ काम आ गई शायद,
1: नेकियाँ काम आ गई,
0: नेकियाँ काम आ गई शायद, नेक नियत से निकल आया हूँ।
1: बहुत अच्छा है, क्या कहने,
0: नेकियाँ काम आ गई शायद, नेक नियत से निकल आया हूँ। लब खुलेंगे तो जान जाएगी,
1: लब खुलेंगे,
0: लब खुलेंगे।

0: तो जान जाएगी, ऐसी हालत से निकल आया हूँ।
1: अच्छा है भाई, अच्छा।
0: लब खुलेंगे तो जान जाएगी, ऐसी हालत से निकल आया हूँ। बच निकलना मुहाल था लेकिन,
2: क्या कहने,
0: बच निकलना मुहाल था लेकिन किसी सूरत से निकल आया हूँ। बच निकलना मुहाल था लेकिन किसी सूरत से निकल आया हूँ। जान मेरी लबों पे थी असलम,
2: वाह वाह,
0: जान मेरी लबों पे थी असलम, मैं तो किस्मत से निकल आया हूँ। तेरी रहमत से निकल आया हूँ, मैं मुसीबत से निकल आया हूँ।
2: वाह वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ये थे जनाब असलम बेताब साहब, जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। बहुत उम्दा कलाम आपने पेश किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए हम अब इल्तमास करते हैं हाली जनाब खालिद अखलाक साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजे। जनाब खालिद अखलाक,
3: फजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए।
2: इरशाद
3: अर्ज किया है कि फकत ये आईने देते हैं खद्दो खाल का अक्स।
2: क्या कहे,
3: फकत ये आईने देते हैं खद्दो खाल का अक्स, हमारी आंख में देखो किसी जमाल का।
2: क्या कहने हैं, वाह वाह वाह।
3: फकत ये आईने देते हैं खद्दो खाल का अक्स,
2: क्या कहने,
3: हमारी आंख में देखो किसी जमाल का अक्स।
2: बहुत उम्दा शेर है।
3: और शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि रऊनतों में कभी अपनी झांक कर देखो,
2: रऊनतों में
3: कभी अपनी झांक कर देखो, किसी की जीत का मंजर किसी जवाल का अक्स।
0: वाह वाह,
3: किसी की जीत का मंजर
2: किसी
3: जवाल का अक्स।
2: बहुत अच्छा।
3: बतौर खास ये शेर हामिद भाई
2: फरमाए,
3: अर्ज करता हूँ कि मैं आंख बंद करूं और तू नजर आए।
2: क्या कहने हैं, वाह।
3: मैं आंख बंद करूं और तू नजर आए, इसे मैं ख्वाब कहूं या तेरे ख्याल का। मैं आंख बंद करूं और तू नजर आए, इसे मैं ख्वाब कहूं या तेरे ख्याल का अक्स।
2: क्या बात,
3: हमारे बीच की गुत्थी सुलझ भी सकती थी।
2: हमारे बीच की गुत्थी
3: सुलझ भी सकती थी, तेरा जवाब है लेकिन मेरे सवाल का अक्स। तेरा जवाब है, हमारे बीच की गुत्थी सुलझ भी सकती थी,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: तेरा जवाब है लेकिन मेरे सवाल का अक्स।
2: क्या कहने हैं।
3: और चमक रहा है उफक पर यूं इश्क का सूरज।
2: क्या बात है, वाह वाह।
3: चमक रहा है उफक पर यूं इश्क का सूरज, है गोपियों के तसव्वुर में नंदलाल का। चमक रहा है उफक पर यूं इश्क का सूरज,
2: क्या कहने हैं,
3: है गोपियों के तसव्वुर में नंदलाल का अक्स।
2: क्या काफिया इस्तेमाल किया है,
3: बहुत इनायत। और आखिरी शेर इस गजल का कि कभी हुआ है उजाला चराग के नीचे।
2: क्या बात है,
3: कभी हुआ है उजाला चराग के नीचे, जुनूब में भी मिला है कभी शुमाल का अक्स। कभी हुआ है उजाला चराग के नीचे, जुनूब में भी मिला है कभी शुमाल का अक्स।
2: वाह वाह
0: वाह।
3: एक और गजल से कुछ अशार मुलाहिज़ा फरमाए। मतलब यूं है कि किधर चलेगी जिंदगी की नाव देखता रहा।
2: किधर चलेगी जिंदगी की नाव देखता रहा,
3: मैं वक्त का मिजाज और बहाव देखता रहा।
2: वाह वाह वाह,
3: मैं वक्त का मिजाज और बहाव देखता रहा, और ये जिंदगी है जैसे हो सड़क किसी पहाड़ की।
2: ये जिंदगी है
3: जैसे हो सड़क किसी पहाड़ की, कभी मैं पेचोखम कभी घुमाओ देखता रहा।
2: वाह वाह,
3: कभी मैं पेचोखम कभी घुमाओ देखता रहा।
2: वाह वाह वाह।
3: और कभी जो मकबरों से दोस्तों मेरा गुजर हुआ, मैं आदमी का आखिरी पड़ाव देखता।
0: कभी जो मकबरों से दोस्तों मेरा गुजर हुआ,
3: मैं आदमी का आखिरी पड़ाव देखता रहा।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह।
3: और बचा है अब ये मशगला खुशी की बेरुखी के बाद। गमों का अपनी सिमत में झुकाव देखता रहा। बचा है अब ये मशगला खुशी की बेरुखी के बाद, गमों का अपनी सिमत में झुकाव देखता रहा।
2: बहुत उम्दा अशआर।
3: और जब आया जिक्र दोस्ती का, प्यार का, वफाओं का।
2: क्या बात,
3: इस्लाम भाई, कि जब आया जिक्र

0: दोस्ती का, प्यार का,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वफाओं का, मैं दिल के सारे मुस्कुराते घाव देखता रहा। मैं दिल के
1: वाह वाह
0: सारे
1: वाह वाह,
0: मुस्कुराते घाव
1: बहुत
0: देखता
1: अच्छा
0: रहा।
1: शेर, वाह वाह वाह,
0: जब आया जिक्र दोस्ती का, प्यार का,
1: बिल्कुल
0: वफाओं का, मैं दिल के सारे मुस्कुराते घाव देखता रहा।
1: वाह
0: और गजल,
1: जी जी आपका,
0: सिर्फ लगती है मुकम्मल ये अधूरी दुनिया,
1: वाह, सिर्फ लगती है मुकम्मल।
0: सिर्फ लगती है मुकम्मल ये अधूरी दुनिया, हमको दरिया के किनारे मिली प्यासी दुनिया।
1: वाह वाह वाह वाह, प्यासी
0: हमको दरिया के किनारे मिली प्यासी
1: दुनिया,
0: दुनिया, मेरी तन्हाई ने जाकर इसे बहलाया है।
1: मेरी तन्हाई ने
0: मेरी
1: जाकर,
0: तन्हाई ने जाकर इसे बहलाया है। मैंने देखी है कई बार अकेली दुनिया,
1: क्या बात है, वाह
0: मैंने
1: वाह वाह
0: देखी
1: वाह
0: है
1: वाह
0: कई
1: वाह
0: बार अकेली
1: वाह
0: दुनिया,
1: वाह वाह,
0: मेरी तन्हाई ने जाकर इसे बहलाया है। मैंने देखी है कई बार अकेली दुनिया। बतौर खास अमीर भाई इस
1: जी
0: शेर
1: आता हो आता हो,
0: अर्ज करता हूं कि इसकी आबादी बस एक शख्स से वाबस्ता है।
1: क्या कहने, वाह वाह वाह
0: इसकी
1: वाह वाह,
0: आबादी बस एक शख्स
1: शख्स से,
0: से वाबस्ता है, यूं ही आबाद रहे मेरी ख्याली दुनिया।
1: वाह वाह वाह
0: अच्छा
1: वाह,
0: भाई,
1: बहुत
0: इसकी
1: अच्छा है,
0: आबादी बस
1: क्या
0: एक
1: कहे,
0: शख्स से वाबस्ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: यूं ही आबाद रहे मेरी ख्याली दुनिया।
1: वाह वाह वाह
0: इसकी
1: वाह वाह,
0: आबादी बस एक शख्स
1: शख्स से,
0: से वाबस्ता है, यूं ही आबाद रहे मेरी ख्याली दुनिया।
1: वाह वाह वाह
0: अच्छा
1: वाह,
0: भाई,
1: बहुत
0: इसकी
1: अच्छा है,
0: आबादी बस
1: क्या
0: एक
1: कहे,
0: शख्स से वाबस्ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: यूं ही आबाद रहे मेरी ख्याली दुनिया।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा,
0: और एक जैसे न रहे मेरे मरासिम खालिद,
1: वाह,
0: एक
1: एक
0: जैसे न
1: जैसे न
0: रहे
1: रहे,
0: मेरे मरासिम खालिद, बैठे ठुकराई कभी जेब में रखी दुनिया।
1: अच्छा,
0: एक
1: क्या
0: जैसे
1: बात,
0: न रहे
1: वाह
0: मेरे
1: वाह वाह
0: मरासिम
1: वाह,
0: खालिद,
1: वाह वाह वाह,
0: मैंने ठुकराई कभी जेब में रखी दुनिया।
1: वाह वाह वाह, बहुत उम्दा जनाब खालिद अखलाक साहब, जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, अगर इजाजत हो तो ये खाकसार भी कुछ अर्ज कर दे,
0: इरशाद
1: गजल का मतला पेशी खिदमत है, समाज
0: इरशाद
1: फरमाए
0: इरशाद जी, अमीर अमरोही साहब जी,
1: जी
0: आता
1: जी खाकसार। हम सुकूने दिल की खातिर खुश को तर चलते रहे,
0: वाह,
1: हम सुकूने दिल की खातिर
0: खुशकुतर,
1: खुश को तर चलते रहे, जुस्तजू में आपकी शामो सहर चलते रहे,
0: वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: जुस्तजू में आपकी
0: शामो
1: शामो
0: सहर
1: सहर
0: चलते रहे।
1: चलते रहे।
0: हाँ
1: एक और मतला इसमें देखें,
0: जी,
1: उस करिश्मा साज के तीरे नजर चलते रहे,
0: आहा, वाह,
1: उस करिश्मा साज के
0: जिगर
1: तीरे नजर चलते रहे, और हम थामे हुए अपना जिगर चलते
0: चलते
1: रहे,
0: रहे, वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह,
1: और हम थामे हुए
0: अपना
1: अपना
0: जिगर
1: जिगर
0: चलते रहे
1: चलते रहे। और ये शेर देखें हामिद साहब,
0: जी, अच्छा,
1: होश में रखता है किसको कुएं जाना का ख्याल,
0: आहा,
1: होश में रखता है किसको कुएं जाना का ख्याल, बेखुदी की कैफियत में बेखबर चलते रहे,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: बेखुदी की कैफियत में
0: बेखबर चलते रहे,
1: बेखबर चलते रहे। और ये भी शेर देखें, जितनी भी खुशियां मिली ना मोतबर साबित हुई,
0: वाह,
1: जितनी भी खुशियां मिली
0: ना मौत पर
1: ना
0: साबित,
1: मोतबर साबित हुई, गम थे अपने संग साथी उम्र भर चलते
0: आहा,
1: रहे।
0: वाह वाह वाह वाह, अच्छा भाई, अच्छा,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। गम थे अपने, जितनी भी खुशियां मिली
0: क्या बात,
1: ना मोतबर साबित हुई,
0: आहा,
1: गम थे अपने संग साथी उम्र भर चलते
0: वाह
1: रहे।
0: वाह
1: और
0: वाह,
1: शेर मुलायजा फरमाएं,
0: बताओ,
1: तुमसे बेहतर हैं तुम्हारे नाम की रुसवाइयां,
0: क्या बात है,
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: वाह, क्या बात,
1: तुमसे बेहतर हैं तुम्हारे
0: नाम की
1: नाम की
0: रुसवाई,
1: रुसवाइयां, आगे आगे चल रही थी हम जिधर चलते
0: वाह
1: रहे,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बढ़िया, बहुत
1: तुमसे
0: बहुत
1: बेहतर
0: बढ़िया,
1: हैं तुम्हारे
0: नाम की रुसवाई,
1: नाम की रुसवाइयां, आगे आगे चल रही
0: हम
1: थी
0: जिधर चलते
1: हम
0: रहे,
1: जिधर चलते रहे। और ये शेर बतौर खास तवज्जो
0: क्या शेर,
1: फरमाए,
0: बताओ,
1: जब शऊर आया तो समझे लाशऊरी के सबब,
0: हाँ,
1: जब शऊर आया तो समझे लाशऊरी के सबब, एक मुद्दत किसके हम जेरे असर चलते रहे,
0: वाह,
1: एक मुद्दत किसके हम
0: जीरे असर चलते
1: जेरे
0: रहे,
1: असर चलते रहे। और ये शेर देखे, थक के बैठेंगे तो मंजिल दूरतर हो जाएगी,
0: वाह वाह,
1: थक के बैठेंगे तो मंजिल दूरतर हो जाएगी, खुद कदम चूमेगी मंजिल हम अगर चलते रहे,
0: वाह
1: खुद
0: क्या बात है, वाह
1: कदम
0: वाह,
1: चूमेगी मंजिल हम
0: हम
1: अगर
0: अगर चलते
1: चलते
0: रहे,
1: रहे। اور شعر دیکھے کہ

0: हमको इससे क्या गरज, मंजिल हमारी है किधर।
1: क्या गरज
0: हमको इससे क्या गरज, मंजिल हमारी है किधर। वो जिधर चलते रहे हम भी उधर चलते रहे।
1: अरे वाह वाह वाह वाह।
0: वो जिधर चलते रहे हमको हमको इससे क्या गरज, मंजिल हमारी है किधर। वो जिधर चलते रहे हम भी उधर चलते रहे।
2: बहुत उम्दा।
0: और शेर मुलायजा फरमाए, इस कदर आसान नहीं था उनकी गलियों का सफर। इस कदर आसान नहीं था उनकी गलियों का सफर। पांव जख्मी हो चुके थे हम मगर चलते रहे। पांव जख्मी हो चुके थे हम मगर चलते रहे। और इस गजल का आखिरी शेर, आंखों आंखों से पयाम आते रहे जाते रहे। आंखों आंखों से पयाम आते रहे जाते रहे। दोनों जानिब से मुसलसल नामा बर चलते रहे। दोनों जानिब से मुसलसल नामा बर। शुक्रिया बहुत बहुत। दोनों जानिब से मुसलसल नामा बर चलते रहे। और मक्ते का शेर है, हम भी फिर मजबूर हो जाएंगे एक दिन ए अमीर। हम भी फिर मजबूर हो जाएंगे एक दिन ए अमीर। उनके ये जुल्मो सितम पे हम अगर चलते रहे। उनके ये जुल्मो सितम पे हम अगर चलते रहे। एक गजल का मतलब और देख लें। मेरी जबान ने कैसा ये इजहार कर दिया, हर एक दिल को तेरा परस्तार किया। हर एक दिल को तेरा परस्तार कर दिया। और एक पतला और देखें इसमें, ये कैसा जुल्म तूने कलमकार कर दिया। ये कैसा जुल्म तूने कलमकार कर दिया। जख्मी हर एक लफ्ज का किरदार कर दिया। जख्मी हर एक लफ्ज का
2: किरदार।
0: ये कैसा जुल्म तूने कलमकार कर दिया। जख्मी हर एक लफ्ज का किरदार कर दिया। और शेर देखें, जब वक्त ने ही छीन ली सब शौकियां तो फिर। जब वक्त ने ही छीन ली सब शौकियां तो फिर। आईना हमने खुद पसे दीवार कर दिया। आईना हमने खुद पसे दीवार कर दिया। और शेर मुलायजा फरमाए, मीजान पर न उतरा कोई शख्स बाजमीर। मीजान पर न उतरा कोई शख्स बाजमीर। तुमने क्या अपनी बज्म का मेयार कर दिया। तुमने क्या अपनी बज्म का मेयार कर दिया। और शेर देखें, रंजो अलम मलाल मसाइब है हर कदम। गम ने किसी के वाकिफ आजार कर दिया। गम ने किसी के वाकिफ आजार कर दिया। असलम साहब
2: जी,
0: कासा थमा दिया मुझे बच्चों की भूख ने। कासा थमा दिया
2: मुझे
0: बच्चों की भूख ने। गुर्बत ने किस कदर मुझे लाचार कर दिया। गुर्बत ने किस कदर मुझे लाचार कर दिया। और ये भी शेर देखें, हम अपनी बेगुनाही का किस किस को दें सबूत। हम अपनी बेगुनाही का किस किस को दें सबूत। हर एक नजर में तूने खताकार कर दिया। हर एक नजर में तूने खताकार कर दिया। ये कैसा दौर आया जहाने खराब में।
2: ये कैसा दौर आया जहाने
0: खराब। ये कैसा दौर आया जहाने खराब में। यारों ने तो कलम को ही तलवार कर दिया। यारों ने तो कलम को ही तलवार कर दिया। और शेर देखें कि जिसको बगैर देखे मयसर न था सुकून। जिसको बगैर देखे मयसर न था सुकून। पामाल वक्त ने वही शाहकार कर दिया। पामाल वक्त ने वही शाहकार कर दिया। तेरे फरेब हुस्न से तंग आके हमने तो तेरे फरेब हुस्न से तंग आके हमने तो। आई नए ख्याल को मिसमार कर दिया। आई नए ख्याल को मिसमार कर दिया। और मक्ते का शेर समाप्त फरमा लें। वो बेहिजाब आए अमीर ऐसे सामने। वो बेहिजाब आए अमीर ऐसे सामने। मेरी निगाह को भी गुनाहगार कर दिया। मेरी निगाह को भी गुनाहगार कर दिया। आइए हम आज की इस महफिल के मक्ते की तरफ चलते हैं। मेरी मुराद अली जनाब हामिद अली अख्तर साहब से है।

0: हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने कलाम से नवाजें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अमरोही साहब, दो तीन अशारे गजल के, ये प्यास को बादा कहूँ रूह को पैमाना कहूँ।
0: क्या कहने हैं, वाह वाह।
1: प्यास को बादा कहूँ रूह को पैमाना कहूँ, अपनी दुनिया को मैं दुनिया से जुदा गाना कहूँ। अपनी दुनिया को मैं दुनिया से जुदा गाना कहूँ।
0: बहुत अच्छा।
1: और बतौर खास के किस्से आरिजो गेसु पे बिगड़ते क्यों, किस्से आरिजो गेसु पे बिगड़ते क्यों हो, शाम को शाम सवेरे को सवेरा न कहूँ।
0: क्या बात है।
1: शाम को शाम
0: बहुत अच्छा
1: है। सवेरे को सवेरा न कहूँ और तेरे आरिस के गुलाब और गुलाबी हो जाए।
0: क्या बात।
1: तेरे आरिस के गुलाब और गुलाबी हो जाए, आज इस तरह तेरे हुस्न का अफसाना कहूँ। आज इस तरह तेरे हुस्न का अफसाना कहूँ। आइए छोटी बहर में एक गजल आप लोगों को सुनाता हूँ के सर पे आंचल जरा नहीं रखते,
0: सर पे आंचल
1: सर पे आंचल जरा नहीं रखते, तुम तो कुछ भी हया नहीं रखते। तुम तो कुछ भी हया नहीं रखते। और तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नासिर,
0: तुम
1: कहाँ जा रहे हो ऐ नासिर, वो किसी का कहा नहीं रखते। वो किसी का कहा नहीं रखते। वो बताते हैं हाल दुनिया का, वो बताते हैं हाल दुनिया का, जो के अपना पता नहीं रखते, जो के अपना पता नहीं रखते। तुम मसीहा हो मान लेता हूँ अखलाक भाई, कि तुम मसीहा हो मान लेता हूँ, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते। दिल की लेकिन दवा नहीं रखते। कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, दिल को दिल से जुदा नहीं रखते। दिल को दिल से जुदा नहीं रखते।
0: तुम मसीहा हो,
1: तुम मसीहा हो मान लेता हूँ, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते। और रात को रात दिन को दिन कह दो, रात को रात
0: दिन को दिन,
1: दिन को दिन कह दो, इतना भी हौसला नहीं रखते। इतना भी हौसला नहीं रखते। दर बदर सर झुकाए फिरते हो, के दर बदर सर झुकाए फिरते हो, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते। और एक आसान महर की गजल और पेशे खिदमत है कि आपकी याद जब भी सताने लगी, आपकी याद जब भी सताने लगी, जिस्म से जान अपनी भी जाने लगी, जिस्म से जान अपनी भी जाने लगी, आप आए चमन में मेरे साथ क्या, आप आए चमन में मेरे साथ क्या, हर कली खुद ब खुद मुस्कुराने लगी।
0: बहुत उम्दा।
1: हर कली खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। और बतौर खास के हुस्न बढ़ता गया चांदनी रात का, हुस्न बढ़ता गया चांदनी रात का, जब गजल वो मेरी गुनगुनाने लगी, जब गजल वो मेरी गुनगुनाने लगी, हर तरफ फिर उजाला हुआ रात में, हर तरफ फिर उजाला हुआ रात में, जुल्फ चेहरे से जब वो हटाने लगी, जुल्फ चेहरे से जब वो हटाने लगी। और इसे भी देखिए, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मौत भी थी पशेमान मुझसे बहुत,
0: मौत भी थी पशेमान,
1: मौत भी थी पशेमान मुझसे बहुत, जिंदगी ऐसे अपनी ठिकाने लगी। जिंदगी ऐसे अपनी
0: ठिकाने,
1: मौत भी थी पशेमान मुझसे बहुत, जिंदगी ऐसे अपनी ठिकाने लगी। दास्तां सुन के अख्तर तेरे प्यार की, दास्तां सुन के अख्तर तेरे प्यार की, आंख उनकी भी आंसू बहाने लगी, आंख उनकी भी आंसू बहाने लगी। और एक गजल और आप लोगों की खिदमत में के शाम ढलने लगी है चले आइए,
0: शाम ढलने लगी,
1: शाम ढलने लगी है चले आइए, दिल में हलचल मची है चले आइए, दिल में हलचल मची है चले आइए, इससे पहले कि हो जाए सब कुछ फना,
0: इससे पहले
1: कि हो जाए सब कुछ फना, आग दिल में लगी है चले आइए।
0: वाह वाह।
1: आग दिल में लगी है चले

0: सुनाइए।
1: किस्से गैरों के होते रहे हैं बहुत, किस्से गैरों के होते रहे हैं बहुत, बात अपनी छिड़ी है चले आइए।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: किस्से गैरों के होते रहे हैं बहुत,
0: क्या बात है,
1: बात अपनी छिड़ी है चले आइए। गैर अपने हुए हैं जहां में कभी, गैर अपने हुए हैं जहां में कभी, किसको किसकी पड़ी है चले आइए। किसको किसकी पड़ी है चले आइए। हुस्न खुद दे रहा है सदा आज तो, हुस्न खुद दे रहा है सदा आज तो, रात तारों भरी है चले आइए। रात तारों भरी है चले आइए। दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, मुख्तसर जिंदगी है चले आइए। मुख्तसर जिंदगी है चले आइए। दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, मुख्तसर जिंदगी है चले आइए। जिंदगी यूं ही अख्तर रहेगी रवा, जिंदगी यूं ही अख्तर रहेगी रवा, किसको फुर्सत मिली है चले आइए। किसको फुर्सत मिली है चले आइए।
0: जनाब हामिद अली अख्तर साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि आज आकाशवाणी के मुशायरे में जो शोरा तशरीफ लाए हैं उनके इस्मे गिरामी अली जनाब असलम बेताब साहब, अली जनाब खालिद अखलाक साहब, जनाब हामिद अली अख्तर साहब और ये खाकसार अमीर अमरोही।
3: सामीन अभी आप मुशायरे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, निजामत फरमा रहे थे जनाब अमीर अमरोही। अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
4: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जहां हर धुन में छुपी होती है एक कहानी, हर गीत में बसी होती है किसी के दिल की आवाज। मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और अगले 15 मिनट तक हम साथ चलेंगे यादों, प्यार और बॉलीवुड संगीत के सफर पर।

श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था, फिल्म थी पापा कहते हैं और आवाज़ उदित नारायण जी की थी। हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ अधूरी कहानियाँ ही सबसे खूबसूरत बन जाती हैं।

तो दोस्तों, आज की सुरों की शाम यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गीत और शायरियाँ आपके दिल को छू गई होंगी। मैं रचना अग्निहोत्री आपसे फिर मिलूंगी एक नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्ते।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में

0: इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा

0: शकी गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं

77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 32-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Rolly Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains. Calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins three bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंह से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निमटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हलके से नौ मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमूई तौर पर 64 लाख रूपये का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रूपये नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिवीजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रूपये का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے. خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے. اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है, तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है, और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी डी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात,

चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वज़कई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
0: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जय ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहा।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है, कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के

0: उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
1: तू न रोना के तू

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा, अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो

अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने ऋषि

0: अमिताभ जी, ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे, तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है।
1: जी
0: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी,

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धा

अंजलि, ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs.

0: against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश, जहां हर धुन में छुपी होती है एक कहानी, हर गीत में बसी होती है किसी के दिल की आवाज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रचना अग्निहोत्री, और 12 बजे तक यानी रात्रि 12 बजे तक हम साथ चलेंगे यादों के सफर पर, प्यार के सफर पर और संगीत के सफर पर। चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ, जिसकी फरमाइश आई है जी के परमार गांधीनगर गुजरात से। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ, मैसेज आया है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी का। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज को हम शामिल कर रहे हैं जो कि आया है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथव सिंह का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और भव्य जैन का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं गाँव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से हमारे पास ईमेल आया है एके झा जी का। दुर्गा प्रसाद सैनी जी और राजेश सांबले पाटिल जी हमारे साथ संगीत के सफर में शामिल हैं। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक हमारे साथ हैं भिलाड वापी गुजरात से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से, आवाज साधना सरगम जी की है। और इसी के साथ चलते हैं हमारे ईमेल श्रोताओं की तरफ, जिनमें सबसे पहले ये मैसेज आया है हमारे पास मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशाम, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीना शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा जी और सतीश अनेजा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशप अब्बासी जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा जी का भी मैसेज आ चुका है हमारे पास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी हमारे साथ शामिल हैं, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर जी और अनिल शर्मा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सही नाम सुझाए हैं संदीप मक्कड़, गलत नाम संदीप जाटव, संदीप कौर, संदीप जाटोलिया, आपने सही नाम लिखा है वली उल्लाह अंसारी और गलत नाम वली उल्लाह डोम, वली उल्लाह बेलदार वगैरह। कृपया नोट करें कि कुछ लिसनर्स छद्म नामों से मेल करके दूसरे लिसनर्स का हक मार रहे हैं, ऐसा ना करें, कृपया ऐसा ना करें। अगला मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मजनू का टीला से कमल बालूजा जी, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे साथ कार्यक्रम के सफर पर हैं, संगीत के सफर पर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, श्रीमती नंदा बोडके, हनुमान बोडके और उत्तम जमदाडे जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धानोरा विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अन्यामिका सिंह भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो हमारे पास आया है। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज

हमारे पास आ रहा है पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन बेगम, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है। कहाँ से आया है ये हमारे पास? पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। धानोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरेकर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की तरफ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आइए चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोडी जी का, जो कि सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रमोद कुमार डोडी जी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान जी का, जो कि कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, नासिर, साजिद, शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी का, जो कि हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि आया है राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण बंसोड़ और मीरा बंसोड़ जी का लुम्बिनी नगर अकोला से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी जी का, जो कि सुन रहे हैं कार्यक्रम हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी जी का, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम में, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि आया है हमारे पास श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब, नायाब और लड्डू का, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर का आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपका मैसेज मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी लगातार बने हुए हैं, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान फारिया और ताहिरा लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, जो कि आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान फारिया और ताहिरा का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी भी हमारे कार्यक्रम के साथ लगातार बने हुए हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सदमा से, आवाज़ थी सुरेश वाडकर जी की। चलते हैं अपने अगले ईमेल की तरफ जो कि हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है पटियाली रोड गंज ढुंडवारा से, आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले मैसेज की तरफ जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ लगातार बने हुए प्रकाश वर्मा जी हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी, पिहरा बाजार, झुमरी तलैया, गिरिडीह झारखंड से, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध बाबू भी हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख, फारुक, शबनम और शहनाज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशप अब्बासी, सिकंदरा राव से मुनीब मुबीन अब्बासी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

0: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म क्रिमिनल से। आवाजें थी कुमार सानू और चित्रा जी की। और इसी के साथ आज के सुरों की शाम यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गीत, ये शायरियाँ आपके दिल को छू गई होंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई शाम, नई धुनों और नई कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए, यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 93 रन की सर्वाधिक पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti.

लगा कि जैसे मोहम्मद रफी साहब फिर लौट आए हो। जी हाँ, आज बात होगी मशहूर मशहूर पार्श्व गायक अनवर साहब की, एक ऐसा फनकार जिनकी आवाज में मिठास भी थी, दर्द भी, और रूह को छू लेने वाली सादगी भी। तो आइए शुरू करते हैं अनवर साहब के संगीत के सफर का ये खूबसूरत कारवां।

सो अनवर साहब का पूरा नाम अनवर हुसैन है। उनका जन्म साल 1954 में मुंबई में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला क्योंकि उनके पिता आशिक हुसैन संगीत से जुड़े हुए थे और एक अच्छे संगीतकार व वादक माने जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनवर साहब ने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। यही वजह है कि उनकी गायकी में सुरों की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई देती है। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों को अपनी आवाज़ देने का बेहद शौक़ था। स्टेज शोज़ में जब भी अनवर साहब रफ़ी साहब के गाने गाते तो लोग हैरान रह जाते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में आगाज़ हुआ एक ऐसे गायक के सफ़र का जिसने हिंदी सिनेमा में आगे जाकर एक अलग पहचान बनाई।

दोस्तों, अनवर साहब को फिल्मों में पहला बड़ा मौका मिला 1973 में। फिल्म का नाम था मेरे गरीब नवाज। कहते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान खुद रफ़ी साहब ने अनवर साहब की आवाज़ की तारीफ की थी। इस बात ने अनवर साहब के उत्साह को दोगुना कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में अनवर साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल्में कम चली, गाने भी उतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन उनकी आवाज़ धीरे धीरे संगीतकारों की नज़र में आने लगी। और यही तो किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है ना? उसका हुनर।

जब भी अनवर साहब का नाम लिया जाता है तो एक नाम अपने आप जुड़ जाता है और वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। और दोस्तों लोगों को उनकी आवाज़ में रफ़ी साहब की झलक सुनाई देती थी, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अनवर साहब ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश कभी नहीं की। अनवर साहब ने हमेशा यही कहा कि रफ़ी साहब उनके आदर्श थे और उनके गानों को सुन सुन कर ही उन्होंने गायकी सीखी। उनकी आवाज़ में रफ़ी साहब जैसी ही नरमी, वही ऊंचाई, वही भावनाएं महसूस होती थी जिससे श्रोताओं को उनसे और ज़्यादा गहरा जोड़ दिया।

अनवर साहब को असली पहचान मिली साल 1979 में रिलीज़ हुई फिल्म जनता हवलदार से। इस फिल्म के गाने लोगों की जबान पर चढ़ गए और इस फिल्म के गानों ने ही अनवर साहब को रातों रात मशहूर कर दिया। राजेश खन्ना साहब पर फिल्माए गए इन गीतों में उनकी आवाज़ इतनी फिट बैठी कि लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपना लिया।

लुत्फ़ अनवर साहब की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का दर्द था। वो जब दर्द भरे नगमे गाते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। साल 1982 में आई फिल्म विधाता का गीत हाथों की चंद लकीरों का, और ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद पसंद किया जाता है। इसी तरह साल 1981 की फिल्म नसीब का गीत जिंदगी इम्तिहान लेती है आया, और ये गाना भी उनकी गायकी की मिसाल माना जाता है, जिसे आपने भी सुना। उनकी आवाज़ में बनावट कम और एहसास ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि अनवर साहब की आवाज़ गानों के ज़रिए आवाज़ से गानों के ज़रिए सीधे दिल तक पहुँच जाते थे।

दोस्तों, अनवर साहब ने अपने करियर में कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। खयाम साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी जी और राजेश रोशन जी जैसे संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और अलका याग्निक जी जैसी बड़ी गायिकाओं के साथ भी कई खूबसूरत गीत गाए। ये बात साबित करती है कि उस दौर में अनवर साहब की प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा थी।

1990 के दशक में जब फिल्म संगीत का दौर बदलने लगा तो कई पुराने गायकों की तरह अनवर साहब को भी अवसर कम मिलने लगे। कुमार शानू जी, उदित नारायण जी और कई नई आवाज़ों का दौर शुरू हो चुका था। फिर धीरे धीरे अनवर साहब फिल्मों से दूर होते चले गए, लेकिन उन्होंने संगीत से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। वे स्टेज शोज करते रहे और संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा उन्होंने बनाए रखा। रफ़ी साहब जैसे महान कलाकार के साथ तुलना होने के बावजूद अपनी अलग पहचान अनवर साहब ने बना ही ली। हालांकि इस तुलना का दबाव उन्हें ज़रूर सहना पड़ा। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई मंचीय सम्मान मिले उन्हें, क्योंकि यही दौर अनवर साहब का रहा। फिल्म प्रेम रोग के गीत और कई सारे जनता हवलदार के गीतों ने अनवर साहब की पहचान को अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये था सुरों का सफ़रनामा, उस आवाज़ के नाम जिसने अपनी गायकी से लाखों दिलों को छुआ। अनवर साहब का सफ़र हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। सुरों का सफ़रनामा यहीं तक, और उसका सफ़र यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, नए किस्से और नए गीतों के साथ। आज के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती

0: बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emergency energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunity.

बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली और उनमें से हमारा मन भी एक बहुत बदलती हुई चीज़ में शामिल रहा। जो पहले ज़माने में कभी कोरा हुआ करता था, आज व्हाट्सएप और वीडियो और मोबाइल आ जाने की वजह से उसके बाद अब मन कोरा तो नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भर जाती है ना, लेकिन यादों में तो हम उस कोरे मन को याद कर ही सकते हैं गानों के ज़रिए।

दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ये तो हम सभी जानते हैं। और अगर आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है तो आपने फिल्मों में तो इस एहसास को ज़रूर महसूस किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्में देख के हमारे आंसू निकल आते हैं, हम हंसने लगते हैं और फिल्मों के साथ ही एक ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिल्मों से जुड़कर फिल्मों को जी लेते हैं, उस एहसास को। तो इससे समझा जा सकता है कि जब प्यार हो जाता है ना, तो उसके साथ चाहे हम घंटों बैठ जाएं, लेकिन वो लगता है बस यूं ही निकल गए पल, और वो जो हमारे साथ है वो हमें

वैसे तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सारे खूबसूरत तोहफे दिए हैं, और उन्हीं खूबसूरत तोहफों में एक बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही प्यारा खूबसूरत तोहफा है हमारी आंखें। और उन आंखों में अगर कोई बस जाए तो वो आंखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। उसका एहसास आप इस खूबसूरत नगमे को सुनकर, इस खूबसूरत प्यार से गाने को सुनकर महसूस कर सकते हैं।

और दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं, ऐसे में पुराने ज़माने का ये गाना जो मुकेश साहब की आवाज़ में है, यकीनन दिल को बहुत बहुत छू जाता है। फिल्म है धरती कहे पुकार के।

दोस्तों रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुए उनके नगमे, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ गाने ना हो, वो सांस ले रहे हों, वो हमारे साथ साथ चल रहे हों, वो हमें महसूस कर रहे हों, गाने भी हमें महसूस कर रहे हों। क्योंकि रफ़ी साहब और लता जी की ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ का अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। रात के 1:47 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे।

रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में एक चुलबुला सा गाना आपने सुना, लेकिन ये दोनों ही जो गायक हैं ये हमेशा से मशहूर थे संजीदा गाना गाने के लिए। और अगला नगमा जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर वो है किशोर कुमार साहब का, जो चुलबुले गाने गाने के लिए मशहूर हुए, लेकिन ये गाना उनके अंदाज़ का एक अलग सा रूप है जिसे आप भी सुनिए और महसूस कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है, और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विन्स एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती वैट दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role and describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values. Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of the India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands on Friday on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden today. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifex in Sweden, Per Sundvall, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and the Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. India has rejected the latest award issued by the so-called Court of Arbitration on the Indus Waters Treaty dispute with Pakistan. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said, India does not recognize the code and considers it to be illegally constituted. He said, any decision or award issued by the court is null and void. The spokesperson said the court has issued a supplementary award related to maximum bondage under the Indus Waters Treaty. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has made the study of three languages compulsory for students from class 9 beginning from the 1st of July this year. In a statement, the board said that at least two of the three languages must be native Indian languages in line with the National Education Policy 2020 and the National Curriculum Framework for School Education 2023. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders defeated Gujarat Titans by 29 runs wickets at the Eden Garden, Kolkata last night. Chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans made 218 runs, the loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 247 for 2 in the stipulated 20 overs. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 76-77 kg category. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे जिसमें हम एक के बाद एक लगातार एक से बढ़कर एक प्यारे गाने सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से

बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन्डर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, माफ कीजिएगा, AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:11 होने को हैं। सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह द्वारा गाई एक बेहतरीन गजल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत गज़ल कार्यक्रम अपने दोस्त।

के साथ। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ और कुमार सानू की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने जो गीत सुना भूपेंद्र की आवाज़ में, फिल्म बाजार से, आइए आप सुनते हैं फिल्म माचिस से लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत।

गीत गजल कार्यक्रम में ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिर छिड़ी रात बात फूलों की लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म बाजार से। इसी गीत के साथ अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अपना अपनों का ख्याल रखिए और ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए। अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं नाद ब्रह्म। वायलिन पर स्वर जी उमा का है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सुबह के 4:51 और ठीक 50 सेकंड हुए हैं इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा के कार्यक्रम बता दें जो आप सुनेंगे। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राहुल संस्कृतायन के जीवन से प्रेरणा।

रामचरित मानस बालकांड भाग 52। इसे आप सुन सकते हैं 6:45 पर, 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

0: प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा। सात बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम गीतों भरी होगा। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनी

0: मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with the Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the prime minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement took effect in January 2026. This journey is designed to review bilateral relations and explore cooperation in an era of rapid technological shifts and complex geopolitical challenges. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.825 billion between 2000 and 2025. This foundation was laid during the Prime Minister's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. Prime Minister Narendra

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए
जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से

बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। प्रस्तुति पंडित तेजपाल सिंह और पंडित सुरेंद्र सिंह की है, राग ललित।